मीडियम भी 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज। न्यूज़ ऑन EIR ऐप, DTA, DRM और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज रविवार है, शक सम्मत 1948 के आषाढ़ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ होती है प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। आइए दिल्ली केंद्र से सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली OMR शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई OMR शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से आज की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोत से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के

0: फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में दो रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, खेती की बातें। इस कार्यक्रम में सामयिक कृषि कार्य विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम सामयिक कृषि कार्य की चर्चा करेंगे। जो किसान भाई समय से धान की बेहन डाले हैं, उनकी पौध अब तैयार हो रही है, इसलिए अब रुपाई करनी चाहिए। जिस खेत में रुपाई करनी हो, उस खेत में रुपाई के 10 दिन पहले यदि पानी ना हो तो पानी भर देना चाहिए, जिससे खेत में बचे हुए ठूंठ व घास मिट्टी में भली भांति सड़ जाएं। फिर जब रुपाई करना हो तो खेत में पानी भरकर 2-3 बार पडलर या देसी हल से जोत कर फिर प्रत्येक जुताई के बाद पाटा चलाकर समतल बना देना चाहिए। अगर पानी से भरे खेत में पाटा चलाने पर मिट्टी इकट्ठा हो जाती है तो फिर पाटा नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि पाटा चलाने पर जहां मिट्टी नहीं रहती है वहां पर धान रोपने में कठिनाई हो सकती है। खेत की तैयारी करते समय उर्वरक देना चाहिए। अंतिम जुताई के समय 50 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से खेत में मिला देते हैं। इसके बाद फिर तैयार बेहन की रोपाई करते हैं। बेहन 20 से 25 दिन की होनी चाहिए और एक स्थान पर 2-3 पौधा लगाना चाहिए। ध्यान रहे पौधे 3-4 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरे न लगाए जाएं। अगर पौधे ज़्यादा गहरे लगाए जाते हैं तो पौधों में किल्ले बढ़ने में कठिनाई हो सकती है। 20 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर रोपाई करनी चाहिए, यानी प्रति वर्ग मीटर स्थान में लगभग 50 पौधे होने चाहिए। बहुत से किसान भाई मूंगफली की भी खेती करते हैं। मूंगफली की बुआई वैसे तो 15 जून से ही शुरू हो जाती है, लेकिन इसे आप अभी भी बुआई कर सकते हैं। टाइप 64, टाइप 28, चंद्रा, चित्रा इसकी उन्नतशील प्रजातियां हैं। इसकी तैयारी के लिए ज़्यादा गहरा खेत जोतने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि गहरी जुताई कर देने पर इसकी फलियां काफ़ी नीचे बनती हैं, जिससे बाद में मूंगफली की खुदाई करने में काफ़ी दिक्कत आती है। मूंगफली का खेत तैयार करते समय अंतिम जुताई के समय लगभग 6 किलोग्राम नत्रजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस और 18 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रति एकड़ की दर से, कहने का मतलब है कि 13 किलोग्राम यूरिया, 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 28 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से खेत में मिला देते हैं। बोने से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से भी शोधित करना चाहिए। चंद्रा और चित्रा का 28 किलोग्राम, टाइप 64 और कौशल का 38 किलोग्राम बीज लगता है। जो किसान भाई ज्वार की खेती करना चाहते हैं तो इस समय बुआई कर सकते हैं। वर्षा, CSH5, CSH9 इसकी उन्नतशील किस्में हैं। एक हेक्टेयर की बुआई के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज लगता है। इसके लिए लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधा से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक एकड़ खेत में बुआई हेतु 17 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 12 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। इसे अंतिम जुताई के समय यानी बेसल ड्रेसिंग के रूप में खेत में मिला देते हैं और फिर जब खेत तैयार हो जाता है तो बुआई करते हैं। अरहर की अगर बुआई करना चाहते हैं तो इसकी जो उन्नतशील प्रजातियाँ हैं उनको लेकर के समय बुआई करनी चाहिए। चारे की अगर बुआई करना चाहते हैं तो लोबिया चरी, एमपी चरी, पूसा चरी, मक्का, बाजरा की खेती इस समय कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर सामयिक

0: कृषि कार्य करना चाहिए।
1: सामयिक कृषि कार्य, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। इसी के साथ खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह की वंदना के साथ आइए शुरू करें आराधना। भगवान आदित्य की उपासना से हर दुख का अंत हो जाता है, अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। भगवान आदित्य को तीनों लोकों और 14 भुवन का स्वामी कहा जाता है।

जहाँ भाव है वही भक्ति है, जहाँ भक्ति है वही भावना है, जहाँ भावना है वही प्रभु की आराधना है।

और ये हरि नाम संसार रूपी समुद्र का पुल है, जिस पर चढ़कर भक्तजन सहज ही भव सागर तर जाते हैं।

0: सुबह की वंदना के साथ संपन्न हुई आराधना। आज आपने सुना हरिहरण, महेंद्र कपूर, सुमन कल्याणपुर, मीरा दास और माधुरी ओक के गाए भजन। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। विचार बिंदु में आज का विषय है प्रेम।
1: एक दिन रुक्मणी ने श्री कृष्ण से पूछा, राधा में ऐसा क्या है कि आप उसे प्रतिक्षण स्मरण करते रहते हैं? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, समय आने पर बता दूंगा। एक बार श्री कृष्ण चादर ओढ़कर लेट गए। रुक्मणी के पूछने पर कहा, मेरे सर में अतीव पीड़ा है। रुक्मणी ने घबराकर पूछा, इसकी औषधि क्या है? कृष्ण ने कहा, अपने चरणों की जरा सी धूल मेरे मस्तक पर लगा दो। रुक्मणी ने कहा, ऐसा करने से तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने नारद को बुलाकर राधा के पास भेजा और कहा, राधा के चरणों की धूल मस्तक पर लेपन के लिए ले आओ। राधा ने ये बात सुनकर तुरंत अपने पैरों की धूल नारद को दे दी। नारद ने पूछा, तुम्हें नरक में जाने का भय नहीं है? राधा ने उत्तर दिया, यदि मेरे पैरों की धूल से श्री कृष्ण की पीड़ा दूर हो तो मैं 70 जन्म तक भी नरक में जाने को तैयार हूँ। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। महात्मा गांधी ने कहा था, जहाँ शुद्ध प्रेम होता है वहाँ अधीरता को स्थान नहीं मिलता। शुद्ध प्रेम देह का नहीं, आत्मा का ही संभव है। देह का विषय प्रेम ही है। आत्म प्रेम को कोई बंधन नहीं है, परंतु उस प्रेम में तपश्चर्या होती है और धैर्य तो इतना होता है कि मृत्यु पर्यंत वियोग रहे तो भी क्या हुआ। प्रेम तत्व संसार पर विजय करता है। समुद्र तल में स्थित चुंबक के चट्टान समुद्र के ऊपर चलने वाले जहाज को अपनी ओर खींच लेती है, उसकी कीलें निकाल डालती है और सभी पटरों को अलग अलग कर देती है। फलतः जहाज समुद्र में डूब जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है, तब उसका व्यक्तित्व और स्वार्थ एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवात्मा परमात्मा के अगाध प्रेम के सागर में डूब जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुसार प्रेम के दो लक्षण हैं। इस बात का बोध होना कि जगत मिथ्या है तथा शरीर जो कि सभी को प्रिय होता है उसकी कुछ भी परवाह न करना। भाव कच्चे आम के समान है और प्रेम पके आम के तुल्य है। प्रेम भक्त के हाथ में एक रस्सी के समान है, उसी से वो ईश्वर को बांधकर अपने वश में करता है। भक्त की प्रेममय पुकार सुनकर ईश्वर अवश्य उस पर कृपा करता है। सच्चा प्रेम सूर्य के समान आत्मा को विकसित कर देता है। मोह मन को पाले के समान ठिठुरा कर संकुचित कर डालता है। प्रेम का अर्थ है व्यवहार में अपने पड़ोसियों के साथ, उन लोगों के साथ जिनसे आप मिलते जुलते हैं, एकता और अभेदता का अनुभव करना। जिस मनुष्य ने कभी प्रेम नहीं किया वो कदापि ईश्वरानुभव नहीं कर सकता। प्रेम मोह से भिन्न है, वो एकमात्र दैवी विधान है। विषय वासनाहीन प्रेम ही आध्यात्मिक प्रकाश है। प्रेम परमार्थ है और काम स्वार्थ है। जहाँ प्रेम है वहाँ काम है, जहाँ स्वार्थ नहीं होता प्रेम का वहीं साम्राज्य फलता फूलता है।
0: अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु। आज का विषय था प्रेम। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां, कारण और निदान विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राहुल सिंह।

0: मैं डॉक्टर राहुल सिंह, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, आज आपके साथ विटामिन के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। भाइयों, विटामिन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, तत्व है, जिसकी कमी से विभिन्न तरह के रोग हो जाते हैं। आज हम विटामिन बी की बात करेंगे। बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, मतलब बी के साथ कई विटामिन जुड़े हुए हैं, जिसमें विटामिन B1 है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है। ये तीन इसमें मुख्य विटामिन है। विटामिन B1 की कमी से हमको जो रोग होता है उसमें मुंह के किनारे पर छालापन, जीभ में छाला पड़ना, बार बार जीभ का लाल होना, मुंह का इन्फेक्शन होना, ये विटामिन B1 की कमी से हो जाता, जिसे हम लोग चिलोसिस कहते हैं। और ये विटामिन हर खाद्य पदार्थ में, चाहे दाल हो, चावल हो, सब्जियां हो, सभी में ये बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। B1 की कमी से स्टोमेटाइटिस भी होती है, जिसमें मुंह पक जाता है, और मुंह के इन्फेक्शन होने से मुंह से वो ब्रेन में जा सकता है, जिससे कि मेनिनजाइटिस हो सकती है, दिमागी सूजन हो सकती है और बाद में बेहोशी हो जाती है। तो नियमित रूप से आप अगर विटामिन B1 का सेवन करें, अपने समय से खाद्य पदार्थों को खाएं, तो इसकी कमी बहुतायत नहीं होती है। ये हर सीरियल्स में, चाहे चावल, दाल, सब्जी, सभी में बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी इसकी उपलब्धता है और B1 के अलग से टैबलेट्स भी दिए जाते हैं, आप लोग जानते होंगे, जिससे कि इस बीमारी को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। दूसरा विटामिन विटामिन B6 है। विटामिन B6 की कमी से हमारे नर्वस सिस्टम और हमारी बॉडी इम्यूनिटी, शरीर से रोग से लड़ने की शक्ति, ये प्रभावित होती है। विटामिन B6 से कमी हो जाएगी तो हाथ में झुनझुनाहट होना, शरीर को न चलना, सुस्ती होना, थकावट होना, किसी काम को न करने की इच्छा होना और बिना बात के सुस्त रहने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। विटामिन B6 फलों में, जैसे सेब है, अनार है, मौसम्बी है, बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। यदि आपको अनायास थकान ज्यादा होने लगे, आपको कोई काम करने की इच्छा न हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप फलों का सेवन, एक फल का सेवन करिए, जैसे अमरूद ही है, अमरूद ही खा लीजिए, गाजर ही खा लीजिए। इन सबों में विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन B12 और B1 के साथ सभी इम्पोर्टेंट विटामिन उपलब्ध है। ये सस्ता भी है, गाजर तो हर जगह कोई खा सकता है। तो कोई एक फल आप नियमित रूप से सेवन करें, सलाद के रूप में करें, तो विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं हो।
1: विटामिन्स की कमी से होने वाली बीमारियां, कारण और निवारण, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राहुल सिंह। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

रेडियो एक प्रभावशाली माध्यम है, रेडियो का प्रयोग करें। रेडियो पर विज्ञापन सर्वोत्तम और सस्ता है। रेडियो पर विज्ञापन देकर अपनी आय बढ़ाएं।

आपका दिया हुआ रक्त किसी अनजान व्यक्ति के लिए जीवन का अमूल्य उपहार बन सकता है। रक्तदान करें। क्योंकि जीवन बचाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। आइए स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य के लिए नियमित रक्तदान का संकल्प लें। रक्तदान जरूर करें।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 होने वाले हैं। आइए।

रानी कैकई ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, ये सुनकर अयोध्या के महलों में विषाद का वातावरण छा गया है। किंतु श्री राम प्रसन्न हैं, उनका चित उल्लसित है। सब भाइयों को छोड़कर पिता ने उनका ही राजतिलक करने का निश्चय किया था, इस कारण जो विषाद उनके मन में उत्पन्न हुआ था वो अब मिट गया है। वो प्रसन्न मन माता कौशल्या के भवन में पहुंचे। श्री राम ने हाथ जोड़कर माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने गले लगाकर उन पर वस्त्राभूषण न्योछावर किए। वो उस शुभ लग्न की प्रतीक्षा में हैं जब राम का राज तिलक होगा। किंतु पुत्र के मुंह से ये सुनकर कि पिता ने उन्हें वन का राज्य दिया है और वो वन यात्रा के लिए माता का मंगलमय आशीर्वाद लेने आए हैं, माता कौशल्या के हृदय में जैसे वाण चुभ गया, जिसकी चुभन से वो तड़प उठी। पुत्र के वचन अत्यंत कोमल और शीतल थे, किंतु उन्हें सुनकर वो वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ते ही जवासा सूख जाता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज के गायक कलाकार थे जगजीत सिंह और कविता कृष्णमूर्ति। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण, आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा सुनिएगा रात 10 बजे से और संसद के समक्ष मुद्दे सुनिएगा रात 9:30 से। ये दोनों कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे। उर्दू कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा 9:30 पर। रात 8 बजे सुगम संगीत के कलाकार होंगी बेगम अख्तर। 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित राजन और साजन मिश्रा का गायन। पत्र के लिए धन्यवाद। आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। आपके ईमेल पत्रों के साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। कृष्णगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनिएगा शैलेंद्र रघुवंशी से बातचीत। बातचीत का विषय होगा फल उत्पादन का अतिरिक्त स्रोत। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा बाबूलाल यादव और साथियों का गाया लोकगीत। इन्हीं का गाया लोकगीत 9:50 पर भी होगा। युवा दोस्तों की वाणी सजेगी शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, युवाणी क्विज, यूथ डायरी, विश्व घटना चक्र, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। बाल गोपाल सुनेगा शाम 5 बजे से, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय की वार्ता मंगल पांडे का जन्म दिवस, हमारी संस्कृति और परंपराएं। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाशी कार्यक्रम लोक रंग सुनिएगा दिन 1:30 पर। मेहमान कैसे कैसे, विनोद रस्तोगी की लिखे ये झलकी सुनिएगा आज इतवार है कार्यक्रम में दिन 1:15 पर। प्रस्तुतकर्ता होंगे विपिन शर्मा। दिन 12 बजे सुनेगा अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, और आज आपकी फरमाइशों के साथ स्टूडियो में होंगे अरुण पांडे। आरोग्यम स्वास्थ्य संबंधी ये फोन इन कार्यक्रम सुनिएगा दिन 11:30 से। विषय होगा जोड़ों का दर्द, समस्या और समाधान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सत्यम जायसवाल, जिनसे बातचीत करेंगे शिखा श्रीवास्तव।

दिन 11 बजे सुनिएगा कार्यक्रम बाल संग। सामुदायिक गान शिक्षा पाठ उड़िया सुनिएगा सुबह 10:10 से। मधुर गीतों की महफिल सजेगी मधुरिमा में सुबह 8:45 पर और गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7:00 से।

तो ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। आपकी सेवा में है आकाशवाणी का वाराणसी।

0: गुड मॉर्निंग बनारस। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग, मैं सुधी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस में। साथ ही बनारस एक लंबे वीक के बाद ये प्यारे से संडे की शुभकामनाएं भी। भाई लंबा हफ्ता इसलिए क्योंकि जो लोग फैमिली के साथ संडे को घूमते थे वो लोग इस बार रथ यात्रा मेले के चलते काम के बीच में ही खूब घूमे हैं, तो लगता है आज का ये संडे तो सबका आराम में ही बीतेगा। और फिर इस समय तो मौसम भी ऐसा ही है कि बस आज घर पर ही रहकर कुछ प्रोडक्टिव करें, नहीं? क्योंकि बनारस बरसात जितनी खूबसूरत होती है ना, उतनी ही सावधानी भी अपने साथ लेकर आती है। जी हाँ, हम अक्सर बारिश का मजा लेने में इतने खो जाते हैं कि कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं, और फिर वही छोटी लापरवाही कभी कभी बड़ी परेशानी बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी लापरवाही की बात कर रही हूँ मैं, तो भाई मैं बात कर रही हूँ गर्मा गर्म पकौड़े, समोसे, कचौड़ी और चाट। आया ना मुंह में पानी। लेकिन ठहरिए भाई, ये जितनी भी चीजें मैंने गिनाई है ना, ये सभी इस मौसम में नुकसानदायक हैं। जी बनारस, अगर आप बाहर का खाना खा भी रहे हैं तो एक बार जरूर ध्यान दीजिए कि खाना ताजा हो। जो चीजें लंबे समय से खुली रखी हों या बार बार गर्म की गई हों, उनसे बचना ही बेहतर है, क्योंकि बनारस इस मौसम में ना नमी ज्यादा होने की वजह से खाने में बैक्टीरिया और फंगस जल्दी पनप सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि घर का ताजा बना खाना ही सबसे सुरक्षित माना जाता है। अगर फल खा रहे हैं तो उन्हें अच्छी तरह से धो कर खाइए। हरी पत्तेदार सब्जियों को भी अच्छी तरह साफ करके पकाइए, और अगर खाना बच गया हो तो उसे लंबे समय तक कमरे के तापमान में ना रखें। इसके साथ ही बनारस एक और छोटी सी बात, बनारस के मौसम में कई लोग सोचते हैं कि अब तो मौसम ठंडा है इसलिए पानी कम पीते हैं, लेकिन ऐसा बनारस बिल्कुल भी मत कीजिए। बॉडी को हाइड्रेटेड रखना हर मौसम में जरूरी है, इसलिए भरपूर पानी पीजिए। इसके साथ एक और बात जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि कहीं गमले में, कहीं कूलर में, कहीं बाल्टी में या छत पर पानी जमा हो जाता है, और यही जगह मच्छरों के पनपने के लिए सबसे अनुकूल होती है। इसलिए अपने घर के आसपास कहीं भी पानी जमा होने ना दें, नहीं तो बैठे बिठाए कई बीमारियों को न्योता दे बैठेंगे। तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं तो शाम के समय पूरी बांह के कपड़े पहनना और मच्छरदानी या सुरक्षित मच्छर रोधी उपाय अपनाना बहुत फायदेमंद रहता है। यकीनन बरसात का मौसम हमें सुकून देता है, लेकिन साथ ही में ये हमें जिम्मेदारियां भी सिखाता है। अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना और अपने आस पास की सफाई का ध्यान रखना, ये तीनों छोटी छोटी आदतें पूरे मौसम को सुरक्षित और खुशनुमा बना सकती हैं। हाँ जी, तो इसी तरह करेंगे और भी बहुत सारी बातें, कहीं जाइएगा मत क्योंकि प्रोग्राम तो अभी शुरू हुआ है मेरे दोस्त। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये पहला ट्रैक, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

जी बनारस, वेलकम बैक। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं अपनी शहर बनारस का हाल समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार शाम विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पहुंची, जहां उन्होंने मां गंगा की भव्य आरती में श्रद्धा पूर्वक भाग लिया। मुख्यमंत्री क्रूज के माध्यम से घाट पहुंची और पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा का पूजन अर्चन किया। इस दौरान उन्होंने मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर श्रद्धा और भक्ति भाव से आरती उतारी। गंगा तट पर दीप प्रज्वलित कर उन्होंने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की। गंगा आरती के दौरान घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने इस दिव्य आयोजन का साक्षी बनकर आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया। मुख्यमंत्री के साथ उनके पति भी पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने भी गंगा पूजन में सहभागिता की। वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती और आध्यात्मिक परंपरा ने मुख्यमंत्री को गहराई से प्रभावित किया। वहीं आपको बता दें, बनारस की नगर निगम की स्वच्छता व्यवस्था और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का जायजा लेने पहुंचे भारत सरकार के सचिव श्रीनिवास कटिकिठला, संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा करसड़ा और रमना प्लांट का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्लांट में संचालित विभिन्न व्यवस्थाओं, अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया और संचालन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की और अधिकारियों को व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान श्रीनिवास कटिकिटला ने प्लांट में

चालित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से ठोक अपशिष्ट के संग्रहण, प्रसंस्करण और निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी ली और विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का आकलन किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सतत प्रयास जारी रखने पर जोर दिया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए श्रीनिवास कटिकिथला और संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा ने प्लांट परिसर में पौधारोपण भी किया। दोनों अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छ और हरित वातावरण के निर्माण में वृक्षारोपण की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के पूरक है और सतत विकास के लिए दोनों क्षेत्रों में नियंत्रण कार्य करना आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्लांट में उपलब्ध संसाधनों, संचालन प्रणाली और कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। साथ ही भविष्य में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए गए। अधिकारियों ने नगर निगम की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्राप्त करते हुए योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। इस अवसर पर नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, अपर नगर आयुक्त अमित कुमार, सहायक नगर आयुक्त इंद्र विजय सहित नगर निगम और संबंधित विभागों के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें, बनारस की केंद्रीय जल आयोग की सुबह 8 बजे की रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जल स्तर 7.6 मीटर पर स्थिर था, लेकिन दोपहर बाद इसमें फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। जल पुलिस के प्रभारी सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि दोपहर बाद गंगा में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि देखी गई। जल स्तर में लगातार वृद्धि के कारण घाटों के किनारे और निचले तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों में बाढ़ का भय व्याप्त है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी किनारे न जाने की अपील की है। इसके साथ ही प्रशासन गंगा किनारे की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण स्थानीय निवासियों में चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने राहत कार्यों की तैयारी शुरू कर दी है और प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, बनारस के प्रधानमंत्री के हाथों जालंधर में उद्घाटित 6 रटा वाराणसी एक्सप्रेस का नोटिफिकेशन भी रेलवे बोर्ड ने जारी कर दिया है। 19 जुलाई यानी आज नियमित रूप से यात्रियों की सेवा में समर्पित ये ट्रेन 6 रटा से वाराणसी के लिए 14624 नंबर से रवाना होगी। यही ट्रेन वाराणसी से 20 जुलाई को यानी कल 14623 नंबर से 6 रटा के लिए रवाना होगी। धार्मिक पर्यटन के लिहाज से कई राज्यों को जोड़ने वाली उद्घाटित ट्रेन का वाराणसी में संत रविदास आश्रम के अनुयायी वाराणसी जंक्शन पर भव्य स्वागत करेंगे। स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 8 या 9 पर पहुंचेगी। तो ये था बनारस अपने शहर का हाल समाचार। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं क्या है खास आज सेहत के पिटारे से। आज हम बात करेंगे करौंदे की। जी हाँ, करौंदा एक छोटा लेकिन बेहद पौष्टिक फल है जो अपने खट्टे मीठे स्वाद के साथ साथ कई स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जाना जाता है। आयुर्वेद में इसे औषधीय गुणों से भरपूर फल माना गया है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और कई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि नियमित और संतुलित मात्रा में करौंदे का सेवन न केवल वजन नियंत्रित करने में मदद कर सकता है बल्कि हड्डियों को मजबूत बनाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और पाचन तंत्र को बेहतर रखने में भी सहायक हो सकता है। आइए आपको बताते हैं करौंदा खाने के कुछ प्रमुख फायदे। यदि आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो करौंदा आपकी डाइट का अच्छा हिस्सा बन सकता है। बनारस इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है जबकि फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद रहता है। फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है जिससे बार बार भूख लगने की समस्या कम हो सकती है। साथ ही ये पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाकर मेटाबॉलिज्म को सक्रिय रखने में
मदद करता है, जिससे वजन प्रबंधन में सहायता

मिल सकती है। इसके साथ ही बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों का कमजोर होना एक सामान्य समस्या बन जाती है, लेकिन करौंदे में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों की मजबूती बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन करने से हड्डियों का घनत्व बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है, साथ ही ये दांतों को भी मजबूत रखने में सहायक माना जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं के जोखिम को कम करने में योगदान दे सकता है। यही नहीं, बनारस करौंदा विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है, जिससे मौसमी संक्रमण, सर्दी, खांसी और वायरल बीमारियों से बचाव में मदद मिल सकती है।

सर्दी, खांसी और वायरल बीमारियों से बचाव में मदद मिल सकती है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में सहायक होते हैं और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में योगदान देते हैं। यही नहीं, काफी है ये छोटा सा फल और भी बहुत लाभदायक है। जी हाँ, स्वस्थ हृदय के लिए संतुलित आहार बेहद जरूरी होता है और करौंदा इनमें उपयोगी साबित हो सकता है। माना जाता है कि इसका सेवन शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही ये ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में भी सहायक हो सकता है, जिससे हृदय रोग, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है। तो देखा बनारस, एक छोटा सा फल कितना बड़ा धमाका कर सकता है। अगर आपने अपनी डाइट में करौंदे को अभी तक शामिल नहीं किया है तो यकीनन आज ही आप मार्केट जाइए और सबसे पहले इसको लेकर आइए और अपनी डाइट में सलाद, अचार या किसी भी रूप में इसको शामिल करें। तो ये था बनारस आज के सेहत के पिटारे में खास। इसी के साथ अब मुझे यानी स्तुति को दीजिए अनुमति, मिलूंगी आप सबसे फिर एक नए दिन, फिर एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास वालों को भी खुश रखिए। टाटा बाय बाय।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारी लखनऊ केंद्र से।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर, अमरोहा और संभल जिले में किया 1300

0: 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है उत्तर प्रदेश। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपित टिन्नू यादव और मनीष यादव को 39 घंटे के रिमांड पर लेकर पुलिस ने शुरू की पूछताछ। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और ममूटी तथा कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिया जाएगा पुरस्कार। और प्रदेश में बढ़ी मॉनसून की सक्रियता। मौसम विभाग ने दी अगले 3 दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बुलंदशहर, अमरोहा और संभल में 1340 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 57 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा,
1: प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों के सामने एक संकल्प लिया और संकल्प में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, लेकिन भारत को अभी से अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव की तैयारी प्रारंभ करनी थी। यानी 100 वर्ष जब भारत की आजादी के होंगे तब हमें कैसा भारत चाहिए, संकल्प हमें लेना होगा और उसके अनुरूप आचरण करना होगा।
0: मुख्यमंत्री ने बुलंदशहर में रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित किया। वहीं अमरोहा में 207 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है।
2: ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चौधरी चरण सिंह जी के सपने को भी साकार कर रही है और विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को दे रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद संभल में भी 569 करोड़ रुपए लागत से 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, यहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता मिल रही है, विकास और विरासत का संरक्षण हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गाजियाबाद में मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और विकास कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल गोरखपुर में जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा उपकरणों और उसके रखरखाव की जानकारी ली। उन्होंने वार्ड में पहुंचकर मरीजों का हाल भी जाना। श्री पाठक ने अधिकारियों को सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए।
3: डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, मरीजों से बात किया, उनके परिजनों से बात किया, लेकिन जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें उमस भरा माहौल था। हमने तत्काल उसमें वातानुकूलित संयंत्र लगाए जाने के निर्देश दिए हैं और उसकी फोटोग्राफ सीएमएस और सीएमओ हमें भेजेंगे। तत्काल मरीजों को उच्चीकृत करके सेवाएं दी जाएं, कहीं कोई कमी न रखी जाए, मरीजों की सेवा में परिजनों को कोई दिक्कत न हो, यह हमारी जिम्मेदारी है।
0: केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल लखनऊ में विकसित युवा बनाएगा विकसित भारत थीम पर आधारित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के लिए युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया। इस शिविर में 190 से अधिक जिला युवा अधिकारियों और माई भारत एनएसएस पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और भारत सरकार युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल भी उपस्थित थीं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स

0: हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित किए गए रॉकेट विक्रम 1 ने आगमन मिशन के अंतर्गत पेलोड को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में 450 किलोमीटर दूर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। यह प्रक्षेपण कल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे कर 5 मिनट पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। संसद के मानसून अधिवेशन से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मानसून अधिवेशन कल से 13 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपित रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और मनीष यादव को पुलिस ने कल 39 घंटे के रिमांड पर लिया है। पुलिस और जांच एजेंसी ने आरोपियों से पूछताछ की। वहीं चढ़ावा मामले को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कल कानपुर में कहा कि यह मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
1: दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT गठित की है, जांच चल रही है और जो दोषी हैं पकड़े जा रहे हैं और रिमांड में लेकर के पुलिस ने पूछताछ की है। फिर भी मैं जनता से अपील करती हूँ, कुछ लोगों की गलती के कारण अपनी आस्था को कमजोर नहीं करें, क्योंकि आस्था एक स्थायी चीज है। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी देवी का और वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। यह दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल हुई और जनकल्याण की कामना की। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की कल घोषणा की गई। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुग्म के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रदेश में मानसूनी सक्रियता बढ़ने से प्रदेश के कई जिलों में बीते 36 घंटे से रुक रुक कर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। बारिश के चलते कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई जिलों में नदियों का जलस्तर भी बढ़ाव की ओर है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश तथा कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर, अमरोहा और संभल जिले में किया 1340 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है उत्तर प्रदेश। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपित टुन्नू यादव और मनीष यादव को 39 घंटे के रिमांड पर लेकर पुलिस ने शुरू की पूछताछ। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और ममूटी तथा कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिया जाएगा पुरस्कार। और प्रदेश में बढ़ी मानसून की सक्रियता। मौसम विभाग ने दी अगले 3 दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक

0: इस समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 241.5 4 मीटर यानी 1242 kHz न्यूज़ ऑन AIR ऐप DTH DRM और वेब OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित राजन और साजन मिश्रा का गाया राग ललित। आपके साथ तबले पर संगत की है रमजान खान ने और हारमोनियम पर महमूद धौलपुरी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित राजन और साजन मिश्रा का गाया राग ललित। आपके साथ तबले पर संगत की थी रमजान खान ने और हारमोनियम पर महमूद धौलपुरी। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए

0: जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
2: इंडियन इकोनॉमी,
3: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
2: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्बई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
4: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी।

0: जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रम युगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of Parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated ओएम

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया ममुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले आज कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने तलबा और वालिदैन को खबरदार किया है कि जांच पड़ताल के लिए फर्जी या एआई से तैयार की गई ओएमआर शीट जमा कराने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सीबीएसई ने 10वीं जमात के दूसरे बोर्ड इम्तहान के नतीजे का ऐलान कर दिया है। खराब मौसमी हालात की पेशगोई के तनाजुर में अमरनाथ जी और वैष्णो देवी यात्राएं आरजी तौर

0: पर मुअत्तल कर दी गई है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में तीसरे मकाम के सनसनीखेज मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर कांसे का तमगा जीता, जबकि फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना का मुकाबला आज रात अमेरिका के न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले आज सभी सियासी जमातों की एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को खुश उसलूबी से चलाने को यकीनी बनाने के लिए सियासी पार्टियों का तआवुन चाहेगी। मानसून इजलास कल से शुरू होगा जो अगले माह की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान कई अहम बिलों पर बहस की जाएगी और उन्हें मंजूर किया जाएगा। दस्तावेजात में रद्दोबदल से मुतालिक बढ़ते हुए खदशात के पेश नजर इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने सख्त तंबीह जारी करते हुए तलबा और वालिदैन को जांच पड़ताल के लिए ओएमआर शीट्स जमा कराने के बारे में एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि हाल ही में नजरसानी के लिए जमा कराई ओएमआर शीट्स जाली या मस्नूई जहानत से तैयार करदा पाई गई हैं, जिसके बायस तमाम शिकायत की मजीद सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं क्लास के दूसरे बोर्ड इम्तहानात 2026 के नतायज का ऐलान कर दिया है। तलबा अपने नतायज डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल पर url.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। कौमी तालीमी पॉलिसी की सिफारिशात से हम आहंगी करते हुए सीबीएसई ने इस साल से 10वीं क्लास के दो बोर्ड इम्तहान शुरू किए थे। मेन बोर्ड इम्तहान 17 फरवरी से 11 मार्च और दूसरा बोर्ड इम्तहान 15 मई से 21 जुलाई तक मुनक्किद किया गया था। सीबीएसई के मुताबिक मेन और दूसरे बोर्ड इम्तहान के मजमूई 5% को जोड़कर इस साल नतायज 96.78% रहे। सीबीएसई के मुताबिक बैरून मुल्क तलबा भी अपने नतायज डिजी लॉकर पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से आज खराब मौसम की पेशगोई के पेश नजर एहतियात के तौर पर बंद रहेगी। ये फैसला भारतीय महकमे मौसमियात की जानिब से अगले कुछ दिनों में खराब मौसम की पेशगोई की वजह से मुसाफिरों की सलामती और तहफ्फुज़ को तवज्जो में रखते हुए किया गया है। हुक्काम ने कहा कि अगले हुक्म तक बालतल और नुनवान चंदनवाड़ी बेस कैंप से यात्रियों की किसी भी तरह की आमदरफ्त पर पाबंदी रहेगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भारत के महकमे मौसमियात की जानिब से जारी की गई खराब मौसम से मुतालिक एडवाइजरी के पेश नजर वैष्णो देवी यात्रा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है। श्राइन बोर्ड की तरफ से सरकारी तौर पर जारी की गई एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला यात्रियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इकदाम के तौर पर किया गया है। अकीदतमंदों को मशवरा दिया गया है कि वो तहम्मुल से काम लें और श्राइन बोर्ड के सरकारी मवासलाती चैनलों के जरिए जारी की गई मालूमात को अपनाएं। हुक्काम लगातार मौसम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और यात्रा उसी वक्त फिर से शुरू होगी जब ये समझा जाएगा कि यात्रियों के लिए यात्रा पूरी तरह महफूज है। महकमे मौसमियात ने हसास इलाकों में अचानक सैलाब, मिट्टी के तोदे खिसकने और पानी जमा होने के इम्कान के साथ जम्मू कश्मीर के बहुत से हिस्सों में फिर से शदीद बारिश का इंतबाह जारी किया है। इंतजामिया ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो गैर जरूरी तौर पर सफर से गुरेज करें और आबी इदारों से दूर रहें। वैष्णो देवी यात्रा ने इस साल एक अहम संग मील हासिल कर लिया है क्योंकि मुकदस गुफा के दर्शन करने के लिए यात्रियों की तादाद 50 लाख से ज्यादा पार कर गई है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने उत्तराखंड में आज तेज से बहुत तेज बारिश के सबब रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत के बहुत से हिस्सों में मुसलसल बारिश दर्ज की जा रही है जिसकी वजह से बड़ी नदियों की आबी सतह बढ़ती जा रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: IMD ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में आज बहुत तेज बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। متعدد ضلعوں میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی وارننگ کے پیش نظر ریاست کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے سبھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ حساس مقامات کی سختی سے نگرانی کریں اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کو دن رات

0: इंग्लैंड ने फ्रांस को 4-6 से हराने के बाद कांसे का तमगा जीत लिया है। दूसरी जानिब आज न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान आलमी कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 12:30 शुरू होगा। भारत की फुटबॉल की राजधानी समझे जाने वाले कोलकाता में फुटबॉल शायकीन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान आज देर रात होने वाले सनसनीखेज आलमी कप का फाइनल मैच देखने के लिए पूरे जोशो जज्बे और बेसब्री से इस मैच को देखने के लिए बेहद मुंतजर है। शहर की सड़कों पर फुटबॉल शायकीन अपनी अपनी पसंदीदा टीमों की जर्सियां पहने हुए हैं। मगरबी बंगाल की हुकूमत मुख्तलिफ अहम मकामात और रियासत के सभी जिलों में फुटबॉल मैच दिखाने के लिए बड़े स्क्रीन का एहतमाम कर रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: आज रात कोलकाता जागता रहेगा और पूरे बंगाल में ऐसा ही होगा। फीफा वर्ल्ड कप भले ही हजारों मील दूर न्यू जर्सी में हो रहा हो, लेकिन इसका जोश रियासत के हर घर तक पहुंच गया है। मोहल्ले नीले और सफेद रंग से सजे हुए हैं और मैसी की जर्सी हर जगह नजर आ रही है। मगरबी बंगाल के महकमा खेल ने कोलकाता के नंदन और एक तारा में ओपन एयर स्टेज का इंतजाम किया है, ताकि फुटबॉल का फाइनल मैच लोग अवामी स्क्रीनिंग पर देख सकें। क्लब्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेसेस में बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग लगाई गई हैं। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: इस दौरान दिल्ली की वजीर आला मोहतरमा रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि शहर के रेस्तरां, कैफे और दीगर अहल मराकज कल सुबह 4 तक खुले रहेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आला ने कहा कि इस फैसले से फुटबॉल के शायकीन को यकजा होने और खेल से लुत्फानंदोज होने का मौका मिलेगा। नीज शहर की रंगारंग नाइट लाइफ और मकामी कारोबार को फरोग हासिल होगा। भारत और इंग्लैंड के दरमियान एक रोजा बैन अलाकवामी मैचों की सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। खवातीन कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी में बुडापेस्ट दर्जाबंदी टूर्नामेंट में खवातीन के 76 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना बेगम।
2: शुक्रिया आसिया। राजधानी से शाया होने वाले मुख्तलिफ उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। बेशतर उर्दू अखबारात ने खलाई शोबे में भारत की कामयाबी से मुतालिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, भारत ने खलाई शोबे में नई तारीख रकम की, पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 कामयाबी से खला में रवाना, वजीर आजम मोदी ने मुबारकबाद दी। रोजनामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि भारत दहशतगर्दी को हर महाज पर जवाब देने की ताकत रखता है। रोजनामा प्रताप की अहम खबर है, हरियाणा हुकूमत महत्वाकांक्षी जंगल मित्र स्कीम के तहत 50,000 जंगल मित्र बनाएगी, ताकि आम लोग माहौलियात की बेहतरी में अपना ताउन दे सकें और जरिए माश भी हासिल कर सकें। तकरीबन सभी अखबारात ने फीफा आलमी कप के फाइनल की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले आज कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने तलबा और वालिदैन को खबरदार किया है कि जांच पड़ताल के लिए फर्जी या AI से तैयार की गई OMR शीट जमा कराने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। CBSE ने 10वीं जमात के दूसरे बोर्ड इम्तिहान के नतीजे का ऐलान कर दिया है। खराब मौसमी हालात की पेशगोई के तनाजुर में अमरनाथ जी और वैष्णव देवी यात्राएं आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन और अर्जेंटीना का मुकाबला आज रात अमरीका के न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मधुरिमा।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
8: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
7: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
8: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
7: बुकिंग है तो संपर्क करें
9: 0542227658।

इंतजार हुआ खत्म, एक शमा सी जल उठी। थोड़ा करीब आइए, ये जिंदगी मचल उठी।

आपकी कसम। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। सुबह के 8:51:30 ये आवाज यशुदास की। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार रविंद्र जैन। फिल्म का नाम अय्याश।

0: नरेंद्र शर्मा की रचना आप सुन रहे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। ये आवाजें थी सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की फिल्म प्रेम रोग में। मधुरमा की महफिल सजेगी इस अंतराल के बाद।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
3: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
0: साजन बिना सुहागन, यह फिल्म का नाम और ये आवाज मोहम्मद रफी की। इंदिवर के बोल और उषा खन्ना की ये तर्ज।

मधुरमा कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। फिल्म का नाम दोस्ताना। ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

तो ये दोस्ती आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से यूं ही बरकरार रखी। मधुर गीतों की महफिल सजी थी मधुरिमा में। आज इस कार्यक्रम को हमने सजाया इन फिल्मों के गीतों से। आपकी कसम, अय्याश, प्रेम रोग, साजन बिना सुहागन और दोस्ताना। लेकिन चलते चलते हम यही कहेंगे कि गीतों का सफर यूं ही चलता रहे, दिल की आवाज से दिल बहलता रहे। हम तो जैसे हैं वैसे मिलेंगे सदा, हाँ ये मौसम भले ही बदलता रहे।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, भारत यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता कैसे बन रहा है जन केंद्रित आर्थिक साझेदारी की आधारशिला। इस विषय पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के उत्तर प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव से खास बातचीत। वार्ताकार हैं तनवीर फातिमा।
2: भारत यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू हो गया है। ये एक आधुनिक, व्यापक और ऐतिहासिक व्यापार समझौता है।

0: जो द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य बेहतर बाजार पहुंच, व्यापार उदारीकरण और शुल्क में रियायतों के माध्यम से भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आर्थिक एकीकरण को और अधिक मजबूत करना है। इस समझौते से भारत के उद्योग और व्यापार जगत का क्या फायदा होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के उत्तर प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव जी। आलोक जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी मैम, धन्यवाद।
0: आलोक जी, भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता कितना महत्वपूर्ण कदम है?
1: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत 2047, अगर भारत को डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की तरफ बढ़ना है तो मुक्त व्यापार समझौता बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें

0: बढ़ना है तो मुक्त व्यापार समझौता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता की, जो जुलाई 2025 को एक समझौता किया गया था और 15 जुलाई 2026 को ये ऑपरेशनल लाया गया, ये मुक्त व्यापार समझौता कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अगर हम बात करें यूके की, तो भारत का जो यूके के साथ व्यापार है वो लगातार बढ़ रहा है। भारत ने 2025-26 में 39 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया, जिसमें यूके स्टेबल मार्केट के तौर पर भारत के लिए एक अच्छा बायलैटरल पार्टनर है, जहां पर लगातार द्विपक्षीय व्यापार को हम प्रमोट कर रहे हैं। इस मुक्त व्यापार समझौते होने के बाद से ही जो तमाम ऐसे बायर्स जो यूके में बैठे हुए थे, उन्होंने भारत के उत्पादों पर रुझान किया है। और मुक्त व्यापार समझौता अगर हम बात करें तो इसमें जो लेदर जा रहा है भारत से, उस पर 16% का शुल्क लगाया जाता था यूके के कस्टम्स या यूके की सरकार के द्वारा। इस मुक्त व्यापार समझौते के बाद से वो जीरो हो गया है। अगर हम टेक्सटाइल्स की बात करें, रेडीमेड गार्मेंट्स की बात करें, अपैरल्स की बात करें, उस पर 12% का टैक्स लगाया जाता था, टैरिफ, वो जीरो हो गया है। जेम्स एंड ज्वेलरी में 4% का था, वो जीरो हो गया है। केमिकल्स में 8% का था, वो टैरिफ जीरो हो गया है। तो मुक्त व्यापार समझौता से ऐसे वो तमाम सेक्टर्स, चाहे वो एग्रीकल्चर के सेक्टर्स हों या लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हों, जो रोजगार सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये सारे सेक्टर्स को इस मुक्त व्यापार समझौता के माध्यम से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर यूके की हम बात करें तो भारत का जो निर्यात है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद, यूनाइटेड किंगडम हमारा एक अच्छा पार्टनर है, जहां पर लगातार निर्यात बढ़ रहा है।
1: जी आलोक जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि तमाम जितने भी क्षेत्र हैं जिनसे हमको मजबूती मिलेगी, चाहे वो निर्यात की बात हो या हम सर्विसेज की बात करें, अगर हम यूपी की बात करें, सबसे बड़ा राज्य है देश का, और जिस तरह के यहाँ पर हम हैंडीक्राफ्ट की बात करें या हम जैसे आपने लेदर की बात करी, केमिकल्स की बात करी, जिन चीजों पे फोकस है यूपी में, जिनका बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, यूपी के परिपेक्ष में कितना फायदेमंद है ये समझौता?
0: देखिए, जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो उसका रास्ता हमारे उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो निर्यात के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभी जो लेटेस्ट डेटा हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स का एनालाइज किया उत्तर प्रदेश का, उसमें हमने ये पाया है कि 2,01,241 करोड़ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से हुआ, जो पूरे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है और दुनिया के तमाम देशों का एक्सपोर्ट है। जब हम यूके की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के निर्यात को, तो हम ये देखते हैं कि जो यूके है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऐसा बाजार है, जहां पर लगभग 40 से 42 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट लगभग यूरोप को हुआ, यूके को हुआ। तो जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स है, जो लेदर सेक्टर्स है, इसके अलावा जो केमिकल्स है, इंजीनियरिंग है, इनके लिए एक बड़ा मार्केट है। यूके जैसा हमने कहा एक स्थिर बाजार है। जब स्थिर बाजार होता है, जैसे हमने ट्रम्प का 2.0 टैरिफ देखा, हमने मिडिल ईस्ट डिसरप्शंस देखा, यूके एक में स्थिरता बनी हुई है। तो जब यूके में स्थिरता बनी हुई है तो तमाम सारे ऐसे हमारे उद्यमी, हमारे निर्यातक यूनाइटेड किंगडम के तमाम बाजारों में बायर के साथ संपर्क कर रहे हैं और जितने भी ट्रेड फेयर हैं, एग्जीबिशंस, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यूपी का जो निर्यात का लक्ष्य है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि इसको हम 2030 तक 4 लाख करोड़ का निर्यात का लक्ष्य हम हासिल करेंगे, तो यूके का ये मुक्त व्यापार समझौता एक मील का पत्थर हमारे निर्यातकों के लिए साबित होने वाला है। और जो आज 2,01,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, उसमें यूके अपनी अहम भूमिका निभाएगा और हमारे उद्यमी, हमारे निर्यातक उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से निभा पा रहे हैं।
1: आलोक जी, एक तरह से चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, युवाओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है, आईटी में, फार्मा में, प्रोफेशनल सर्विसेज, इन सब में युवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऐसे में जो युवा हैं इनको किस तरह का लाभ होने वाला है रोजगार के नजरिए से?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम बात करते हैं रोजगार सृजन की, तो जितना जैसे जैसे निर्यात बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे लिए रोजगार के अवसर भी एक्सप्लोर होते हैं। एक्सपोर्ट्स को ग्रोथ इंजन के तौर पर तमाम प्रदेश सरकारें देखती हैं और भारत सरकार का ये सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट्स करेंगे, चाहे वो आईटी हो, प्रोफेशनल्स हो या अन्य सर्विसेज हमारी, इन सब के लिए भी अपॉर्चुनिटीज यूके जैसे बाजार में हमारे युवाओं के लिए उपलब्ध हो रही है। बाहर का कोई यूके का अगर कोई इन्वेस्टर भारत में या प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव में कि हम वहां का इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे, बाहर के हमारे पास ब्रांड भी आएंगे, यहाँ कंपनी स्टैब्लिश होंगी, रोजगार मिलेगा प्रदेश के तमाम ऐसे हिस्सों में। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज, अगर कोई युवा बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई युवा यहीं पर ही पढ़ाई करके प्रदेश में अपनी सर्विसेज का लाभ लेते हुए कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है सर्विसेज सेक्टर्स में भी या मर्चेंडाइज सेक्टर्स में भी, तो उनको भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से देखने को मिलेंगी।
1: यूके के साथ जो समझौता हुआ उसमें सरकार ने अपनी भूमिका निभाई और ये समझौता हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें आगे

0: और जो निर्यातक हैं वो इससे जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए भी क्या सरकार किसी तरह से राह आसान कर रही है?
1: देखिए, एक तो मुक्त व्यापार समझौता अभी 15 जुलाई को कंक्लूड किया गया जो कि ऑपरेशनल भी हो गया। अब इससे संबंधित हम ऐसे निर्यातकों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रदेश लेवल पर। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो जहां पर हम निर्यातकों के बीच में विभाग जा रहे हैं वो आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वो सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उद्यमी अवेयर हो इस मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के। उनको ये भी बताया जाए कि इस मुक्त व्यापार समझौते से जिन उत्पादों पर अभी तक आप अपने मार्केट को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, जो टैरिफ जीरो होने की वजह से अब आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए अभी क्या किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार का जो हमारा निर्यात प्रोत्साहन विभाग है उसके माध्यम से हम यूके में बिजनेस डेलीगेशंस को भी हम आने वाले समय में प्लान कर रहे हैं ताकि हम नए बायर्स को हमारे एक्सपोर्टर्स के साथ कनेक्ट कर सके। हम यूके से भी कुछ बायर्स को उत्तर प्रदेश में लाने की बात कर रहे हैं जहां पर हम जो ऐसे छोटे एफपीओज हैं, छोटे कृषि वाले निर्यातक हैं, वो अगर बाहर नहीं जा सकते तो उनको हम उत्तर प्रदेश में ही बायर्स ला करके उनके साथ हम उनको कनेक्ट कराया जा सके ताकि बायलैटरल ट्रेड की दिशा में निर्यात और आयात को आगे बढ़ाया जा सके।
0: आलोक जी, जब हम कोई चीज निर्यात करते हैं तो जाहिर है कि हमको गुणवत्ता मानकों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इसके लिए किस तरह के कदम उठा रहे हैं आप लोग कि गुणवत्ता जो मानक है उन पर खरे उतरे और प्रोडक्ट को अप्रूवल मिले?
1: हाँ जी, देखिए, क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो हमारा प्रोसेस फूड का सेक्टर है। इन सेक्टर्स पर ज्यादा हमें हैंड होल्डिंग करने की आवश्यकता होगी और सरकार के तमाम विभाग, उन्होंने अपनी कमर कस ली है कैसे हमें निर्यातकों को सपोर्ट करना है, कैसे निर्यातकों को गाइड करना है, चाहे वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हो, इन सभी के माध्यम से हम क्वालिटी पर आने वाले समय पर फोकस करेंगे। और
0: आलोक जी, जब ये समझौता हुआ है तो इसके जरिए यूके का भी कुछ सामान भारतीय बाजारों तक पहुंचेगा, तो उससे क्या किसी स्थानीय उद्योग है उनको किसी तरह की कोई हानि होने की?
1: देखिए, इसमें जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है इसमें यूके का भी सामान हमारे देश में या प्रदेश में आएगा। भारत सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा हुआ है कि किसी भी तरीके का ऐसा उत्पाद जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान न पहुंचाए या हम उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसमें यूके के उत्पादों को राहत नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर जो छोटे एमएसएमई सेक्टर्स हैं उनको किसी भी तरीके का कहीं भी हार्म या नुकसान होने वाला नहीं है इस मुक्त व्यापार समझौते से।
0: जी, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से विकसित भारत की बात करती है लगातार सरकार, और इस समझौते के जरिए हम आर्थिक विकास के किस तरह के नए आयाम को खोल पाएंगे और विकसित भारत बनाने में कितना ये हेल्पफुल होगा?
1: देखिए, जो विकसित भारत 2047 की जब हम बात करते हैं, जब भारत विकसित होगा और जब भारत विकसित होगा तो हम आजादी के 100 वर्ष सेलिब्रेट करेंगे, उस दिशा में ये मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी के मोर्चे पर जैसे जैसे निर्यात बढ़ता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो हमारा स्टेबिलाइजेशन है वो स्थिर होता है। ये मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक मोर्चे पर भी, व्यापारिक मोर्चे पर भी और द्विपक्षीय मोर्चे पर भी ये मुक्त व्यापार समझौता एक अच्छा कदम भारत सरकार की तरफ से ये लिया गया है। और ऐसे कई मुक्त व्यापार समझौते आने वाले समय में सरकार बहुत तेजी से दुनिया के तमाम अन्य देश जो रह गए हैं उनके साथ भी हम भारत सरकार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द वो कंक्लूड किया जाए ताकि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की तरफ हम आगे लेके जा पाए।
2: हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: सामयिक चर्चा में आज आपने सुना भारत यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता कैसे बन रहा है जन केंद्रित आर्थिक साझेदारी की आधारशिला। इस विषय पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के उत्तर प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव से खास बातचीत। वार्ताकार थी तनवीर फातिमा।
4: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
5: स्वच्छता ही सेवा, ध्येय वाक्य को अमल में लाएं, कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपना जीवन अमूल्य बनाएं। स्वच्छता अपनाएं, कार्यालय की गरिमा बढ़ाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। स्वच्छ होगा जब वातावरण, तभी होगा नवजागरण। आइए आज से ही स्वच्छता ही सेवा की मूल भावना को अपनाएं, जीवन में नव ऊर्जा का संचार करें। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही संस्कृति है। स्वच्छता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ रहेगा भारत तो समृद्ध रहेगा भारत। नदियों को रखो साफ, ये है हमारी सभ्यता की पहचान। स्वच्छता को आदत बनाएं, रोज सफाई करना भूल न जाएं।

0: गांधी जी के सपनों का भारत हमें बनाना है। पूरा भारत स्वच्छ रहे, यही हमारा नारा है। स्वस्थ भविष्य के लिए आज से ही स्वच्छता अपनाएं। हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। जब हमारा भारत स्वच्छ होगा तभी तो हर सपना सच होगा। देश तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। जब देश का कोना कोना स्वच्छ रहेगा तब देश का हर एक बच्चा स्वस्थ रहेगा। अविरल गंगा अविरल यमुना, स्वच्छ भारत संकल्प है अपना। न फैलाएंगे कूड़ा कचरा, स्वच्छ बनाएंगे भारत अपना।
1: प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

0: बापू ने कहा था,
1: सत्य ईश्वर के समान है और सच्चाई का मार्ग सदैव सबके लिए कल्याणकारी है।
0: आइए सत्याग्रह को बनाएं राष्ट्र निर्माण और विकास का मजबूत आधार।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
1: सामईन आदाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज के प्रोग्राम में पहले आप समाअत फरमाएंगे फिराक गोरखपुरी की तनकीद निगारी के हवाले से प्रोफेसर मोहम्मद रजीउर रहमान का एक मकाला। फिराक तूने तो जगाया है सोए फितनों को, रहेंगी याद ये जादू बयानियां तेरी। फिराक गोरखपुरी का हुस्न कमाल ये है कि वो बएक वक्त शायर भी हैं और नक्काद भी, और ये कहना भी गलत ना होगा कि हाली और फिराक के सिवा कोई भी बएक वक्त अपने अहद का मुमताज शायर और मुमताज नाकिद ना बन सका। जो कुछ फिराक ने पढ़ा, जो कुछ फिराक ने जिंदगी में देखा, जो कुछ फिराक ने मुताला और मुशाहदे के अमल से गुजरते हुए सोचा, उसका इजहार उन्होंने नज्म और नसर दोनों में किया। यही वो ख्यालात और एहसासात हैं जिन्होंने उनकी शायरी को बुनियाद फराहम की, उनके तख्लीकी अमल को जहत अता की, उनके शऊर को तराशा खराशा और उनकी शख्सियत को वकार अता किया, जो बतौर एक अजीम शायर और बुलंद

0: मिलने की, तो जब हम उनसे मिलने जाते थे तो वो ये कहें शेर सुनाओ, तो जो दो चार छः दस शेर याद होते थे सुना देते थे। फिर वो ये कह देते कि देखो अगर तुम्हें इस लाइन इस शौक़ है अगर तुम्हें शायरी में, तो तुम कम से कम 100 शेर याद करके सुनाओ। आप यकीन जाने मैंने 100 शेर याद कर लिए
1: असाज़ा के।
0: असातिज़ा के।
1: जी
0: उसके बाद फिर जब मैं दोबारा मिला तो कहने लगे नहीं इससे काम नहीं चलेगा, अब 200 शेर और याद करो। तो उस 200 में अगर आप शायरी करते हैं अगले साल यही 200-400 हो जाएंगे,
1: बिल्कुल
0: फिर अगले साल 600 हो जाएंगे। लेकिन ये जज्बा आपके अंदर जिंदा रहना चाहिए कि मुझे सीखना है। हम पहले ही दिन एक गज़ल कह के उस्ताद हो जाएं और टेढ़े टेढ़े चलने लगें तो फिर उससे काम नहीं चलेगा। हमें जब तक हम जिंदा हैं हमको सीखते रहना है। कहीं से भी कोई चीज़ अच्छा मिले, किसी का अच्छा शेर हो, आप खुल के खड़े होकर दाद दीजिए, तब आप इसके मुस्तहिक हैं कि आपके शेर पे दाद मिले और आपको पसंद किया जाए।
1: बेशक
0: तो मेहनत हर सूरत में रंग लाती है, मेहनत आपको करना पड़ेगी, ऐसा नहीं हो जाएगा। ये रिवायत आप ख़त्म करनी पड़ेगी कि साहब हाँ चलिए ठीक है हो गया बस हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। अगर शायरी को ज़िंदा रखना है, अगर तबीयतदारी को ज़िंदा रखना है, अगर मिजाज को ज़िंदा रखना है, उर्दू मिजाज को तहजीब को ज़िंदा रखना है, तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा और लोगों के साथ बैठना भी पड़ेगा।
1: तो मैं चाहता हूं कि हमारे सुनने वालों के कुछ और कलाम सुना दें।
0: सुनिए गजल सुन लीजिए।
1: इरशाद।
0: अर्ज किया है कि एक जुनून का जबर अक्सर खुद पे तारी कर रहा हूं।
1: आहा।
0: सुनिए गजल। एक जुनून का जबर अक्सर खुद पे तारी कर रहा हूं, कोहे गम से मैं गजल की नहर जारी कर रहा हूं।
1: आहा।
0: एक जुनून का जबर अक्सर खुद पे तारी कर रहा हूं, कोहे गम से मैं गजल की नहर जारी कर रहा हूं। खाक आलूदा वजूद अपना है बस ये सोचकर, खाक आलूदा वजूद अपना है बस ये सोचकर, अर्श पर बैठा हुआ मैं खाकसारी कर रहा
1: हाँ हाँ
0: हूं।
1: हाँ अर्श पर बैठा हुआ मैं
0: खाकसारी
1: खाकसारी
0: कर
1: कर रहा
0: रहा
1: हूँ।
0: हूं।
1: क्या कहने हैं।
0: खाक आलूदा वजूद अपना है बस ये सोचकर,
1: हाँ
0: अर्श पर बैठा हुआ मैं खाकसारी
1: खाकसारी
0: कर
1: कर
0: रहा
1: रहा हूँ।
0: हूं। इस सितम आराई से दामन बचाना है जरूर, इस सितम आराई से
1: दामन
0: दामन
1: बचाना है
0: बचाना
1: जरूर।
0: है जरूर, शेर में इजहारे नफरत इस्तआरी कर रहा हूं। इस सितम आराई से दामन बचाना है जरूर, शेर में इजहारे नफरत
1: इस्तआरी
0: इस्तआरी
1: कर
0: कर रहा
1: रहा हूँ।
0: हूं। एक ख्वाबों का महल तामीर करना चाहता था,
1: यार जल्दी आ
0: एक ख्वाबों का महल
1: तामीर
0: तामीर करना
1: करना
0: चाहता था
1: चाहते
0: और साहिल पर ही बैठा, एक
1: ये
0: ख्वाबों का महल तामीर करना चाहता था और साहिल पर ही बैठा दस्तकारी कर रहा हूँ।
1: और साहिल पर ही बैठा
0: दस्तकारी
1: दस्तकारी
0: कर
1: कर
0: रहा
1: रहा हूँ।
0: हूँ और साहिल पर ही बैठा दस्तकारी कर रहा हूँ। लफ्ज़ो मानी फिक्र कैसर सब बताएं उसकी हैं, लफ्ज़ो मानी फिक्र कैसर सब बताएं उसकी हैं, मैं गजल की शायरी में हमदे बारी कर रहा हूँ। मैं गजल की शायरी में हमदे बारी कर रहा हूँ, कोहे गम से मैं गजल की नहर जारी कर रहा हूँ।
1: मतला हाजिर कर रहा हूँ गजल का, मुलाहजा फरमाएं। इत्तेफाकन जो मुस्कुराते हैं,

है। मुलाजा फरमाए, ऐ खुशी थोड़ी देर तो रुक जा, ऐ खुशी।

0: जब्त गम की हंसी उड़ाते हैं।
1: अभी आप डॉक्टर कलीम कैसर से उनका कलाम समाप्त फरमा रहे थे। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए। मुआविन तमय मोहम्मद फारूक जमाल, पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपके समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज पर तैयार किया गया था।
2: आज का उर्दू कार्यक्रम नश्र किया जा रहा था आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने लोक संगीत। आज के कलाकार हैं बाबूलाल यादव और साथी
1: हमें चाहिए माइया चरवे कछाओ हो हमें चाहिए।
0: सबसे पहले ये देवी गीत।

0: बाबूलाल यादव और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये देवी गीत। आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आइए अब सुने बाबूलाल यादव और साथियों की आवाजों में ये खेमटा, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: बाबूलाल यादव और साथियों की आवाजों में आइए सुने ये खेमटा।

बाबूलाल यादव और साथियों की आवाजों में अभी आप ये खेमटा सुन रहे थे। आइए इन्हीं की आवाजों में सुने ये दादरा। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे लोक संगीत।

बाबूलाल यादव और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये दादरा, आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आइए कार्यक्रम के आखिर में इन्हीं की आवाज़ों में सुने ये कहरवा।

0: बाबूलाल यादव और साथियों, गाइस कहरवा के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आपको याद दिलाते चलें कि इन्हीं का गाया लोकगीत आप शाम 6:30 पर कृष्णरथ कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 10:10 होने वाले हैं। आइए सुने सामुदायिक गान शिक्षा पाठ उड़िया।
1: नमस्ते नमस्ते। अच्छा बच्चों, आज मैं तुम्हें गाना सिखाता हूँ। इस गीत को लिखे हैं पल्ली कवि नंद किशोर बड़। तो फिर अभी गाना लिखो। पहले स्थाई दानिया खोरा पड़ी ची,
2: दानिया खोरा पड़ी ची,
1: बेलो जाऊची बुरी,
2: बेलो जाऊची बुरी,
1: की सुंदर पारा जोड़िए,
2: की सुंदर पारा जोड़िए,
1: जाऊ छंती उड़ी,
2: जाऊ छंती उड़ी।
1: अच्छा अभी पहला अंतरा लिखो। आसो आसो पारा जोड़ी को,
2: आसो आसो पारा जोड़ी को,
1: मोरो पिंडारे बसो,
2: मोरो पिंडारे बसो,
1: खाई बाकू देवी तुम्हों को,
2: खाई बाकू देवी तुम्हों को,
1: मुही नड़िया रसो,
2: मुही नड़िया रसो।
1: अभी दूसरा अंतर लिखो। पी बाकू देवी तुम्हों को,
2: पी बाकू देवी
1: तुम्हों को, पद्म पोखरी पानी,
2: पद्म पोखरी पानी,
1: सोई बाकू देवी खटुली,
2: सोई बाकू देवी खटुली,
1: माली घरू मु आनी,
2: माली घरू मु आनी,
1: माली घर खटुली रे जे,

0: हाँ बच्चों, तुम लोगों ने ये गाना सीख लिया। इस गीत को लिखे थे उड़ीसा के जाने माने कवि पल्ली कवि कौन। हाँ ठीक, तुम लोगों ने गाना सीखा। यहाँ घर में जाओ, अपने साथियों को ये गाना जरूर सिखाना, ठीक है? तो फिर चलो। हाँ
1: अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक गान शिक्षा पाठ उड़िया। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत।

मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाजों में आग और शोला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कुली नंबर वन, यह है फिल्म का नाम। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें, गीतकार समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद। आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: आनंद मिलन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे समीर की ये रचना। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ थी। कूली नंबर वन फिल्म का ये गाना था। कार्यक्रम का अगला गाना होगा ये।
1: प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है।
0: ये गाना हम आपको सुनाएंगे संतराल के बाद।
2: RBI
3: कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: तो आइए सुने वो सात दिन फिल्म का ये गाना। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

0: जी हाँ, जानवर फिल्म का गाना।
1: सच कहते हैं हाँ।
0: आकाशवाणी वाराणसी, इस समय आपके साथ।

जानवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे आनंद मिलिंद। कार्यक्रम का आखिरी गाना आपके रेडियो सेट पर।

जी हाँ, यादों का सिलसिला ही यूं ही चलता रहे और आकाशवाणी वाराणसी आप सुनते रहे। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मशाल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार थे जयदेव और संगीतकार थे हृदयनाथ मंगेशकर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों जय हिंद। मैं आपकी इला दीदी, आपके कार्यक्रम बाल संग में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में है हमारी
1: कंचन दीदी। जय हिंद इला दीदी और ननी साथियों, जय हिंद।
0: कंचन भाई, जुलाई है ना, और जुलाई का जो महीना होता है ना वो पढ़ाई का होता है, यानी कि गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल खुल जाते हैं और हमारे जो नन्हे दोस्त हैं वो अपनी नई क्लास में नई कॉपी किताब के साथ में वो स्कूल जाते हैं।
1: उन्हें पढ़ना तो जरूरी ही है, और खेल खेल में अगर वो चीजों को सीखें तो वो चीजें उन्हें अच्छे से याद भी रहेंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी इला दीदी।
0: बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम बहुत प्रेशर में याद करते हैं तो वो जल्दी हम भूल भी जाते हैं, लेकिन अगर उसको हम बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना करके हम याद करते हैं, यानी खेल के माध्यम से, तो याद रहता है। जैसे छोटे जो हमारे नन्हे दोस्त होते हैं जो नर्सरी में या फिर LKG में पढ़ते हैं, उनको अच्छे से अच्छे पोयम को भी खेल के

0: माध्यम से याद करा दी जाती है। गिनती, पहाड़ा, इन सब चीजों को भी लोग खेल के माध्यम से अगर याद करें तो बड़ी आसान हो जाता है।
1: और इसके साथ ही जो हमारे बड़े बच्चे हैं, यानी कि 8th क्लास में, 7th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, ये बच्चे भी अगर अपने मैथ्स के जो उनके अलग अलग फंडामेंटल्स, उनके पार्ट्स होते हैं, उनको भी अगर वो अच्छे से खेल खेल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप याद करें तो उन्हें याद हो जाएगा।
0: बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि दोस्तों ये भी किया जा सकता है कि कभी भाई क्लास में आप टीचर की तरह बन जाइए और कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा मैथ्स के सवाल है जो आपको नहीं आ रहे हैं तो उसको पहले समझिए और फिर सारे बच्चों को समझाइए। अगर सभी लोग आकर इस तरीके से सीखने की कोशिश करें तो वो शायद बहुत इंटरेस्टिंग होता है और जल्दी याद होता है।
1: कई सारी ऐसी कविताएं भी होती हैं जिन्हें अगर हम अपना एक अलग धुन बना लें, एक अलग ऐसा कोई गीत जो बहुत पसंद हो उस पर आधारित करके उसको हम याद करें तो वो भी हमें याद हो जाएगा। और ऐसे ही कहानियां भी अगर हम लेना चाहें तो कहानियां भी हम याद कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, हमें कंचन याद आ रहा है कि हम लोग भी छोटे थे ना तो बस मौका मिलता था हम लोग टीचर टीचर खेलने लगते थे, तो जो टीचर बनता था उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो उस चीजों को सही बताए और पहले सही से याद कर ले, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है।
1: बिल्कुल, आपने तो मुझे याद ही दिला दिया। अक्सर हम लोग खेलते थे ना जिनमें हम लोग बहुत सारे फलों के नाम याद करते थे, है ना, छोटी छोटी पत्रियां बनाते थे उसमें 10 फलों के नाम, मैच नहीं होने चाहिए, अलग अलग लिखना है ना।
0: बहुत से ऐसे हम लोग खेल खेलते थे ना जिसमें वो व्हाट कलर यू वांट वाला होता था, उसमें हम लोग उस कलर को खोजते थे, उस कलर को टच करते थे, जो नहीं पकड़ पाता था सही कलर को वो आउट हो जाता था। तो इस तरीके से तमाम ऐसे खेल हैं जो कि हमारी पढ़ाई से रिलेटेड हैं, हमारी पढ़ाई के लिए भी अच्छे हैं, हमारे ब्रेन को शार्प करते हैं और साथ ही साथ खेल तो वो खेल भी है।
1: और ये माइंड गेम जो होते हैं ये तो आप खेलिए ही, इसके साथ ही एक समय ऐसा भी निर्धारित करिए जब आप अपने घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलें। इससे भी आपका दिमाग तेज होगा, आपका शारीरिक व्यायाम होगा और इस खेल के बाद जब आप पढ़ेंगे ना तो पढ़ाई में मन भी लगेगा।
0: भाई देखो कंचन, खेल कूद तो अच्छा लगता है लेकिन खेल कूद के साथ साथ कभी कभी कुछ लगता है कि दिमाग को और एनर्जी चाहिए और माइंड बूस्टर का काम करता है ना हमारा मनपसंद गीत, तो हम दोस्तों को सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दीदी गीत संगीत तो हो गया, अब हमारी अंकिता बहल दीदी भी आ गई हैं।
1: उनके पास एक बहुत अच्छी सी कहानी है, तो दोस्तों आइए सुनते हैं ये कहानी।
2: बच्चों आज की मेरी कहानी का शीर्षक है प्रोजेक्ट प्राण, आखिरी बीज की विरासत। जब धरती ने अंतिम संदेश भेजा, भोर की पहली किरण अभी क्षितिज पर फैली ही थी। ओस की बूंदे घास की पत्तियों पर मोतियों की तरह चमक रही थी। चिराग रोज की तरह अपने गांव के पीछे बहने वाली छोटी नदी के किनारे टहलने निकला। कभी कल कल बहने वाली वही नदी आज शांत नहीं बल्कि उदास दिखाई दे रही थी। पानी पर प्लास्टिक की बोतलें तैर रही थी, किनारों पर रासायनिक झाग जमा था और हवा में मिट्टी की सौंधी महक के स्थान पर एक अजीब सी कड़वाहट घुली हुई थी। चिराग ने गहरी सांस ली, पर उसे लगा जैसे हवा भी थकी हुई हो। उसी समय उसकी सहपाठी अदिति वहां पहुंची। क्या सोच रहे हो, उसने पूछा। चिराग ने नदी की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है यह नदी हमसे कुछ कहना चाहती है। दोनों कुछ क्षण मौन रहे, तभी नदी के किनारे खड़े विशाल बरगद के तने से हल्की हरी आभा निकलने लगी। उसकी जड़ों के बीच से मानो प्रकाश का एक द्वार खुला और वहां से हरे वस्त्रों में एक तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखों में जंगलों की गहराई थी, बालों में

लताओं की हरियाली और स्वर में बहते जल की मधुरता। हरिया ने अपना सिर आगे किया और दो चार पंक्तियों में एक कविता सुनाने शुरू की। हरे भरे वृक्षों की थी अमृत हवा, नदी में बहता कल कल पानी था, पर अब इंसानों की भूल से देखो सब सूखता प्यासे वीराने में आज। डरो मत, उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं हरिया हूँ, इस वन की रक्षक नहीं इसकी स्मृति हूँ। अदिति विस्मित रह गई। क्या पेड़ भी याद रखते हैं, उसने धीरे से पूछा। हरिया मुस्कुराई। मनुष्य अपनी बातें पुस्तकों में लिखता है, प्रकृति उन्हें वृक्षों, नदियों, पर्वतों और मिट्टी में संजोती है। तुम जिसे जंगल कहते हो वह वास्तव में धरती की जीवित स्मृति है। उसने अपनी हथेली नदी के जल पर रखी। कुछ क्षणों के लिए पानी साफ दिखाई दिया। रंग बिरंगी मछलियां तैरने लगी, पक्षियों का कलरव सुनाई दिया, फिर दृश्य विलीन हो गया। यह अतीत था, हरिया बोली, और यदि तुमने कुछ नहीं बदला तो भविष्य इससे भी अधिक भयावह होगा। इतने में दूर से मशीनों की गर्जना सुनाई दी। नदी के ऊपरी हिस्से में स्थित कारखाने का मालिक अपनी गाड़ी से उतरा। उसके हाथ साथ इंजीनियर और कर्मचारी की टोली थी। चिराग ने साहस जुटा कर पूछा, आप इस नदी में गंदा पानी क्यों छोड़ते हैं? कारखाने का मालिक मुस्कुराया, प्रगति की कीमत चुकानी पड़ती है। उद्योग बंद कर दूं तो लोगों को रोजगार कौन देगा? अदिति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रोजगार और विनाश एक ही बात नहीं है। विकास वह है जिससे मनुष्य भी बचे और प्रकृति भी। कारखाने के मालिक ने व्यंग किया, तुम बच्चे दुनिया बदलोगे? हरिया पहली बार गंभीर हुई। हर विनाश की शुरुआत कुछ लोगों ने की थी, हर पुनर्निर्माण भी कुछ लोगों के द्वारा ही शुरू होगा। उसने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें बरगद का एक छोटा सा बीज चमक रहा था। यह केवल बीज नहीं है, उसने कहा, यह जीवन का सूत्र है। इसे उस दिन बोना जब मनुष्य हवा खरीदने लगे। चिराग ने बीज संभाल कर रख लिया और इसी के साथ 60 वर्ष बीत गए। सन 2086, धरती बदल चुकी थी, नदियाँ मानचित्रों में बची थी, जंगल संग्रहालयों में बच्चे पेड़ों को इतिहास की वस्तु समझते थे, शहरों में विशाल टावर खड़े थे जहाँ से कृत्रिम ऑक्सीजन पाइपों के माध्यम से घरों तक पहुँचाई जाती थी। हर सुबह लोगों की घड़ियाँ याद दिलाती थी, आपके ऑक्सीजन पैक का शेष स्तर 12% है, कृपया आज ही नवीनीकरण कराएं। ऑक्सीजन अब अधिकार नहीं, सेवा थी। 14 वर्षीय रैंचो ने इस व्यवस्था से परेशान होकर कहा, दादाजी अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठे हुए थे। वे इस नई दुनिया के सब्सक्रिप्शन मॉडल पर अक्सर व्यंग कसते थे। दादू ने खांसते हुए कहा, बेटा रैंचो, हमने तो मुफ्त की हवा खाई थी, तुम लोग तो अपनी सांसों का भी ईएमआई भर रहे हो। फिर दादू ने अपनी डायरी से एक पुरानी चुभती हुई शायरी पढ़ी। चांद पर प्लॉट ले लिया, मंगल पर बसाली बस्ती, हवा का बिल भरते भरते नीलाम हो गई इंसानों की हस्ती। रैंचो हंस पड़ा, दादू आप भी ना, ये पेड़ नाम की टेक्नोलॉजी बहुत आउटडेटेड हो गई थी। हमारी कंपनी कितनी बढ़िया हवा बनाती है, कल ही मैंने हिमालयन ब्रिज वाला प्रीमियम पैक लिया है। वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड नहीं थी मूर्ख, वो ओपन सोर्स थी और बिल्कुल मुफ्त थी। उसके दादाजी पुराने संदूक से एक कपड़े में लिपटा बीज निकाल कर बोले, इसे तुम्हारे परदादा चिराग ने संभाल कर रखा था। उन्होंने कहा था कि जब सांसें बिकने लगे तब इसे मिट्टी को लौटा देना। रैंचो ने हंसते हुए पूछा, दादाजी एक बीज दुनिया बदल देगा? दादाजी ने उत्तर दिया, दुनिया हमेशा विचार बदलते हैं, बीज तो केवल उन्हें जन्म देते हैं। उसी रात रेंचो शहर के

बाहर पुराने कबाड़ खाने में पहुंचा। वर्षों बाद पहली बार उसे मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा मिला। उसने बीज बोया और पानी की कुछ बूंदें डाल दी। कई सप्ताह तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक सुबह मिट्टी हल्की सी हिली, एक नन्ही कोंपल बाहर आई। रेंचो ने पहली बार ऐसी हवा में सांस ली जिसमें किसी मशीन का शोर नहीं था। उसे लगा जैसे हवा में कोई पुराना गीत बह रहा हो। उसी समय टेक्नोपुर में एक और किशोर वीर उसकी छोटी प्रयोगशाला में व्यस्त था। वह जानता था कि पेड़ कभी अकेले नहीं जीते। धरती के भीतर फफूंद का महीन जाल उन्हें जोड़ता है। उसने कबाड़ से एक यंत्र निकाला।

0: उसने कबाड़ से एक यंत्र निकाला और उसे बनाया। नाम रखा इको ट्रांसलेटर। उसने उसे शहर के अंतिम बचे जंगल में स्थापित किया। यंत्र सक्रिय होते ही हेडफोन में आवाज गूंजी। आखिर किसी इंसान ने सुनने की कोशिश तो की। वीर चौंक गया। आवाज एक फफूंद की थी। वह बोली, तुम लोगों ने इतना प्लास्टिक फैलाया कि मेरा भोजन भी जहर बन गया। मुझे कचरा साफ करने के लिए बनाया गया था, कचरे में जीने के लिए नहीं। वीर मुस्कुरा दिया। तभी दूसरी आवाज आई, गंभीर धीमी सदियों जितनी पुरानी। मैं भरगत हूँ। जब तुम्हारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे तब भी मैं यहीं था। मैंने तुम्हें फल दिए, छाया दी, मिट्टी बचाई, वर्षा को रोका नहीं, बुलाया। बदले में तुमने मुझे लकड़ी समझ लिया। वीर की आंखें नम हो गई। उसने पूरा संवाद शहर के प्रसारण नेटवर्क से जोड़ दिया। कुछ ही क्षणों में हर स्क्रीन पर जंगल बोल रहा था। कंपनी के निदेशक, वैज्ञानिक, मंत्री, उद्योगपति और सामान्य नागरिक सब सुन रहे थे। टेक्नोपुर के महापौर सेठ पॉलिथिन दास ने पहले इसे तकनीकी गड़बड़ी समझा, लेकिन तभी उनका कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सहायक बोला, विश्लेषण पूर्ण, यदि अंतिम प्राकृतिक वन नष्ट हुआ तो शहर की वायु शोधन लागत 300% बढ़ जाएगी। कृत्रिम ऑक्सीजन प्रणाली भी दीर्घकाल में पर्याप्त नहीं होगी। पहली बार सेठ मौन हो गए। उधर रेंचो अपनी पौधे के पास पहुंचा। वह अब छोटा सा वृक्ष बन चुका था। उसकी पत्तियां हवा के साथ झूम रही थी। अचानक पूरा जंगल एक साथ प्रकाशित हो उठा। हरिया फिर प्रकट हुई, पर इस बार वह केवल बरगद में नहीं थी, हर पत्ती में थी, हर हवा के झोंके में थी, हर नदी की बूंद में थी। वह बोली, मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं प्रकृति की सामूहिक चेतना हूँ। जब तक एक भी बीज जीवित है तब तक आशा जीवित है। चिराग अब वृद्ध हो चुका था। अदिति पर्यावरण वैज्ञानिक बन चुकी थी। रेंचो और वीर नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चारों पीढ़ियां पहली बार एक साथ खड़ी थी। उद्योगपति भी वहां आ गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने मशीनों पर विश्वास किया था। गलती मशीनों की नहीं थी, गलती यह थी कि मैंने उन्हें प्रकृति का विकल्प समझ लिया। अदिति मुस्कुराई। तकनीक तब तक श्रेष्ठ है जब तक वह जीवन की सहयोगी है, स्वामिनी नहीं। उस दिन टेक्नोपुर ने अपना सबसे बड़ा निर्णय लिया। अंतिम जंगल नहीं काटा जाएगा, हर इमारत की छत पर उद्यान बनेगा। सौर ऊर्जा से चलने वाली बसें आएंगी, वर्षा जल का संग्रह अनिवार्य होगा, जैविक निर्माण सामग्री उपयोग बढ़ेगा। हर बच्चों को विद्यालय में एक पौधा नहीं, एक वृक्ष पालने की जिम्मेदारी दी जाएगी। वर्षों बाद पहली बार नदी फिर बहने लगी। उसका जल पहले जैसा निर्मल नहीं था, पर उसमें जीवन लौट आया था। मछलियां वापस आईं, पक्षियों ने घोंसले बनाए, हवा में फिर मिट्टी की सौंधी सुगंध घुल गई। रेंचो ने उस बरगद की छाया में बैठकर पूछा, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? हरिया की आवाज हवा में तैर गई, प्रकृति कभी बदला नहीं लेती, वह केवल उत्तर देती है। तुमने विनाश बोया तो संकट होगा, अब संरक्षण बोगे तो भविष्य फलेगा। सूर्य धीरे धीरे क्षितिज पर उग रहा था। बरगद की नई पत्तियों पर चमकती ओस मानो मुस्कुरा रही थी। धरती ने इंसानों को कभी छोड़ा नहीं था, इंसानों ने ही उसका हाथ छोड़ दिया था। जिस दिन उन्होंने फिर उसका हाथ थामा, उसी दिन भविष्य ने पहली बार सचमुच सांस ली। आखिरी बीज केवल एक वृक्ष का नहीं, बल्कि मानवता की चेतना, विज्ञान और प्रकृति के संतुलित भविष्य का बीज है।
1: नन्ही साथी, अभी सुन रहे थे अंकिता बहल दीदी से कहानी। कहानी का शीर्षक था प्रोजेक्ट प्राण, आखिरी बीज की विरासत।
2: और अभी हमारे साथ में कुछ हमारे नन्हे साथी भी हैं, जिनकी बहुत सारी प्रस्तुतियां हैं, जो कि बहुत कुछ सुनाना चाहते हैं। तो कंचन, चलो देखते हैं ये

0: बच्चे क्या सुना रहे हैं?
1: हमारे साथ में बैठी हुई है एक बालिका, है ना? आपका क्या नाम है?
2: सुनैना यादव।
1: सुनैना यादव। आप क्या सुना रही हैं?
2: गणेश वंदना।
1: गणेश वंदना। तो चलिए।

0: ज्यादा कृष्ण है,
1: मिलाराम से राधे कृष्ण है।
0: हम दोनों एक घोड़े वाली कविता सुनाएंगे। एक कदम दो कदम तीन कदम तार, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। एक कदम दो कदम तीन कदम तार, चल मेरे घोड़े नैनीताल। एक कदम दो कदम तीन कदम तार, ले मेरे घोड़े चने की दाल। एक कदम दो कदम तीन कदम चार, खा कर दिखा फिर अपना कमाल। हम दोनों एक कविता सुनाएंगे। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनको से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं उतर गई सांपों पर हली भली थी जो सिखवा, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आए बहुत बड़ा है यह संसार।
2: कंचन, ये जो नन्हे हमारे दोस्त है ना, इनके अंदर तो प्रतिभाएं कूट कूट के भरी हैं, बस इनको छेड़ने भर की जरूरत होती है। कितनी सारी इनकी कहानियां हैं, कविताएं हैं, मतलब कहा जाए तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है इनके अंदर।
3: किताबों से मित्रता करना ये भी एक अनोखी मित्रता है।
2: भाई किताबों से मित्रता तो जरूरी है, हमारे नन्हे दोस्तों को भी है और हम लोग को भी है। उम्र चाहे कोई भी हो, किताबों से दोस्ती करिए, वो हमेशा साथ रहती है और बहुत सारी ज्ञान की बातें उसमें छुपी होती हैं। किसी भी जगह आप रहिए, अगर आप अकेले बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो बस एक मनपसंद किताब आप लीजिए और पढ़ डालिए, देखिए आपकी बोरियत दूर होगी, कैसे समय बीतेगा पता ही नहीं चलेगा।
3: और हमारे नन्हे साथी अक्सर मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो अगर आप हाथ में किताब लेकर के पढ़ना ना चाहें तो बहुत सारी किताबें ऑनलाइन फोन पर भी आपके उपलब्ध हैं।
2: हाँ।
3: तो अच्छी अच्छी किताबें, कहानियों की, कविताओं की और भी जो आप चाहें उसे आप पढ़ें। भाई पढ़ने से आपका दिमाग भी बहुत तेज होता है।
2: कंचन, भाई समय हो चला है, अब तो अपने कार्यक्रम को समेटना है और घड़ी भी इशारा कर रही है, तो अगली बार हम लोग फिर आएंगे।
3: तब तक दीजिए अनुमति अपनी कंचन दीदी को
2: और मुझे इला दीदी को।
4: जय हिंद।

बच्चे सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम बाल संग। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम, वेब्स, ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। कार्यक्रम में आज का विषय है जोड़ों का दर्द, समस्या और समाधान। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सत्यम जायसवाल, इनसे बातचीत की है शिखा श्रीवास्तव ने।

0: नमस्कार श्रोताओं, कल्पना कीजिए कि हमारे कदम जो कभी मीलों बिना थके चल देते थे, आज वही कुछ सीढ़ियां चढ़ने में साथ छोड़ने लगते हैं। घुटनों की टीस, कंधों की अकड़न, उंगलियों की गांठों गांठों में दर्द, जोर जोर में जकड़न, लगता है कि क्या कभी बिना दर्द के जीवन फिर से नहीं चल सकता। अगर आपके भी मन में ऐसे सवाल हैं, तो इन सवालों का जवाब लेकर हम हाजिर हैं आज के अपने स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्य में। मैं हूं आपकी रेडियो सहेली शिखा श्रीवास्तव और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दर्द विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यम जायसवाल जी, जो सभी तरह के दर्द से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये एक कायरोप्रैक्टर भी हैं, तो आइए जानते हैं इनसे दर्द का समाधान कैसे किया जा सकता है और ये क्यों होता है। तो डॉक्टर सत्यम जायसवाल जी, आपका हम अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी धन्यवाद।
0: श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए हैं और ये फोन आ रहा है, सर पहले ये ले लेते हैं फिर अपना प्रश्न करते हैं। हेलो, आरोग्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज जोड़ों के दर्द पर बात हो रही है, तो आपकी जो भी समस्या है, हमारे बीच में डॉक्टर सत्यम जायसवाल जी आए हुए हैं जो इसी के विशेषज्ञ हैं, साथ ही कायरोप्रैक्टर भी हैं, तो आप डॉक्टर साहब से बात करें।
2: आपका सर नमस्कार।
1: नमस्कार मोहन जी। मोहन जी बताएं क्या परेशानी है।
2: सर परेशानी है कि मेरे पिताजी हैं, उनके छिकने में दर्द होती है।
1: पिताजी का उम्र कितना होगा? लगभग
2: लगभग लगभग 80 साल।
1: 80 साल के। जब कोई बुजुर्ग हो जाते हैं, एज बढ़ने लगता है, तो क्या होता है, घुटने में कार्टिलेज होती है, वो घिसने लगता है। दोनों घुटने के बीच में गद्दी होती है, जो कार्टिलेज होती है, वो उसी के ऊपर दोनों हड्डियां मूव करती है, वो घिसने लगता है, जिसकी वजह से फिर वहां पे क्या होता है, घर्षण होने लगते हैं हड्डियों में, तो वहां पे हड्डियों का चूरा होता है, जिसकी वजह से पेन आने लगते हैं। इसकी वजह से पेन आ रहा है उन्हें, नॉर्मल चलने फिरने के लिए बोलिए, अगर आप हाथ पकड़ा के उनको थोड़ा सा पीछे की तरफ वॉक करा सकते हैं, रिवर्स वॉक कराएं, तो वो भी उनको बेनिफिट करेगा। थोड़ा सा आप ऑयल वगैरह लगा दें उनके घुटने पे और उल्टा वॉक करें, रिवर्स वॉकिंग करेंगे, रिवर्स वॉक करने से उनके घुटने में काफी उनको आराम मिलेगा।
2: खानपान से भी कुछ है?
1: खानपान बिल्कुल, घुटने की कार्टिलेज के लिए कोलेजन की जरूरत पड़ती है। कोलेजन का आप अलग से सप्लीमेंट लेके यूज कर सकते हैं, जिससे वहां की गद्दी फिर से प्रॉपर रिपेयर हो सकती है। सूरज की रोशनी लीजिए, कैल्शियम इनरिच्ड डाइट लीजिए, प्रॉपर इंटेक रखिए, प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा रखिए, तो ये सब चीजें रखिए। मेन चीजें हैं, आप चलते फिरते रहिए,
0: इसी तरह फोन करते रहिए हमें। हाँ सर, एक फोन और आ रहा है।
1: जी
0: हेलो।
3: हेलो, आरोग्यम से बोल रहे हैं मैम?
0: हाँ हाँ, आरोग्यम से बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं सर?
3: हाँ नमस्ते मैम, मैं बालकृष्ण राजधर कारण मार्टिनगंज बाजार जिला आजमगढ़ से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा बालकिशन जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज जोड़ों के दर्द पर बात हो रही है और जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यम जायसवाल जी हमारे बीच में हैं, तो डॉक्टर साहब से आप अपनी समस्या का समाधान पाएं, बात करें।
1: नमस्कार जी, बताइए।
3: नमस्ते।

0: मेरी उम्र 63 ईयर्स है
1: जी
0: और मेरे घुटनों में ना इससे दर्द आता है और खुट खुट चलने बोलता है।
1: जी घुटनों में दर्द रहता
0: तो
1: होगा और खुट खुट बोलता है। क्या आप पलथी मार के
0: हाँ
1: बैठ पाते हैं अभी?
0: बैठता हूँ योगा भी करता हूँ।
1: योगा करते हैं, बहुत ही अच्छा। योगा करते रहना
0: जैसे
1: है।
0: सुनिए सर, और 2 किलोमीटर वॉकिंग करता हूँ।
1: वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने एक चीज बताया कि योगा करने से आपका पेन कम होगा, ये बात बहुत सही है। क्योंकि वर्जिश करते हैं, जब हम जब व्यायाम करते हैं, तो इससे हमारा मसल्स क्या होता है, स्ट्रेंदन होता है, हमारी जॉइंट्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है, जॉइंट्स में जैसे मजबूती आती है। तो ये क्या करता है, पेन को कम करता है। बेसिकली आपका जो दर्द हो रहा है, दोनों घुटने के बीच की जो गद्दी होती है, कार्टिलेज, वो घिस गए हैं, जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा। ये गद्दी जब घिस जाती है, तो ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी आपस में घर्षण करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे वियर एंड टीयर होता है।
0: खाने का क्या, मतलब खाने कोई परहेज?
1: खाने का इसमें कोई परहेज नहीं है, ठंडा पानी वगैरह बस एकदम नहीं पियेंगे, बहुत ठंडा चीजों का सेवन नहीं करें। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप अच्छी चीजों का खाने में चयन करें, जैसे जिसमें कैल्शियम ज्यादा है, विटामिन D3 है, प्रोटीन्स ज्यादा हैं। थोड़ा सा उल्टा चलना अपने में ऐड कीजिएगा। आपने बोला कि आप वॉक करते हो, 5 मिनट उल्टा चलिएगा इसमें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
0: ठीक
2: बालकिशन
0: है,
2: जी।
0: थैंक यू।
2: एक फोन और आ रहा है सर। हेलो,
3: हाँ हेलो,
2: हाँ जी, कौन बोल रही हैं?
3: हाँ नमस्कार
2: नमस्कार
3: जी, मैं जोड़ों के दर्द के रिगार्डिंग कॉल की हूँ।
2: जी, नाम और पता बताइए मैम आप अपना।
3: मेरा नाम हुआ पूजा कुमारी,
2: अच्छा पूजा जी, कहाँ से बोल रही हैं?
3: गया से बोल रही हूँ।
2: अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। और जोड़ों के दर्द पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज आए हैं डॉक्टर सत्यम जायसवाल जी। आप डॉक्टर साहब से बात कर लें।
1: पूजा जी नमस्कार, पूजा जी बताएं।
3: जी मेरे माता जी को है जोड़ों में दर्द पिछले 5-6 साल से।
1: अच्छा, माता जी की उम्र कितनी होगी अभी?
3: अभी है 48 इयर्स।
1: कितने दिनों से है इनके उधर?
3: 4-5 साल से है। अब तो उठने बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, पहले
1: कभी
3: होता नहीं
1: घुटने में
3: था
1: कोई पहले की कोई इंजरी, घुटना मुड़ गया
3: इंजरी
1: हो?
3: वगैरह कुछ नहीं, उनका तो कभी फ्रैक्चर वगैरह भी नहीं हुआ है।
1: ठीक है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जब आमतौर पे अगर 45 एज हम क्रॉस करते हैं, तो हमारे घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याएं शुरू हो जाती। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, इनको बहुत ज्यादा देर पालथी मार के बैठने से बोलिएगा, आप मना कीजिएगा। उकड़ू करके नहीं बैठेंगे, जैसे स्क्वैट करते हैं नीचे की तरफ बैठते हैं, उस तरह से बैठने के लिए मना कीजिएगा। थोड़ा सा जितना भी नी के लिए कुछ व्यायाम वगैरह करने के लिए बोले, जैसे घुटने के लिए ऊपर जंघे के जो क्वाड्स मसल हैं, उनको मजबूत करने के लिए व्यायाम होते हैं, वो व्यायाम वगैरह अगर करें तो उनके घुटने का दर्द जो है कम हो सकता है। कुछ ऑइंटमेंट वगैरह यूज करें, सुबह वॉक करने के लिए बोलें। अगर हो सके तो उन्हें बोलिए कि दिन में 4 से 5 मिनट उल्टा वॉक करें। उल्टा वॉक करने से, रिवर्स वॉकिंग करने से, हमारी घुटने की एंटागोनिस्ट मसल जो है स्ट्रांग होती है, और वो पेन को कम करने में बहुत हेल्प करता है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आरोग्यम में फोन करने के लिए। एक और फोन आ रहा है सर, ले लेते हैं
1: ले
2: फिर
1: लीजिए,
2: आगे
1: ले लीजिए।
2: बातें करें। हेलो,
4: हेलो, मोहम्मद अहमद खैराबाद से।
2: आज जोड़ों के दर्द पर बात हो रही है आरोग्य में, और आप डॉक्टर साहब से बात कर लें।
1: अहमद जी नमस्कार जी, बताएं।
4: जोड़ों का दर्द पर बात हो रही, तो मेरी ये है कि हमारी पत्नी है,
1: जी
4: कमर में दर्द रहता है।
1: जी कमर में दर्द उनके कब से है?
4: यही कोई 1.5 साल से है।
1: कुछ
4: और
1: इंजरी
4: दवा
1: हुआ
4: भी
1: था, कुछ वजन उठा ली थी, कुछ
4: नहीं,
1: कमर
4: ऐसा
1: में
4: कुछ
1: जर्क
4: नहीं,
1: लगा, कुछ झटका लगा?
4: नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दवा कर
1: कमर
4: रहे
1: का
4: कुछ
1: दर्द
4: भी।
1: ये पैर में उतरता है क्या?
4: हाँ पैर भी कभी कभी होता है।
1: तो ये कमर में बेसिकली क्या होता है कि हमारे कमर में जो लंबर स्पाइन है, वहाँ पे जो हड्डियाँ हैं, कमर की 5 हड्डियाँ होती हैं, लंबर वर्टिब्रीज होते हैं, तो वो 5ों हड्डियों में से नीचे की वाले किसी हड्डियों में क्या होगा, डिस्क बल्ज होगा या नर्व कंप्रेशन की वजह से होगा, क्योंकि लंबे समय से पेन आ रहा है, जिसकी वजह से पेन हो रहा होगा, नर्व कंप्रेशन होगा, नस दबी होगी, इसकी वजह से आ रहा है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। और दूसरा, उन्हें कुछ चीज़ें बताना है, जैसे आगे की तरफ वो ना झुकें, भारी वजन ना उठाएं, जमीन पे ज़्यादा पालथी मार कर नहीं बैठें, उकड़ू करके नहीं बैठें। ये सब सावधानियाँ, ये सब प्रिकॉशंस होते हैं, परहेज होते हैं, उन्हें ये सब चीज़ें बताएं करने के लिए। आप कुछ उन्हें व्यायाम करने के लिए बोल सकते हैं, जो उन्हें बहुत हेल्प करेगा। उन्हें फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, फिजियोथेरेपी भी उनको बहुत हेल्प करेगा।
2: मोहम्मद अहमद जी, आपने आरोग्य में फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: हाँ सर, श्रोताओं के फोन आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं श्रोता। एक और फोन आ रहा है सर, ले लेते हैं। प्रणाम,
1: बिल्कुल
2: कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं सर आप?
5: सर मैं पहली बार सर कॉल लगा है।
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में।
5: सर मैं सचिन सिंह यादव बोल रहा हूँ, ग्राम नौका पोस्ता जिला गाजीपुर।
2: दर्द विशेषज्ञ और कायरोप्रैक्टर डॉक्टर सत्यम जायसवाल जी हमारे साथ हैं।

0: और जोड़ों के दर्द पर बात हो रही है, तो आप डॉक्टर साहब से बात करें।
1: जी नमस्कार, बताएं।
2: सर कमर में सर बराबर दर्द रहता है बस।
1: कमर में दर्द रहता है, आपकी उम्र क्या है?
2: सर उम्र 37 साल है।
1: कितने दिनों से दर्द है आपको?
2: सर लगभग सर 1 हफ्ते से सर दर्द है।
1: बस 1 हफ्ते से? इधर बीच कुछ आपने वजन उठाया, कुछ ऐसी एक्टिविटी की
2: नहीं
1: जिसकी
2: सर,
1: वजह
2: नहीं
1: से?
2: सर, सर सर हम नोएडा में सर इक्विटी करके सर काम करते हैं।
1: अच्छा, वहाँ बैठना ज्यादा रहता है क्या?
2: जी जी जी सर, जी सर,
1: हाँ
2: सर बैठना भी है और सर खड़े होकर भी काम करना पड़ता है।
1: हाँ
2: जैसे
1: थोड़ा
2: कि
1: सा आपका
2: ड्यूटी
1: काम
2: है।
1: है ज्यादा देर बैठना, फिर खड़े रहना, मतलब बने रहना एक तरह से पोजीशन में।
2: जी सर
1: तो बेसिकली सतेन जी, क्या है कि ये पेन कमर में अगर आ रहा है, तो बेसिकली कमर में डिस्क बल्ज होने की वजह से या नस दबने की वजह से ये बैक पेन आपका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, या जितने पे है उतने पे रुका हुआ है 1 हफ्ते से?
2: उतने सर रुका है सर, जैसे दवा वो खाते हैं तो थोड़ा आराम मिल जाता है
1: अच्छा, दवा
2: सर।
1: भी खाना पड़ रहा है आपको? ठीक है, ये
2: जी
1: पेन
2: जी
1: क्या कमर का आपका पैरों में भी उतर रहा है?
2: नहीं सर, पैर में नहीं उतरता सर,
1: पैर
2: कमर
1: में
2: में
1: नहीं
2: दर्द होता
1: होता?
2: है सर। जैसे बैठने में सर, जैसे नहाने में, धोने में, कपड़ा खींचने में सर दिक्कत होती है।
1: ठीक है, आगे की तरफ झुकने से बचें, भारी वजन उठाने की चीज से बचें, भारी चीजों को खींचने से बचें, भारी चीजों को आगे पुश करना, धक्का देने से बचें। तो इससे क्या होगा कि आप जब इन सब चीजों से बचेंगे तो क्या होगा, कमर में जो दर्द है वो बार बार इन्फ्लेम्ड नहीं होगा, फ्लेयर अप नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से ये चीजें जल्दी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, परहेज को फॉलो करें और व्यायाम करना शुरू करें।
0: जी धन्यवाद। हाँ सर, हम लोग आज जोड़ों के दर्द पर बात कर रहे हैं। तो ये जोड़ों का दर्द जैसे अब पहले तो बुजुर्गों में होता था, लेकिन अब बहुत कम उम्र से ही लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, तो इसके क्या कारण हैं?
1: बहुत सही चीज़ पूछा है आपने सिखा जी,
0: हाँ
1: कि पहले अक्सर क्या था, आमतौर पे हम देखते थे कि जो दर्द होता था वो बड़े बुजुर्ग में या एक एज होने पर होता था, जैसे लोग 45 या 50 क्रॉस कर रहे हैं तब वो पेन होता था। अभी हमने देखा एक चीज़ कि बहुत कॉमन हो गया है, बहुत कम उम्र के पेशेंट आ रहे हैं, बहुत यंग एज में ही वो पेन होने लग रहा है, चाहे वो घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या उंगलियों के जॉइंट का पेन हो। आज हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ये सिर्फ बुजुर्ग में नहीं बल्कि 25-30 साल के युवा में भी इस प्रॉब्लम से परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो रीज़न है आज की लाइफस्टाइल।
0: जी
1: आप आज की लाइफस्टाइल देखो, सुबह उठते ही लोग मोबाइल चला रहे हैं, ऑफिस में लैपटॉप, ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी फ़ोन चला रहे हैं, शाम को OTT पे टीवी, ये सारी चीज़ें, रात को फिर मोबाइल। तो पूरे दिन हम चल कितना रहे हैं, हमारी जो अभी मोमेंट है वो बहुत कम हो गई है। इसलिए मैं कहता हूं कि मोशन इज लोशन फॉर योर ज्वाइंट, मतलब जितना सही मोमेंट होगा उतना ही ज्वाइंट हेल्दी रहेंगे। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि सब की जो जॉब है वो लगभग बैठने वाली है, जैसे लोग क्या है सुबह 9 से 5 बैठने की जॉब कर रहे हैं। तो एक अंग्रेजी में कहावत कहते हैं कि सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग, ज्यादा देर जब बैठे रहते हैं तो ये भी हमारे ज्वाइंट्स को, स्पाइंस को, मसल्स को ये डिटोरिएट करता है, ये हार्मफुल हो सकता है हमारे मसल्स के, स्पाइन के लिए भी। तो हमारी जो बॉडी है वो मोमेंट के लिए बनी है, तो बॉडी अगर मोमेंट नहीं करेगा तो बॉडी में कुछ ना कुछ चीजें डैमेज होंगी। और दर्द, दर्द जो है कि एक अलार्म सिस्टम है, अलार्म सिस्टम है, जैसे कहीं पे फायर अलार्म सिस्टम है, कहीं इंस्टॉल है, तो मतलब फायर लगता है तो तुरंत वहां पे फायर अलार्म बजने लगता है। तो बॉडी में भी जो पेन है वो बताता है कि हमारे अंदर किसी अंग में या किसी जॉइंट्स में या किसी लिगामेंट्स में, किसी मसल्स में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो पेन हमें एक अलार्म सिस्टम है, वो हमें अवगत कराता है कि हमारे अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है।
0: सर जानकारी तो आप बहुत अच्छी दे रहे हैं, और भी जानकारी लेंगे लेकिन इस फोन के बाद।
1: जरूर।
0: हेलो।
3: हेलो आरोग्यम,
0: हाँ आरोग्यम में आपने फोन किया है, कौन बोल रहे हैं सर और कहाँ से?
3: हम गुलाब चंद्र मिश्रा, ग्राम पचोखर, पोस्ट राम दयालगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं जी।
0: अच्छा गुलाब चंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आरोग्यम में, और डॉक्टर सत्यम जायसवाल जी हमारे बीच में हैं, आप बात करें डॉक्टर साहब से।
1: जी गुलाब जी नमस्कार जी, बताएं क्या कह रहे हैं आप।
3: नमस्कार डॉक्टर साहब,
1: नमस्ते।
3: हमारा जो जोड़ है, जो पैर का मतलब चलने वाला, ठेगुनी वाला
1: घुटना
3: घुटना,
1: जी,
3: मतलब चलते समय बहुत दर्द करता है।
1: आपकी उम्र कितना होगी गुलाब जी?
3: लगभग 55-60।
1: जी, क्या करना है कि जोड़ के लिए व्यायाम करते रहना है, चलते फिरते रहना है। ठंड में क्या होता है, लोग एक जगह पे रहते हैं, ज्यादा चलना फिरना कम हो जाता है, तो ये सब चीजें भी होती है। और ठंड की वजह से जोड़ों के बीच की जो फ्लूइड वगैरह होती है वो सब थिकर हो जाती है, तो ये सब चीजें, और मसल्स में स्टिफनेस, ये सब चीजें भी होती है, मांसपेशियों में जकड़न होती है, जिसकी वजह से पेन बढ़ जाता है। गुलाब जी, इसके लिए आप घुटने के लिए कुछ व्यायाम सीखिए, घुटने के जो मजबूत करने के व्यायाम होते हैं, जैसे पैर को

0: ऊपर उठाना, लेटे लेटे आगे पैर को ऊपर उठाना, फिर टॉवेल लगा के आइसोमेट्रिक की एक्सरसाइजेज होती हैं, नी की एक्सरसाइजेज हो गई, उसको नीचे की तरफ दबाना, कुछ ऐसे व्यायाम होते हैं, उन्हें कीजिए, आपका ये घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। सर अभी बहुत सारे श्रोताओं ने बात की घुटनों के दर्द की, तो सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में दर्द बढ़ जाता है, तो क्या ये सही है?
0: खड़े होकर पानी पीने से घुटने में दर्द तो नहीं बढ़ता, बट ये एक सही तरीका नहीं है पानी पीने का। पानी
1: जी
0: अक्सर हमें एक आरामदायक पोजीशन में बैठ के, अच्छे से बैठ के तब पानी पीना चाहिए। और हमेशा एक चीज़ और कि पानी हमेशा ग्लास से पीना चाहिए, कभी जैसे बोतल को ऊपर करके नहीं पीना चाहिए। तो एक आरामदायक तरीके से बैठ के होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सही तरीके से बैठ के नहीं कर पियेंगे पानी, तो वो चीज़ें हमारे शरीर को सही से लगेगी नहीं, कितना भी पानी पिए।
1: मतलब इसका दर्द से कोई संबंध नहीं
0: नहीं,
1: है।
0: दर्द से पानी का संबंध है,
1: जी
0: कम पानी पीना दर्द को अक्सर बढ़ा देता है, जिसे
1: अच्छा
0: कहते हैं डिहाइड्रेशन।
1: जी
0: डिहाइड्रेशन से मांसपेशियों की जकड़न बढ़ जाती है, उसके पीछे का रीजन है जॉइंट्स में जो वाटर कंटेंट होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं,
1: जी
0: मसल्स में लगभग 70 से ज़्यादा प्रतिशत जो होता है पानी का ही होता है। तो जो हमारे डिस्क होते हैं, दो हड्डियों के बीच की जो IVD है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, उसमें भी लगभग 75% से ज़्यादा जो कंटेंट होते हैं वो पानी के होते हैं। तो अगर पानी कम होगा तो ये कम होंगे, ये कम होंगे तो हमारी जो डिस्क डिजनरेट होगा, मसल्स डिहाइड्रेट होंगे, तो हमारा पेन क्या करेगा, फ्लेयर अप करेगा, और हमें सुबह सो के उठ के जकड़न मिलेगा, हमारी यूरिक एसिड बढ़ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी अगर पानी हम कम पियेंगे। पानी को सही तरीके से पीना है।
1: जी, ये एक नई जानकारी थी और बहुत अच्छी। सर आप एक कायरोप्रैक्टर हैं, और हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे कि ये कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा क्या होती है?
0: कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें हम बेसिकली मस्कुलोस्केलेटल पे वर्क करते हैं, बेसिकली स्पाइन पे वर्क करते हैं। इन पे इनमें क्या करते हैं, जैसे नर्व कंप्रेशन है या कोई चीज़ें हैं, तो उनको हम अलाइन करते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, उनकी हम मोबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, नर्व कंप्रेशन को दूर करते हैं, ताकि पेशेंट को पेन में आराम मिल सके।
1: जी, सर एक फोन आ रहा है।
0: जी
1: हेलो,
2: हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, हम जवानिया रेलवे स्टेशन से रमेश कुमार पासवान बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब
1: अच्छा, रमेश कुमार पासवान जी, आरोग्य में आपने फोन किया है, आप डॉक्टर साहब से बात करें।
0: बताएं।
2: हाँ डॉक्टर साहब, ये हम कर रहे हैं कि हमारे दादाजी हैं,
0: जी
2: उनका घुटने में हमेशा दर्द रहता है।
0: अच्छा, कितने समय से
2: हाँ
0: है दादाजी को दर्द?
2: ये 15-20 दिन से है, नीचे सूजन टाइप का हो गया है डॉक्टर साहब।
0: घुटने में? अच्छा, घुटने में सूजन है, तो
2: जी
0: ये
2: नहीं,
0: उन,
2: घुटने में नहीं, ये पैर नीचे तारों पे। जी
0: अच्छा नीचे सूजन कितने
2: जी
0: दिनों से है?
2: 15 दिन से है डॉक्टर साहब।
0: तो इसके
2: जी
0: पहले कोई इंजरी हुई, उनका पैर मुड़ गया हो, कुछ चोट लग गई हो, कहीं खिंचाव हो गया, कुछ ऐसा कुछ?
2: नहीं, ऐसा तो नहीं है, एक दो बार गिर चुके हैं।
0: इधर हाल फिलहाल में तो नहीं गिरे हैं अभी, जल्द कुछ दिनों
2: नहीं
0: पहले?
2: नहीं
0: नहीं, अगर अभी पहले नहीं गिरे ठीक है। और दूसरी चीज, अगर पैरों में सूजन हो रहा तो इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है, लीवर की टेस्ट, LFT, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट कराना जरूरी है, उसे भी करा लें आप। और दूसरा, घुटने में जो दर्द हो रहा है, तो घुटने के दर्द के लिए उनको घुटने के व्यायाम करने के लिए बोलिए, घुटने में नेचुरल आयुर्वेदिक पेन ऑयल वगैरह घुटने पे लगा लें, ये चीज़ें कर लें। और आसपास के कोई अगर फिजियोथेरेपी केंद्र हो, वहाँ पे व्यायाम सीख के उस व्यायाम को करने के लिए बोलिए।
2: अच्छा
1: बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी।
2: जी नमस्ते।
1: हाँ सर, हम लोग कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा की बात कर रहे हैं, तो जानना चाहेंगे कि किन लोगों को इस उपचार से बचना चाहिए और किन लोगों के लिए ये जरूरी है?
0: जैसे बचना उन लोगों को चाहिए जैसे जिनको फ्रैक्चर है, जिनकी जो बॉवल ब्लैडर मूवमेंट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, जिनके
1: जी
0: जैसे यूरिन लीकेज की समस्या हो रही, ऐसी कोई भी चीज़ें अगर हो रही किसी को स्पाइन की वजह से, ऐसे लोगों को बचना है। जिनका पैर में पैरालिसिस हो रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही है, तो ऐसे केसेस में हमें कायरोप्रैक्टिक पद्धति को नहीं चुनना है। बाकी जिनको इसकी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जो 97% केसेस में स्पाइन के सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है,
1: जी
0: ये बिना सर्जरी के ठीक हो जाती है, क्योंकि
1: जी
0: ये लाइफस्टाइल की गड़बड़ी की वजह से, मैकेनिकल बैक पेन होते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से बैक पेन होते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही चुनना चाहिए, अच्छा फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, इन सब चीज़ों से हमें बिल्कुल मदद मिल सकती है। जैसे स्लिप डिस्क है, डिस्क हर्निएशन हो गया, नर्व कंप्रेशन है, शाटिका है, ऐसे केसेस में हमें देखना चाहिए, जैसे सर्वाइकल के पेन हो रहे हैं। इन सब चीजों में हमें इससे मदद मिल सकती है।
1: जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे।

0: बातें करते हुए और एक फोन और आ रहा है, ले लेते हैं सर। हेलो,
1: आकाशवाणी
0: हाँ आकाशवाणी से आरोग्य में आपने फोन किया है, कौन बोल रहे हैं सर?
1: से? मैं आनंद मोहन शर्मा बोल रहा हूँ, चेतगंज से।
0: अच्छा, आनंद मोहन शर्मा जी चेतगंज से बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब से बात करिए।
2: आनंद जी नमस्कार।
1: नमस्ते सर।
2: नमस्ते
1: सर,
2: आनंद।
1: हमको सर्वाइकल की दिक्कत है पूरी, मतलब गर्दन पूरी जाम रहती है। मैं 5 साल से इसको झेल रहा हूँ।
2: 5 साल से गर्दन की दिक्कत है और जकड़न है। तो गर्दन
1: जी
2: क्या
1: सर,
2: पूरी तरह से मूव कर रहा है, जैसे साइड में गर्दन को रोटेट करने में
1: मूव
2: प्रॉपर रोटेट हो रहा?
1: मूव मूव मूव हो जा रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन बस ये है कि पूरी जैसे जकड़ी हुई है, मूव तो कर ले रहा है। हाँ
2: जकड़ी हुई है। आपकी उम्र कितनी होगी आनंद जी?
1: 36,
2: 36 है। और ये समस्या कितने दिनों से है?
1: 4 साल से, मतलब 4 साल तो है, लेकिन वो धीरे धीरे धीरे वो 2 साल में ज्यादा बढ़ गया है।
2: 2 साल से इधर जो है ये क्रोनिक होता जा रहा है। ठीक है, ये पेन,
1: जी
2: अगर गर्दन का दर्द इतने समय से है, पहले तो आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना है।
1: जी सर,
2: इसकी इसका सही डायग्नोसिस कराना है आपको कि क्यों हुआ है, क्या है इसका। एक प्रॉपर एक एक्सरे या एक्सरे एमआरआई अगर कुछ भी हो, आप
1: एमआरआई
2: इसके,
1: एमआरआई सर 4 साल पहले का है, उसके बाद नहीं कराया हमने, उसके बाद
2: ठीक
1: दवाई
2: है
1: चला रहे हैं न्यूरो की।
2: ठीक है ठीक है ठीक है, आप जो कर रहे हैं करते रहिए। उसके साथ साथ एक चीज क्या करना है कि आप इसके लिए सही, सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है, डिस्क में डिस्क बल्ज है, वहां पे नर्व कंप्रेशन है, क्या गर्दन का दर्द आपके हाथ में भी उतरता है?
1: हाँ सर, दो उंगली सुन्न होती है हमारी,
2: अच्छा, दो उंगली सुन्न होती है, किधर से,
1: लास्ट
2: छोटे
1: उंगली
2: उंगली
1: छोटी
2: की
1: है सर,
2: तरफ या अंगूठे की तरफ से?
1: नहीं छोटी हुई बगल वाली दोनों।
2: छोटे वाली उंगली की तरफ से। ठीक है, ये अल्नर नर्व के रूट है ये। ठीक है, तो इसमें इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें नर्व कंप्रेशन क्यों हो रही है, इसकी सही तरीके से इसकी अलाइनमेंट और इसका एक सही व्यायाम चुनना है जिसकी वजह से करना है। गर्दन झुका के ज्यादा कोई काम है क्या आपका? स्क्रीन टाइम ज्यादा
1: कंप्यूटर,
2: है?
1: हाँ सर कंप्यूटर काम करता हूँ मैं,
2: बस बस यही रीजन है,
1: अकाउंट
2: यही
1: टाइप।
2: रीजन है जी। कोशिश करें कि आप स्क्रीन टाइम इसको रिड्यूस करें, कम करें, स्क्रीन को अपने आई लेवल के सामने रखें, आंखों के सामने रख के अगर चीजों को यूज करें, और इसका इलाज थोड़ा सा करना आपको जरूरी है, और इसको बहुत जल्द से जल्द इसको दिखाएं।
1: ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर। आराम करना कितना जरूरी है और व्यायाम करना कितना जरूरी है, इसका बैलेंस कैसे बनाएंगे अगर जोड़ों के दर्द में समस्या है?
2: हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, आराम करना भी जरूरी है, बट एक चीज का ध्यान रखिए कि आराम बहुत ज्यादा आप आराम करोगे या ऐसे करोगे तो जॉइंट के जो पेन होते हैं वो बढ़ेंगे।
0: जी
2: एक कहते हैं कि रेस्ट इज रस्ट, ज्यादा देर अगर हम आराम करने करेंगे तो जो हमें जॉइंट की जो सारी प्रॉब्लम है वो फिर से उसमें स्टिफनेस बढ़ेगी, ये सारी चीजें होगी। हमें व्यायाम करना है, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें सही व्यायाम का चुनना है।
0: जी
2: अगर हम सही व्यायाम कर रहे हैं तो वो हमें बेनिफिट ही पहुंचाएगा। गलत व्यायाम हमारे पेन को बढ़ा सकता है, बट सही व्यायाम हमारे पेन को कम कर सकता है। तो रेस्ट एक ऑप्शन नहीं है, हमें प्रॉपर मोशन में रहना है, मोबिलिटी करनी है, एक्सरसाइजेस करनी है और व्यायाम करने हैं, बट हाँ, सही व्यायाम चुनना बहुत जरूरी है और एक सही प्रोफेशनल के मार्गदर्शन से सारे व्यायाम को करने हैं।
0: जी, एक विशेषज्ञ से सलाह ले करके और वो सही व्यायाम का चुनाव करें।
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी सर, एक फोन और आ रहा है।
2: जी।
0: हेलो,
1: हाँ हेलो,
0: हाँ जी कौन बोल रही?
1: हेलो, गया से बोल रहा हूँ आपसे।
0: अच्छा आशा जी, आरोग्य में आपने फोन किया है, बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी
0: डॉक्टर सत्यम जायसवाल जी हमारे बीच में हैं और जोड़ों के दर्द पर आज बात हो रही है, तो आपकी जो समस्या है डॉक्टर साहब से बात कर लें।
2: हेलो। हाँ
1: हाँ,
2: नमस्ते।
1: पैर में दोनों घुटनों में दर्द होता है, जैसे बैठते हैं छीन पे, उठते हैं तभी दर्द होता है घुटना में,
2: जी, आप,
1: और उठने में दर्द होता है,
2: जी,
1: और
2: आपकी एज कितनी है?
1: दाहिने हाथ की जो अंगूठा है उसके नीचे हड्डी निकल गया है, वो दर्द करता है।
2: अच्छा। और हाँ, उंगलियों में किसी में दर्द रहता है?
1: नहीं उंगली में नहीं, केवल दाहिने हाथ के जो अंगूठा वाला नीचे वाला जो हड्डी होता है ना,
2: जी
1: हथेली पे,
2: जी जी जी
1: वही वही दर्द
2: वहां पे
1: करता
2: दर्द
1: है।
2: रहता
1: मेरे
2: है। आशा जी, आपकी उम्र कितनी होगी?
1: 72 है सर।
2: 72।
1: जी
2: अच्छा, तो आशा जी, ये जो घुटने की दर्द आप बता रहे हो, ये बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी एज बढ़ती है, अगर आप सही तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सही रखें और नियमित सुबह व्यायाम करें, सुबह वॉक करें, कुछ व्यायाम ऐसे करें जो घुटने के लिए स्पेसिफिक हो, जैसे क्वाड्स मसल की, थाई के, जंघे की मसल्स के मजबूती के लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, अगर ये सब चीजें आप करें। और क्या करना है, अगर घुटने में सूजन है तो गर्म सिकाई ना करके, आइस पैक होता है जी, आइस पैक को टॉवल में
1: अच्छा
2: लपेट के फिर ठंडा हल्का सिकाई देना है, जिससे सूजन कम हो
1: अच्छा
2: जाएगा, और उसके बाद कोई अगर ऑयल या ऑइनमेंट वगैरह हो तो उसे यूज कर लें और एक सही व्यायाम करें, आपका इससे ठीक हो जाएगा।
1: ठीक है। और जो हाथ वाला सर,
2: जो हाथ
1: उसके
2: के
1: लिए
2: पास में जो हड्डी बढ़ रही है उसको अगर हड्डी ज्यादा बढ़ रही है तो उसको आप पास

0: किसी ऑर्थोपेडिक को जरूर दिखाएं, क्योंकि अगर ज्यादा हड्डी बढ़ रही, क्यों बढ़ रही, उसको देख के उसका रीजन समझना बहुत जरूरी है।
1: धन्यवाद आशा जी।
0: जॉइंट पेन के या जोड़ों के दर्द के जो सबसे मुख्य कारण होते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होते हैं। जैसे इसके कुछ कारण मैं बता देता हूँ, जैसे वेट बढ़ने की वजह से, जैसे अगर बहुत अचानक से किसी ने वेट गेन कर लिया, तो घुटनों पे अचानक से जो एक प्रेशर था वो कहीं ना कहीं बाद में बढ़ जाएगा जब वेट बढ़ जाएगा, तो वेट बढ़ने की वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि जैसे एक श्रोता ने पूछा कि विटामिन्स के बारे में, तो विटामिन्स की डिफिशियंसीज की वजह से हो सकते हैं, जैसे विटामिन डी कम है, मैग्नीशियम कम है, कैल्शियम कम है, K2-7 कम है, तो इनकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। जैसे B12 की कमी की वजह से न्यूरोपैथिक पेन होता है, पेन हाथों में उतरेगा, नंबनेस होना, झंझनाहट होना, वीकनेस होना, ये सब सारी चीज़ें हो सकती है।
1: और ये जो ठंडी और गर्म सिकाई की बात है सर, कब ठंडी सिकाई करनी चाहिए कब गर्म?
0: जब शरीर में जकड़न है, शरीर में जकड़न हो रही है और कुछ ऐसा लग रहा है कि शरीर में एकदम जकड़न है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे हमें गर्म सिकाई देना है। जकड़न है, दर्द है, बट जब कोई चोट फ्रेश चोट है, जैसे रिसेंट कोई इंजरी हुई है, कोई एक्यूट इंजरी है, एंकल स्प्रेन हो गया, एंकल मुड़ गया, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, ठंडक सिकाई करनी है। दूसरी चीज़, जहाँ पे इन्फ्लामेशन है, जहाँ पे इन्फ्लामेशन है मतलब जहाँ पे स्वेलिंग है, ऐसे जगह पे गर्म सिकाई नहीं करेंगे, वहाँ पे ठंडी सिकाई करेंगे, क्योंकि जहाँ स्वेलिंग है वहाँ गर्म सिकाई उस स्वेलिंग को बढ़ा सकता है, उसके इन्फ्लामेशन को बढ़ा सकता है।
1: सर एक फोन और आ रहा है। हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: आरोग्यम से बोल रहे हैं।
1: हाँ, आरोग्यम से बोल रहे हैं सर, आप अपना नाम और पता बताएं।
2: मैं शिव शंकर ठाकुर बोल रहा हूँ, गाजीपुर से, उत्तर प्रदेश।
1: अच्छा, शिव शंकर ठाकुर
2: हाँ,
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है
2: पहली बार फोन किया, मैं तो बहुत देर से फोन कर रहा था, लग
1: जी
2: नहीं रहा था।
1: जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जोड़ों के दर्द पर बात हो रही है, तो डॉक्टर सत्यम जायसवाल जी हमारे बीच में हैं, आप डॉक्टर साहब से बात कर लें।
2: सर साहब नमस्कार।
0: जी नमस्कार, नमस्कार, बताएं।
2: साहब हम तो आर्मी से रिटायर हैं साहब,
0: अच्छा,
2: कमर में भी दर्द है और घुटना में भी दर्द है।
0: आपकी एज कितनी होगी अभी?
2: 60 वर्ष है सर।
0: 60 वर्ष के हैं, तो आप अभी सुबह व्यायाम वगैरह करते हैं, सुबह वॉक करने जाते हैं, सुबह
2: हाँ
0: टहलते हैं कि नहीं?
2: हाँ सुबह वॉक करने जाता हूँ सर, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं चल नहीं पाता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ मैं।
0: अच्छा, ज़्यादा दूर नहीं चल पाते हैं, थोड़ी देर फिर आपको बैठना पड़ता है, फिर थोड़ी दूर चलते हैं, इस तरह से चलते हैं।
2: हाँ हाँ सर, तो ये जो पैर
0: इसके
2: में
0: पीछे,
2: दर्द आ जाता है सर।
0: इसके पीछे का जो कारण है वो आपके कमर में दबी हुई नस है, कमर में नस दब रही है, जिसकी वजह से आपको क्या है कि वहाँ पे स्टेनोसिस है। स्टेनोसिस मतलब कि वहाँ पे सकरापन आ गया, जहाँ से स्पाइनल कैनाल है वहाँ पे सकरापन आ गया है, नस जो है वहाँ पे दब रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ी दूर जैसे सीधे एकदम खड़े होकर चलते हैं थोड़ी दूर, फिर दर्द आ जाता है, फिर आपको बैठना पड़ता है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, चलना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। और कुछ कमर के लिए सबसे पहले आपको सही डायग्नोसिस करानी है कि कमर में आपको दिक्कत क्या है, उस दिक्कत को देख के उसका इलाज कराना है, उसके इलाज के हिसाब से जो कंडीशन है, जो डायग्नोसिस आएगी उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेना है। अभी कमर में आप आगे की तरफ झुकेंगे नहीं, भारी वजन नहीं उठाएंगे, पालथी मार के नहीं बैठेंगे, उकड़ू करके ज़्यादा नहीं बैठेंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, भारी चीज़ को धक्का नहीं देंगे, खींचना नहीं है, तो इनसे क्या करके आप कमर को और ज़्यादा बिगड़ने से बचा सकते हैं। एक सही फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लीजिए, क्या व्यायाम करने से, क्या चीज़ों को बचाव करने से इसको ठीक किया जा सकता है, उस चीज़ से बात कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारी बातें हुई जोड़ों के दर्द पर। चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश है?
0: सभी श्रोताओं को बस ये कहना है कि हमारा शरीर जो है वो बहुत ही बहुमूल्य है,
1: जी
0: तो हमें क्या करना है, अपनी शरीर का पूरा ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि हमारे जॉइंट्स ठीक रहें, हमें बॉडी में किसी भी तरह का पेन ना आए। इसके लिए हमें क्या करना है, डेली नियमित एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है, इसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है, हमें सिडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं जीनी है। सुबह उठ के डेली व्यायाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, हमें क्या करना है, घंटों लगातार बैठने से बचना है, फ़ोन की टाइमिंग हो गई, स्क्रीन टाइमिंग हो गई, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करें, उनके बीच में गैप लें, फ़ोन वगैरह यूज़ करने के लिए फ़ोन को गर्दन बहुत ज़्यादा आगे की तरफ झुका के ना रखें, सामने रख के करें, स्लीपिंग पोस्चर सही रखना है, हमें क्या करना है, पिलो वगैरह बहुत ज़्यादा लगा के नहीं रखने, जिससे गर्दन के दर्द आमतौर पर देखते हैं बढ़ जाते हैं, ऐसी चीज़ों का हमें ध्यान देना है कि जिससे हमारी चीज़ें गड़बड़ ना हो और हमारी रूटीन सही रहे। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपको कोई पेन आ रहा है तो उसके लिए जल्दी ही डॉक्टर

0: से मिलना चाहिए, क्योंकि पेन को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि पेन हमारा लाइफस्टाइल का कोई हिस्सा नहीं है। एक ये अलार्म सिस्टम है, ये हमें बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है हमारे बॉडी में।
1: जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातें करते हुए, और इसी तरह से जानकारी से भी आपके श्रोताओं को बहुत लाभ हुआ होगा। डॉक्टर सत्यम जायसवाल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण अच्छी अच्छी जानकारियां दें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, याद रखिए, दर्द को अपनी नियति न बनने दीजिए, शरीर के संकेतों को समझिए और सही समय पर सही विशेषज्ञ की सलाह लीजिए। साथ ही जीवन शैली को व्यवस्थित करके सकारात्मक सोच को अपनाइए। स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और मुस्कुराते रहिए। इसी सोच के साथ कि
0: दर्द
1: दर्द हरेगा
0: हारेगा हम
1: हम
0: जीतेंगे।
1: जीतेंगे, इसी के साथ शिखा श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए आरोग्यम और आकाशवाणी वाराणसी।

अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। कार्यक्रम में आज का विषय था जोड़ों का दर्द, समस्या और समाधान। डॉक्टर सत्यम जायसवाल से बातचीत कर रही थी शिखा श्रीवास्तव। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, प्रस्तुति अरुण पांडेय की।

0: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
1: एक्सक्यूज मी,
2: हाँ बोलना।
3: क्यूट है ना?
0: और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
4: सलाम।
0: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
5: हेलो फोन इन फरमाइश। सर मैं अलीगढ़ से। सर मैं अलीगढ़ से विजय कुमार बोल रहा हूँ।
0: विनय कुमार जी?
5: विजय
0: कुमार जी, बिल्कुल। आप हमारे नियमित श्रोता हैं। थोड़ी सी लाइनों में खराबी के कारण कई बार विजय विनय भी सुनाई देता है।
5: मुझे एक गाना सुना है
0: जी।
5: फिल्म का नाम है प्रेम प्रतिज्ञा। और गाने के बोले टूटा तो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या।
0: हाँ, ऐसा तो नहीं कि जैसे कि वो क्या कहते हैं, चाय उबलने वाली है क्या।
5: शीशे की उम्र प्यार की आंखें पिशाच क्या।
0: हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। अच्छा, जैसे गीत के बोल हैं वैसा ही कुछ अंदाज भी है आपका। आज कहीं जाना है लगता है जल्दी में?
5: नहीं सर, मैं आकाशवाणी वाराणसी के सभी प्रोग्राम सुनता हूँ।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है। और कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको?
5: आपके प्रोग्राम सब गीत आपके नाम से भी अच्छा आता है। और सर अलीगढ़ के ताले बहुत मशहूर है।
0: ये तो जैसे हमारी एक बार आपसे बात हुई है कि अलीगढ़ के ताले बहुत मशहूर है।
5: इससे पहले सर आपसे मेरी बात 18 फरवरी 2026 को हुई थी।
0: वाह, उसीलिए हमें अलीगढ़ से आप याद रहते हैं हमेशा। तो अब हम आपको गीत सुनवा दें। फिल्म है प्रेम प्रतिज्ञा। नमस्कार, शुक्रिया। गीत सुनते हैं। बप्पी लहरी का संगीत, इंदिवर के बोल, किशोर कुमार की आवाज। नमस्कार।
5: ठीक है सर।

0: हेलो सर जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
0: सर मैं ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ।
1: भगवान सिंह जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और सीहोर में भी बारिश हो रही है लगता है?
0: जी नहीं सर, अभी बारिश एक हफ्ते से नहीं हो रही सर।
1: तो दो चार दिन का गैप कभी कभी इस मौसम में हो जाता है। और हमारे यहाँ तो जैसे बारिश कभी कभी दो चार दिन के अंतराल पे बारिश बनारस में तो हो जा रही है।
0: जी जी सर, आप बहुत लकी हैं, आपके यहाँ बारिश अच्छी हो रही है। हमारे इधर 8 दिन का गैप हो गया सर, और हमको हमारी फसलों को सर बहुत ज्यादा जरूरत थी पानी की।
1: हाँ हाँ हाँ, ये तो है कि इस समय जब बुआई और ये जो सीजन है ये बारिश पर ही आधारित कृषि होती है, इस समय जुलाई अगस्त वाली जो होती है।
0: जी जी सर।
1: तो इसके साथ साथ कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं आप?
0: जी हाँ सर, आपका कार्यक्रम हम हमेशा सुनते हैं सर, और आपकी आवाज़ तो हमें बहुत अच्छी लगती है सर। पिछले हफ्ते आपने बताया था कि हम मुंबई में विविध भारती में रह चुके हैं सर, तो मुझे बड़ा खुशी हुई, मुझे आपकी आवाज मुझे इसी प्रकार लग रही है। मैं सर पहले भी सुनता हूँ, तो
1: जी
0: मैं
1: जी
0: आप जरूर, आपने मुंबई जरूर काम किया।
1: शुरुआत ही हमने यूनुस ने ममता ने एक साथ वहीं से किया था।
0: जी जी
1: फिर
0: सर,
1: हम
0: यूनुस
1: इधर
0: खान
1: आ
0: जी तो
1: गए।
0: अपने मध्य प्रदेश के ही हैं सर,
1: जी बिल्कुल,
0: और
1: मैं
0: उन
1: जानता हूँ,
0: जी
1: जबलपुर के यूनुस हैं। हाँ,
0: हाँ जी सर।
1: और कमल जी भी रायपुर के ही थे वहाँ उस समय।
0: तो उस दिन मैंने सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई सर, आपने मुंबई काम किया। मेरी ममता सिंह जी, सभी जितने भी आर जे सर, सभी से बात हो चुकी है मुंबई भी।
1: जी जी जी रेडियो के जो श्रोता हैं, खासतौर से फोन इन जब विविध भारती में पुनः एक अंतराल के बाद शुरू हुआ तो एक नई खुशी की लहर तो दौड़ ही गई और मनचाहे गीत भी शुरू हो गया। ये अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारी जो आकाशवाणी विविध भारती की परंपराएं हैं वो वही उसका वो फ्लैगशिप रहा विविध भारती, जहां से तमाम प्रोग्राम इस तरह के शुरू हुए और बाकी फिर केंद्रों ने उसका अनुकरण किया।
0: जी सर जी, मुझे मनचाहे गीत तो बेहद पसंद था सर पहले, और मैं हमेशा कभी भी मिस नहीं करता सर, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक आता था मनचाहे गीत।
1: एक समय जब चर्च गेट में विविध भारती का कार्यालय था तो जहां चिट्ठियां रखी जाती थी, बड़ा ऊंचा सा कमरा था, लकड़ियों के रैक थे और हर खाने में हजारों लाखों की तादाद में पोस्ट कार्ड वो हम लोग छांटते थे और शेड्यूल करते थे।
0: जी हाँ सर।
1: तो अब तो खैर एक समय बदल गया, बहुत सारी चीजें कंप्यूटर पर आधारित हो गई। पहले मैग्नेटिक टेप थे और CTR, टर्न टेबल, ये सब चीजें होती थी जिनसे प्रसारण हुआ करता था।
0: जी सर जी, और अब तो बहुत आसान हो गया सर, मोबाइल ऐप पर इतना स्पष्ट प्रसारण आता है, और कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। मतलब वो खेत पे जाएं या घर में रहें या बाहर कहीं जाएं, तो आपका कार्यक्रम हम बिल्कुल आसानी से सुन सकते हैं सर।
1: हाँ, और इससे ये हुआ कि जैसे कि दूर दराज के भी श्रोता, पहले श्रोता अपने ही निकट के केंद्र को सुन पाते थे अगर वो शॉर्टवेव पर नहीं है तो, और अब ये फायदा हुआ कि हर जगह के श्रोता, वो देश ही नहीं दुनिया के भी कोने कोने में अगर आप चाहें तो हमारे प्रोग्राम सुन सकते हैं।
0: जी हाँ सर।
1: कौन सा गीत आज सुनवा दें आपको?
0: सर फिल्म का नाम है छोटे सरकार, और इसमें एक गीत है, एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे, ये वाला भी सुनना है सर।
1: ठीक है, ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत
0: धन्यवाद सर।
1: शुक्रिया, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: जी नमस्कार।
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका, और आवाज तो बता रही है, आपका परिचय भी दे रही है, लेकिन आपका जो श्रोता है, फैन फॉलोइंग है ना, वो आपकी ही आवाज में आपका तारुफ पसंद करते हैं।
1: जी वैसे बहुत जल्दी मैं आई थी तो इतनी जल्दी लोग भूल नहीं जाएंगे, फिर भी बता देती हूँ। उदिता विश्वकर्मा बात कर रही हूँ, देवरिया यूपी से।
0: हाँ, लेकिन दो तीन हफ्ते तो हो ही गए हमें लग रहा है।
1: हाँ आई थिंक हो गए।
0: आजकल आप आई थिंक भी हो गई हैं।
1: हाँ क्या जी, क्या कहा आपने?
0: कुछ चीजें जैसे हम तमाम प्रोग्राम में कहते हैं कि आज कही हुई बात 2-3 हफ्ते बाद समझ में आती है।
1: हाँ ये तो है। बारिश बारिश हुई क्या आपके तरफ?
0: हाँ बारिश हुई है, बारिश का इंतजार है।
1: बारिश का इंतजार है।
0: घटा छा गई है, बहार आ गई है।
1: हाँ गाने अच्छे हैं, मेरी इधर भी बारिश
0: अच्छा,
1: हुई थी
0: उस बार
1: बट
0: आपने कहा था
1: आज नहीं
0: गाने
1: हो रही।
0: फिर से अच्छे वाले आने वाले हैं, हालांकि उस दिन भी गाना कुछ ठीक ही ठाक था, अब हम क्या कहें।
1: कुछ क्या अच्छा था, काफी अच्छा था। कुछ ठीक ठाक नहीं था, बस ठीक ठाक बढ़िया था। और हालचाल आपके? खैरियत सब बढ़िया।
0: अब हम लोग अपनी खैरियत क्या करें, लाउड स्पीकर लगा करके पहले

0: बाजारों में खैरियत बोली जाती थी।
1: हाँ
0: बाद अब बामुलाहिजा होशियार, उदिता आ रही हैं देवरिया से।
1: नहीं पिक्चरों में देखा है हमने।
0: अच्छा ऐसा। अच्छा एक
1: हाँ,
0: वक्त ऐसा भी आ
1: रियल लाइफ में
0: सकता है
1: नहीं
0: जब
1: देखा है।
0: पिक्चरों में लोग उदिता को देखेंगे।
1: नहीं पिक्चरों में कहाँ से हमको देखेंगे, लेकिन आजकल तो इंस्टा वगैरह पे सब पिक्चर ही बना रहे हैं, और क्या कर
0: तो
1: रहे
0: आप भी
1: हैं।
0: बना रही हैं?
1: नहीं मैं नहीं बनाती वहां, मतलब
0: हाँ
1: इंस्टा पे हो फोटो वगैरह।

0: हूँ। हाँ मतलब इंस्टा पे हूँ, फोटो वगैरह डाल देती हूँ,
1: अच्छा।
0: बट इतना
1: अब
0: ज्यादा एक्टिव
1: ये
0: नहीं
1: सुनने के
0: रहती।
1: बाद तो हमारे बहुत सारे श्रोता ढूंढने में लग जाएंगे।
0: हाँ ये तो है, नहीं ढूंढ सकते हैं, आरजी उदिता के नाम से मिल जाऊंगी।
1: अरे वाह। अब बहुत से लोगों के शौक पूरे हो गए हम लोग के देखते देखते, और हम लोग जहां थे वहीं रह गए।
0: लेकिन मुझे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया नहीं पसंद है, खासतौर पे इंस्टा वगैरह पे खुद का पोस्ट करना, वीडियो वगैरह उतना नहीं पसंद है मुझे, रेडियो ही पसंद है मुझे।
1: रेडियो ही पसंद है।
0: हाँ
1: हालांकि आपके भी जो प्रोग्राम होते हैं वो इंटरनेट के ही जरिए लोगों तक पहुंचते हैं।
0: हाँ बाकी ये जो मेकअप का चीज है या फिर कह ले कि
1: हाँ,
0: सिलाई का है,
1: इसके
0: तो
1: लिए देखिए बिजनेस
0: उससे हमें
1: पर्पस
0: थोड़ा
1: से वो
0: सा
1: थोड़ा सा
0: मदद
1: ठीक है।
0: मिलता
1: हाँ, क्योंकि
0: है।
1: वहाँ जो लोग प्रोडक्ट वगैरह को या सर्विसेज को ढूंढते हैं उसके लिए सोशल मीडिया अच्छा है कि लोगों को वहाँ पर बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं और प्रचार प्रसार भी हो
0: अच्छा तो
1: जाता
0: है,
1: है।
0: लेकिन कभी कभी हमने किसी टेक्निक को फॉलो किया और हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तो हमारा घाटा भी हो जाता है। तो खुद का माइंड लगाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी चीज को अगर हम ट्राई कर रहे हैं तो।
1: अच्छा, वक्त, हालात, जज्बात ने उदिता को संजीदा बना दिया।
0: हाँ वो तो है। हाँ जी क्या करेंगे, जिंदगी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है।
1: ये जो इसी को हिंदी साहित्य में निःश्वास कहा गया
0: हाँ इतनी तो मेरी हिंदी भी मजबूत नहीं है
1: है।
0: जितनी आपकी है।
1: हाँ, तो जो श्वास, मतलब कि हाँ क्या करें, जिंदगी है वाली बात।
0: हताश भरी जिंदगी।
1: नहीं, हताशा अलग है, और थोड़ा सा जैसे मेहनत, परिश्रम, उम्मीद, हर फील्ड में आदमी उम्मीद तो करता है, लेकिन उम्मीद के अनुपात में सफलता कभी ज्यादा मिल जाती है, थोड़ी सी
0: उम्मीद
1: कभी कम
0: ही तो
1: मिलती है,
0: सबसे ज्यादा दुख
1: दुख
0: देता है
1: देती है।
0: इंसान अब पता नहीं जानबूझकर कोई उम्मीद करता भी नहीं है। हम तो सच बताएं तो कोई भी इंसान किसी से अपेक्षा तभी करता है जब सामने वाला एफर्ट दिखाता है, तब
1: अच्छा।
0: यूं ही कोई उम्मीद नहीं करता। नहीं तो दुनिया में तमाम लोग हैं, हम सबसे क्यों नहीं उम्मीद करते हैं, हम किसी एक दो लोगों से क्यों उम्मीद करते हैं,
1: हाँ,
0: क्योंकि उन्होंने
1: ये
0: कुछ तो
1: किसके लिए
0: किया है
1: आप कह
0: हमारे
1: रही
0: लिए।
1: हैं? मतलब ये बात किसको कहाँ तक पहुंचाना चाह रहे हैं? आपकी बहुत सी बातें रहती हैं जो कहीं तक जाती हैं।
0: किसी को पहुंचाना नहीं चाहती हूँ, बट लोगों को बताना चाहती हूँ जिनकी उम्मीदें टूट जाती हैं, निराश हो जाते हैं कि हमारी तो इच्छाएं पूरी ही नहीं हुई। तो
1: लेकिन
0: इच्छाएं तो
1: आपने तो
0: रखी।
1: बीटीसी भी कर लिया, एक समय बच्चों को भी पढ़ा लिया, मेकअप का भी काम कर लिया, आरजे वाला भी काम कर लिया। सोचिए कि एक छोटी सी जिंदगी में उदिता को तो बिल्कुल बहुत सारी सफलताएं मिल गई एक साथ,
0: छोटी सी जिंदगी में सफलताएं भी मिली
1: और
0: और
1: अभी
0: दुख
1: बड़ी सी
0: दर्द
1: जिंदगी बाकी
0: गम
1: है, तो बड़े ऊंचे ऊंचे मकाम हासिल करने हैं।
0: बहुत कुछ झेला मैंने इस छोटी सी जिंदगी में, और अच्छी बात है कि झेलना
1: ये
0: भी
1: देखिए,
0: चाहिए,
1: बिना
0: कुछ सबक
1: संघर्ष
0: मिलता
1: के
0: है
1: तो कुछ भी
0: इंसान को।
1: हासिल नहीं होता। जब तक हम परिश्रम नहीं करते और चार संघर्ष के रास्ते हमें नहीं मिलते, उसी से सबक मिलता है सबको।
0: सही बात है,
1: तो अब बताएं क्या सुनाएंगी आप हमें?
0: सुनाएंगे और सुनेंगे भी और
1: क्योंकि तब से तो
0: सुनेंगे।
1: आप सुना ही रही हैं सबको।
0: हाँ एक गाना है, आज भोजपुरी गाना सुनाऊंगी
1: जी।
0: और गाने की फरमाइश रहेगी, अनोखा अंदाज फिल्म का गीत है, आपसे पहले ना आपके बाद ना कोई आया ना आएगा। हाँ
1: ठीक है। अनोखा
0: और
1: अंदाज।
0: अनोखा अंदाज। हाँ और इसमें दो गाने हैं, मैं बहुत देर से कंफ्यूज थी मैं किस गाने को सुनूं, एक ये और दूसरा ये था कि महफिल में सितारों की रात भर, तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो सुना दीजिएगा।
1: अब बता दें आप कौन सा भोजपुरी गीत हमें सुनाने जा रही थी?
0: ये बड़ा ही वायरल है इस टाइम का गाना, तो मैं उसको सुनाती हूँ।
1: जी।
0: तनी देखल करी हमरा के काम जी, न तो हो जाई प्यारे मलाम जी,

0: अच्छा, आपका गीत भी बड़ा अलग तरह का है और ये भी है, बड़ा मैसेजिंग वाले आपके बातें हैं और गाने हैं। ये है कि उदिता देखते देखते बड़ी हो गई है।
1: नहीं बड़ी तो कब का हो गई।
0: और एक समय
1: हाँ
0: उदिता छत पर चली जाती थी कि छत पे जा रहे हैं तो आवाज अच्छी आएगी, खिड़की खोल दें तो आवाज अच्छी आएगी। अब
1: हाँ
0: आप कहाँ से
1: खिड़की
0: बातें
1: खोल के
0: करती
1: बात
0: हैं।
1: कर रही हूँ। हाँ ताकि आवाज ठीक ठाक आए। बारिश का मौसम है, फोन खराब हो जाएगा बारिश अगर टपक गया तो
0: अच्छा, आपके यहाँ
1: इसलिए मैंने
0: बारिश हो रही है लग रहा है।
1: नहीं अभी तो नहीं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, बदली है ना तो कभी भी टपक सकता है।
0: हाँ, तो इससे पहले कि टपके, हम गीत इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं
1: नहीं
0: उदिता, आपकी
1: हाँ
0: पसंद पर
1: जी
0: फिल्म है अनोखा
1: अच्छा लगा बात
0: अंदाज।
1: करके।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: नमस्ते भैया जी।
0: नमस्कार, स्वागत है। थोड़ी सी लाइनों में खराबी के कारण हमारे श्रोताओं को भी बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है लगता है।
1: जी जी जी जी, काफी लंबे अंतराल के बाद, प्रयास के बाद मुझे सफलता प्राप्त हुई भैया जी।
0: जी, और आपकी जब आवाज आती है तो रेडियो के प्रति जो इतना लंबा तजुर्बा है, मोहब्बत है आपकी, वो इस कार्यक्रम में शामिल हो जाती है। बहुत शुक्रिया। हमें लग रहा है कि एक बड़े अंतराल के बाद आपसे बात हो रही है।
1: जी, मैं आपका शुभचिंतक बाहुबली फुरसुले छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ अरुण जी।
0: और बहुत पुराने आप श्रोता हैं हमारे, और आपकी आवाज बहुत ही अलग है, और रेडियो से जो लगाव है वो झलकता है आपका सम्मान इस विधा के प्रति।
1: जी जी जी, ये तो आपका प्रेम है।
0: और आप जैसे जो इतने पुराने नियमित हमारे श्रोता हैं, हम लोग बहुत उनका एहतराम करते हैं।
1: जी जी जी, और मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है कि तीन बार बेल जाने के उपरांत भी मुझे आपसे प्रतिसाद नहीं मिला। मगर मैं कोशिश करते रहा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है।
0: बिल्कुल,
1: इसका अनुभव मुझे
0: ये जैसे थोड़ा सा इन दिनों ये हो रहा है ना कि जैसे कई बार हम लोग फोन उठाते हैं तो आवाज नहीं आती है, तो ये भी होता है कि थोड़ी सी लाइनों में गड़बड़ी पहले के मुकाबले ज्यादा हो रही है।
1: जी जी, ये इंटरनेट का तरफ है।
0: तो आज कौन सा गीत आपको सुनवा दें? कार्यक्रम हमारे कैसे लगते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: अरे, कार्यक्रम तो एक से बढ़कर एक है भाई साहब आपके। आकाशवाणी ने 90 साल पूरे किए हैं
0: जी,
1: और बड़ी सफलता से श्रोताओं का मनोरंजन के साथ ज्ञान, कला, संगीत और वार्तालाप और दुनिया की खबरों से हमें परिचित किया है
0: जी।
1: ये आकाशवाणी का हमारे ऊपर बहुत ही मेहरबानी है
0: जी। आप जैसे श्रोताओं का साथ है जो हमारा सफलतापूर्वक ये सफर सफलतापूर्वक चल रहा है, और हमें खुशी होती है कि आपके साथ साथ आकाशवाणी का भी उसकी जो यात्रा है वो इसी तरह से तय हो रही है। और कौन सा गीत आज सुनवा दें आपको?
1: बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम।
0: हाँ,
1: के दुनिया में
0: पहला कदम, बड़ा खूबसूरत गीत है। एक समय हम लोग बड़ा मकबूल गीत था एक दौर में, और रेडियो पर पुराने गीतों के प्रोग्राम में इस तरह के गाने आते हैं तो वास्तव में एक पूरा माहौल बन जाता है।
1: जी जी, और ये फिल्म मल्हार का है।
0: और यही बारिश का मौसम है, मल्हार बरसात का ही राग है।
1: जी जी,
0: और रोशन का संगीत है जी,
1: और गायक लता और मुकेश जी है। मैं अरुण जी से बात कर रहा हूँ
0: जी। बिल्कुल, मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ, गीतकार इंदिवर हैं इसमें
1: जी। कितने लंबे अंतराल के बाद
0: जी, वही हमने शुरू में कहा कि
1: आपसे जी गुफ्तगू हो रही है।
0: हाँ, हमें भी इंतजार रहता है आप जैसे जो हमारे सीनियर श्रोता हैं उनका। और
1: मैं बहुत मायूस हो चुका था क्योंकि मेरी तीन बार बेल गई।
0: जी जी जी, थोड़ा सा आज वही हो रहा है कि आवाज नहीं आ रही, हम लोग कॉल उठा रहे हैं तो आवाज नहीं आती है।

0: हारना।
1: और वही आपने कहा ना कि हिम्मत नहीं हारने वालों की कभी उम्मीद जो नहीं हारते उनकी हार नहीं होती है। जी, तो अब गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
0: प्रयत्नशील रहना चाहिए, फल की आशा नहीं करना चाहिए।
1: जी जी जी,
0: कृष्ण ने भी कहा है ना, मा फलेषु कर्मा।
1: तो अब गीत आपको सुनवा रहे हैं मल्हार फिल्म से। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम। हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हेलो
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: हम बोला भोलानाथ यादव, गया
0: भोलानाथ यादव
1: जी।
0: हाँ, स्वागत है आपका। तो चंदौली में तो मौसम ठीक ठाक अब है, इधर तो बारिश हो रही है।
1: इधर भी बारिश हो रहा है सर।
0: हाँ हाँ हाँ, और प्रोग्राम में आपको आनंद की बारिश हो रही है कि नहीं? कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा था। हम फौजी रिटायर हैं
0: जी। जी, आपने एक बार बताया भी था हमें।
1: जी
0: हाँ, तो खास तौर से कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं आकाशवाणी वाराणसी के?
1: हमको तो सब प्रोग्राम आकाशवाणी को पसंद आता है साहब, और तब से आप बोलते हैं तो लगता है कि आप भगवान ही बोल रहे हैं।
0: अरे, ये तो आपका बड़प्पन है और आप
1: तो
0: लोगों की
1: आपका
0: मोहब्बत
1: आवाज
0: है।
1: इतना अच्छा आवाज है कि वो बोली सुन के हम मस्त हो जाते हैं साहब।
0: क्या कहने, आप लोगों का स्नेह

0: इसी प्रकार बना रहे। अब बता दें कौन सा गीत आपको सुनवाए इस कार्यक्रम में। जी
1: जिंदगी एक सफर है, सुहाना है, आप कल का हो कितने जाना। और सर हम किसी का नाम लेना चाहते हैं।
0: जी जी बताइए।
1: चोचकपुर मौलिक धाम से राम शकल चौधरी हमारी भांजी है
0: जी,
1: निशा बेटी।
0: अब गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, किशोर कुमार की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत है।
1: नमस्कार साहब।
0: नमस्कार।

0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: जी मैं चंदूपुरा वाराणसी से राहुल कुमार बोल रहा हूँ सर।
0: राहुल जी, कार्यक्रम में स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: अच्छा है सर।
0: और मेला वगैरह घूमने का इरादा बना कि नहीं आपका?
1: जी सर मैं बचपन से घूम रहा हूँ मेला,
0: बचपन से घूम ही रहे हैं अभी तक। हाँ
1: जी सर।
0: तो राहुल करते क्या हैं आप अभी?
1: हम साड़ी बिनते सर।
0: तो साड़ी आपकी घूमती होगी जरूर, वो देश दुनिया में बनारस की साड़ियां जा रही हैं।
1: जी सर। हाँ
0: तो ये है कि फख्र होता होगा यहाँ के बुनकरों को, कारीगरों को, कि सदियों से ये जो बनारसी साड़ी, बनारसी वस्त्रों का उसका जो हुनर है वो दुनिया में आपका चल रहा है। जी, और हमारे प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं और कैसे लग रहे हैं आपको?
1: अच्छे लगते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है।
0: जी, और आज किस गाने की फरमाइश है आपकी?
1: जी सर गाने का बोले धरती मेरी अंबर नीला, धरती मेरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। और इसमें मेला का भी सही पॉइंट है, अच्छा लगेगा।
0: हाँ, इसमें तो मेले का भी जिक्र है और गीत तो है ही।
1: और राजेत्रा में मेला तो बहुत अच्छा लगता है सर।
0: कौन सा?
1: राजेत्रा में मेला बहुत अच्छा लगता है सर।
0: हाँ हाँ हाँ
1: और मैं बचपन से साइकिल से जाता हूँ, छोटे बच्चे को बैठा के जाके हम कौड़ियों अस्पताल में उसको जमा करके फिर आगे चल जाता हूँ।
0: बहुत बढ़िया। अब गीत हम आपको सुनवा दें आपकी फरमाइश पर। ये वाला जो आपने कहा, धरती सुनहरी अंबर नीला, वीर चारा है फिल्म का नाम, और ये गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: अरे सर नमस्कार।
0: नमस्कार, आज तो बिल्कुल आखिरी में फोन लगा। थोड़ा सा आज लाइन में ये भी हो रहा है कि आवाज नहीं आ रही, बहुत बार हम लोग श्रोताओं के फोन उठा रहे हैं।
1: इसी तरह पहचान लीजिए हम कौन बोल रहे हैं सर जी।
0: जी जी, तो राम सकल चौधरी जी हैं चोचकपुर बाजार से।
1: सर चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से मौनीबा धाम से।
0: हाँ, ये जानिए कि पहचान तो हम लोग बहुत सारे श्रोताओं को आवाज से जाते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि श्रोता खुद से अपना नाम पता बोलें, ताकि दूसरे को ये भी न लगे कि किसी खास श्रोता को तवज्जो दी जा रही है।
1: और सर बताइए आप कैसे हैं?
0: हम लोग अच्छे से हैं। अब मौसम पहले गर्मी वगैरह से तो राहत हो गई है, बारिश तो रुक रुक के हो ही जाती है।
1: ठंडा है मौसम, लेकिन फोन तो बहुत लेट लगा, तो बंद कर दे फिर लगाए।
0: हाँ, ये बिल्कुल आज आखिरी ही है आपका, चूंकि बीच में लाइनों में भी थोड़ी गड़बड़ आ रही थी, तो आज थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग हुई है। तो बता दें,
1: बारिश हो रही सर? नहीं, वहाँ बना
0: सुबह में थोड़ी सी हुई है।
1: हाँ। हमारे यहाँ हल्का फुल्का उसी समय 6-7 बजे हुई थी सर।
0: जी जी, उसी समय यहाँ भी बारिश।
1: आपका तो मतलब रेडियो

0: स्वच्छता के स्तर यही पहचान होती है, नियमित कार्यक्रमों से जुड़ा है, लगा रहता है सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अब आपने चूंकि अब आपको व्हाट्सएप वगैरह भी करने आ गया है तो बहुत खुशी की बात है।
0: बस ये कही है किसी से थोड़ा मित्र से या कोई से पूछ ले, ईमेल करने आ जाएगा तो
1: हाँ, फिर आप पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में भी अपनी बातें हमें भेज सकते हैं।
0: तो सोच रहे सर ना, कभी काल जैसे बनारस जाए ना तो वहाँ से हेड ऑफिस में से 1000-2000 पत्र सोचते लेकर आए।
1: लेकिन जैसे अगर आप मेल करने सीख लेंगे तो वो ज्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि वो आ ही जाता है, उसमें कोई ये नहीं है कि डाक की प्रक्रिया है कि कब पहुंचेगा और कब तक आएगा।
0: जी सर, हाँ वो तो है सर, अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है सर।
1: जी जी, उसी में सहूलियत है। सारे श्रोता देखिए दूर दराज से हमारे प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं। आज किस गाने की फरमाइश है राम सकल जी?
0: सर है ना उफ ये मोहब्बत है ना सर, उसका कुमार सानू किया हुआ है, उतरा ना दिल में कोई सर।
1: कुमार सानू की आवाज है, जैसा आपने कहा, रानी मलिक ने गीत के बोल लिखे हैं, निखिल विनय का संगीत है और फिल्म आपने जैसा बताया उफ ये मोहब्बत, गीत आप तक पहुंच रहा है।

श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:10 से 11 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 2221052 यानी 222-1052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। 2221052 नंबर के अलावा आप 2221050 पर भी प्रयास कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम प्रसारित होता है शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे तक। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, प्रस्तुति अरुण पांडे की थी। श्रोता, हम आपको बता दें, दिन में 1:30 बजे आप लोक रंग कार्यक्रम में सीधे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं और शाम 7:31 पर कार्यक्रम सुनिए। पत्र के लिए धन्यवाद। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, माकपा नेता जॉन ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित विपक्ष के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मॉल्दोवा व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिलिया नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में संयुक्त गणराज्य तंजानिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुबनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं ने उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, AI, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारत तंजानिया सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज सुबह बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर गया। इस वजह से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैल गई। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार संजय यादव, पिता का नाम गुलाब यादव, ये लल्लापुरा सिगरा के निवासी हैं और 2 मई 2026 की सुबह 9 से अपने घर से लापता हैं। संजय यादव की आयु है 26 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था पैंट शर्ट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचना दें। वेद प्रकाश श्रीवास्तव, पिता का नाम महेंद्रलाल श्रीवास्तव, ये महामनापुरी कॉलोनी चितईपुर वाराणसी के निवासी हैं और 8 मई 2026 से लापता हैं। रिंकू श्रीवास्तव उर्फ वेद प्रकाश श्रीवास्तव की आयु है 38 वर्ष, कद 5 फीट 7 इंच, शरीर सामान्य, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था नीला और सफ़ेद चेकदार शर्ट और नील रंग की जींस। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचित करें। काव्या यादव, पति का नाम किशन कुमार, ये छोटू सराय मुगल सराय चंदौली की निवासी हैं और दिनांक 5 मई 2026 को दिन में 12 से भगवानपुर चौबेपुर वाराणसी से लापता हैं। काव्या यादव की आयु है 21 वर्ष, कद 5 फीट 1 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था हल्के सुनहरे रंग की साड़ी। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो थानाध्यक्ष थाना चौबेपुर वाराणसी को मोबाइल नंबर 9454404380 यानी 9454404380 पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की।

0: आज रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आप सुनेंगे। रात में 9:30 पर कार्यक्रम होगा संसद के समक्ष मुद्दे। पीपुल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी श्रृंखला में आज पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत सुनवाई जाएगी। कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा रात्रि 8:15 का। रात में 8 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे। इसमें फनकार होंगी बेगम अख्तर, इनकी गाई चंद गजलें सुनवाई जाएंगी। शाम 7:31 पर पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में श्रोताओं के ईमेल के साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर शैलेंद्र रघुवंशी से बातचीत का विषय होगा फल उत्पादन आय का अतिरिक्त स्रोत। इसी कार्यक्रम में लोकगीत के कलाकार होंगे बाबूलाल यादव और उनके साथी। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के आकर्षण हैं आज की बात, यूथ डायरी में आज के शब्द, विश्व घटना चक्र, रोजगार, सूचना और फिल्म संगीत। बालगोपाल कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5 बजे। इसमें हमारी संस्कृति और परंपराएं विषय पर डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय की बातचीत वार्ता सुनवाई जाएगी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले होंगी।
1: आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। आज उत्तर प्रदेश के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को नई रफ्तार और नई सिमत मिली है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर की नई इमारत का इफ्तिताह किया। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर करदा उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर की नई इमारत का इफ्तिताह रियासत के डिजास्टर मैनेजमेंट सिमत को जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर तालमेल और तेज तर रिस्पॉन्स फराहम करेगा। हेडक्वार्टर की नई इमारत को जदीद सहूलियात से आरास्ता एक जदीद तरीन डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के तौर पर तैयार किया गया है। इसमें एक जदीद तरीन स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है जो 24 घंटे सातों दिन काम करता है। इमारत में 200 से जायद अफराद की गुंजाइश के साथ एक जदीद ऑडिटोरियम, क्लासरूम्स, लेक्चर हॉल, एक हॉस्टल और एक लाइब्रेरी है। मजीदे बरां, रियासत के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एक डिजिटल कमांड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम किया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि आफात से बचाव, तैयारी और आगाही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश मुल्क की पहली रियासत है जिसने इंसानी जंगली के तनाजु को आफत के तौर पर दर्जाबंदी करके लोगों को राहत फराहम की है। लोगों को आफात से मुतालिक एहतियाती तदाबीर से आगाह करना भी मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत है। वजीर आला ने कहा,
2: एक लंबे अंतराल के बाद यह भवन बन करके आज तैयार है और अब अपने पूरी क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश को किसी भी आपदा से होने वाली जन धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान देने के लिए भी तैयार है। हम लोग अक्सर आपदा आने के बाद, जन और धन की व्यापक हानि के बाद, तब हम सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। जबकि मेरा मानना है कि आपदा के प्रति हमारी पहले से ही सतर्कता, पहले से ही तैयारी और पहले से ही जागरूकता इस जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक ला सकती है और यह हम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा भी होना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम का हो या परिवारों के बीच में भी आपसी संवाद के माध्यम से भी इन सब बातों को बताए जाने की आवश्यकता है।
1: राम मंदिर ट्रस्ट की तंजीमनों और तब्दीलियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर निर्मोही अखाड़े की दरख्वास्त के दरमियान निर्मोही अखाड़े के महंत और ट्रस्ट के रुक्न दिनेन्द्र दास की तरफ से जवाब सामने आया है। निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेन्द्र दास ने कहा है कि उन्हें दरख्वास्त के बारे में कोई इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की एक अहम मीटिंग 22 जुलाई को होने वाली है जिसमें मंदिर के इंतजाम और इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मजीद बरां, ट्रस्ट के अंदर खाली असामियों को पुर करने पर भी गौर किया जाएगा। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि ट्रस्ट की मीटिंग में मंदिर के काम को आसानी से चलाने से मुतालिक तमाम अहम मामलात को हल किया जाएगा। 23 जुलाई को संतों की मुजव्वजा मीटिंग के बारे में उन्होंने कहा कि वैष्णव फिरके के तमाम संतों, महंतों और अखाड़ों का जो भी इज्तिमाई फैसला होगा वो सबको काबिले कबूल होगा और उसी के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने

0: और वालिदैन को मशवरा दिया है कि वो ऑप्टिकल मार्क सर्टिफिकेशन ओएमआर शीट की तस्दीक के लिए सिर्फ असल ओएमआर शीट जमा करें। जाली या एआई से तैयार करदा ओएमआर शीट जमा कराने के नतीजे में कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लिहाजा तुलबा और वालिदैन से दरख्वास्त की जाती है कि वो तस्दीक के लिए सिर्फ असल ओएमआर शीट जमा करें। इम्तिहानी एजेंसी के मुताबिक हालिया दिनों में तस्दीक के लिए जमा कराई गई कई ओएमआर शीट में फ्रॉड पाया गया, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट का बगौर जायजा लिया जा रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 10वीं दर्जे के दूसरे बोर्ड इम्तिहानात के नतायज का ऐलान कर दिया है। तुलबा अपने नतायज डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत इस साल पहली बार 10वीं जमात के बोर्ड के दो इम्तिहान हुए। मरकजी इम्तिहान 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरा बोर्ड इम्तिहान 15 मई से 21 मई तक मुनक़िद हुआ। बोर्ड के मुताबिक दोनों इम्तिहानात के मुश्तरका नतायज की बुनियाद पर इस साल मजमूई तौर पर 96.78% तुलबा पास। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से श्री अमरनाथ यात्रा को आज से रोक दिया गया है। मौसम के बेहतर होने और रास्तों को महफूज करार देने के बाद यात्रा दोबारा शुरू हो जाएगी। यात्रा 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। रियासत में मॉनसून की बढ़ती हुई सरगर्मियों की वजह से गुज़िश्ता 36 घंटों से कई जिला में वक्फे से दरमियानी से भारी बारिश हो रही है। सुबह से होने वाली बारिश से लखनऊ, सुल्तानपुर, बदायूं, अंबेडकर नगर, अयोध्या, जौनपुर, पीलीभीत और अमरोहा में मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई इलाकों में पानी भी जमा हो गया है। कई जिला में दरिया की सतह भी बढ़ रही है। दरियास्ता महकमा मौसमियात ने रियासत के मशरकी और मगरबी जिला के कुछ इलाकों में तेज बारिश और आसमानी बिजली गिरने की वार्निंग जारी करते हुए अगले 3 दिनों के लिए वार्निंग जारी की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नश्र किया जाएगा।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 हुए हैं। आज इतवार है। इस कार्यक्रम में आइए सुने झलकी मेहमान कैसे कैसे। लेखक हैं विनोद रस्तोगी, प्रस्तुति विपिन शर्मा की।

0: आजकल तुम्हारा मन काम में बिल्कुल नहीं लगता दुलारी। इसी तरह सफाई होती है कमरे की। ये देखो, मेज पर धूल जमी पड़ी है, और ये सोफा कवर, इधर आओ जरा देखो इसकी हालत, इसे भी ठीक से नहीं झाड़ा तुमने।
1: रह गवा होई बीबी जी, अब है ठीक किए देई थे। माफ करे बीबी जी, आज हमारा दिमाग ठीक नहीं है।
0: दिमाग ठीक नहीं तो पागल खाने में भर्ती क्यों नहीं हो जाती, इलाज क्यों नहीं करवाती अपना?
2: अरे सुधा, किसे पागल खाने भेज रही हो?
0: अरे जी, इस दुलारी का सिर फिर गया है, न काम करती है न ठीक से सफाई करती है। देखो कैसे सफाई की है इसने ड्राइंग रूम की।
2: क्या बात है दुलारी, क्या तबीयत ठीक नहीं है?
1: तबीयत तो ठीक है साहब, मगर चित में चिंता घर किए है। कल रात को काम से छुट्टी पाए के जब घर गवा तो देखा एक मेहमान आपन बीबी बच्चन के साथ डेरा जमाए है।
0: तो इसमें चिंता की क्या बात है?
2: अरे भाई, अतिथि तो भगवान के रूप होते हैं।
1: सजुग में हो तो साहब, अभी कल युग में आपन पेट भरे ही मुश्किल है, तो मेहमान की सेवा कौन कैसन करी? पूरे सात जन है, सबकी आपन अलग अलग पर्सन, कोनो को दाल चावल चाहिए तो कोनो को पराठा साग, केहू को गोभी पसंद है तो केहू को मटर, खाना थोप थोप के खिलाए हैं सबको, दुपहरे बरे रोटी दाल बनाए के रखाई हूँ, खाए चे न खाए आपन बला से। हाँ
0: देखो दुलारी, ये तो अच्छी बात नहीं है, चाहो तो आज की छुट्टी ले लो।
1: नहीं बीबी जी, आपो के घर तो मेहमान आए वाले हैं, दसो काम हुई।
2: हाँ, हमारे मामा जी के दोस्त मोहन लाल जी आ रहे हैं बहुत जरूरी काम से, मामा जी का फोन आया था।
1: बीबी जी बताया रहन साहब, मुला जब तक मेहमान रही हम छुट्टी ना ही ले।
0: अपने मेहमानों को भगाने के

0: हमारे मेहमान की सेवा करोगी? वाह दुलारी वाह।
1: अरे बीबी जी, मेहमान मेहमानन में भी फर्क होत है। जो उन लोग घर समझ कर रहतीन उना ही खलतीन, मगर जो 50 नखरे दिखावतीन ना, उनसे तो भगवान ही बचाए। कभी भी जी, आपो के मेहमान कहीं नखरेले तो नहीं है?
0: क्या मालूम दुलारी, पहली बार आ रहे हैं।
2: हम तो उन्हें जानते भी नहीं।
0: लेकिन मामा जी के दोस्त हैं, खातिर तो करनी ही पड़ेगी हमें।
2: और क्या, अगर कुछ कमी रही तो वो मामा जी से जाकर शिकायत करेंगे और
0: मामा जी हमें डांटेंगे।
2: अच्छा सुधा
0: जी,
2: मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
0: अच्छा,
2: अगर अतिथि देवता आ जाए तो पूरा ध्यान रखना।
0: बिल्कुल,
2: शाम को तुमसे भेंट होगी।
3: अच्छा, चलो।
0: दुलारी जल्दी से सफाई का काम निपटा ले, मेहमान न जाने कब आ जाए।
1: आप घबराए नहीं बीबी जी, अब हैं सब काम पूरा करत।

0: जाने कब आ जाए?
1: आप घबराए नहीं बीबी जी, अब है सब काम पूरा करत। तो बहरी हो गई बीबी जी, अब है तक मैं मां नहीं आए।
0: ये भी तो पता नहीं कि ट्रेन से आएंगे या बस से, उनके कारण अभी लंच की भी तैयारी नहीं की, उन्हें न जाने क्या पसंद हो। लगता है वो मेहमान आ गए, उन्हें आदर के साथ अंदर ले आ। जा जल्दी कर।
1: जाई थे बीबी जी।
0: हे भगवान, हमारी लाज रखना, अतिथि देवता असंतुष्ट होकर न जाए।
1: बीबी जी मेहमान आए गए हैं।
0: आइए पधारिए, प्रणाम करती हूँ।
2: जुग जुग जियो बेटा, सदा सौभाग्यवती रहो। जैसी कल्पना की थी वैसा ही पाया तुम्हें। अरे तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, बहू रानी लक्ष्मी।
1: बीबी जी बड़ी देर से आपकी राह देखत रही।
2: ट्रेन विलंब से आई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है बहू रानी।
0: जल्दी से चाय बना ले।
2: हाँ हाँ, मैं चाय का सेवन नहीं करता हूँ, सुबह और रात को दुग्ध पान करता हूँ। अभी तो स्नान ध्यान करूंगा और उसके बाद भोजन।
0: जैसी आपकी इच्छा। हाँ दोपहर में नल तो बंद हो जाता है, मगर टंकी का पानी है।
2: राम राम राम राम, टंकी के अशुद्ध जल से मैं स्नान नहीं कर सकता हूँ। हाँ यदि कुएं का स्वच्छ शुद्ध जल मिल जाए तो।
0: कुआं तो हमारे यहाँ नहीं है।
1: सामने वाले खन्ना जी के यहाँ कुआं है बीबी जी, मैं एक बाल्टी पानी ले आओ।
2: तुम्हारी सेविका बहुत समझदार है बहू रानी। हाँ प्रेम बेटा तो कार्यालय गया होगा ना?
0: जी हाँ, शाम को भेंट होगी। आप भोजन में क्या लेंगे?
2: मैं प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, नितांत सात्विक भोजन करता हूँ। तीन चार प्रकार की सब्जियां, रोटी दाल चावल शुद्ध घी और मखाने की खीर, दही चटनी पापड़ और नींबू का अचार मिल जाए तो स्वर्ग का आनंद।
0: जी बहुत अच्छा।
1: बाथरूम में बाल्टी रख दी।
2: धन्यवाद धन्यवाद। तुम्हारा नाम तो मैंने पूछा ही नहीं।
1: हमारा नाम है दुलारी।
2: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, अत्यंत दुलारा नाम है। अच्छा बहू रानी, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, साबुन का प्रयोग मैं नहीं करता हूँ। हाँ स्नान के बाद सर में लगाने के लिए शुद्ध चमेली का तेल चाहिए।
0: आंवले के तेल से काम नहीं चलेगा?
2: नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आज तेल नहीं लगाऊंगा, अभी तो कई दिन रुकना है ना, लेकिन शाम को जरूर मंगा लेना।
1: कहें तो भाई ले आए।
2: नहीं नहीं, अभी कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत थकान है। स्नान के बाद भोजन और फिर विश्राम। भोजन के पश्चात सोने की आदत है, नींद में बाधा नहीं पड़नी चाहिए बहू रानी। अच्छा मैं चलता हूँ। आए वाह वाह वाह वाह, घर में दूरभाष यंत्र भी है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था। अच्छा मैं स्नान करने जा रहा हूँ, तुम प्रेम को कार्यालय में सूचित कर देना कि मैं आ गया हूँ। और हाँ बहू रानी, शाम के लिए फल और रात के लिए मलाई जरूर मंगवा लेना।
0: जी।
2: मैं मलाई शहद के साथ खाता हूँ।
0: जी। बाबा रे बाबा, बड़े विकट मेहमान हैं। लंच का ऑर्डर सुनकर मुझे तो पसीना आ गया।
1: आप फिकर काहे करती हैं, फटाफट सब तैयार हो जाए।
0: दोपहर का खाना तो निपट गया दुलारी, अब देखो रात के लिए क्या क्या फरमाइश होती है।
1: हमका तो आपके ई मेहमान झक्की मालूम होत है बीबी जी।
0: क्या
1: हर चीज शुद्ध चाहिए इनका। अब देखा ना, छक्कर भोजन किए हैं और पैसन खर्राटे मार के सोए रहे हैं। उनके आराम में बाधा तनको ना पड़े, यही बड़े टीवी भी नहीं देखे मिलत है।
3: सुधा, मामा जी के मित्र नहीं आए?
0: आ गए हैं, भोजन करके शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं।
3: है? ये कैसी भाषा बोल रही हो?
1: आपके मेहमान की भाषा है साहब।
3: ओहो आई सी, मुझे फोन करके बता तो देती सुधा।
0: अरे क्या फोन करके बता देती तुम्हें, कह दिया मैंने कि फोन खराब है। 56 तरह की डिशेस का ऑर्डर सुनाया था, मुझे तो सुन करके ही चक्कर आ गया था।
1: टंकी का पानी उनके लिए शुद्ध ना

0: खन्ना साहब के कुएं से पानी भर लाई है।
1: बाप रे बाप, बड़े विकट जीव हैं। अरे भाई जो भी हो, दो एक दिन की ही तो बात है, निभा लेंगे किसी तरह।
2: दो एक दिन? अजी जनाब, वो कई दिन रुकने के लिए कह रहे थे।
1: अच्छा?
0: हाँ साहब, उन्हें सर में लगाए खातिर चमेली का शुद्ध तेल चाहिए। रात में खाने के साथ मलाई और सोवत समय खूब गाढ़ा दूध, चकाचक।
1: धीरे बोल दुलारे धीरे, अगर सुन लेंगे तो। लेकिन सुधा, मामा जी ने तो फोन पर कहा था कि एक दो दिन ही रुकेंगे।
2: प्रोग्राम बदल गया होगा, देख लेना प्रेम, महीने भर का बजट एक सप्ताह में ही खलास हो जाएगा।
3: अरे बहू रानी, अरे मेरे विश्राम में बाधा न डालो भाई।
2: वो ऑफिस से आ गए हैं।
3: अच्छा अच्छा, मैं अभी आया।
0: मेहमान का स्वागत करे खातिर तैयार हो जावे साहब।
3: तुम कार्यालय से आ गए बेटा, कहो सब कुशल क्षेम तो है ना?
1: जी हाँ जी हाँ, आपका आशीर्वाद है।
3: अरे बहू रानी, प्रेम के लिए जलपान की व्यवस्था करो और मेरे लिए फलों की।
2: जी, अभी लाइए।
3: संध्या समय में फलों का ही सेवन करता हूँ, शुद्ध पौष्टिक भोजन ही मेरे उत्तम स्वास्थ्य का रहस्य है बेटा।
1: जी हाँ जी हाँ।
0: अब हैं सब प्रबंध कर दे थे।
3: बहुरानी
2: जी,
3: कल प्रातः काल मुझसे भेंट करने चार पांच प्रतिष्ठित व्यक्ति आने वाले हैं, उनके स्वागत सत्कार का अति उत्तम प्रबंध होना चाहिए।
2: जी बहुत अच्छा।
3: बात यह है प्रेम बेटा
1: जी,
3: उनके परिवार में मेरी कनिष्ठ कन्या का संबंध होने वाला है।
1: आप कन्या के संबंध की बात करने आए हैं?
3: हाँ हाँ बेटा, घर वर दोनों बहुत अच्छे हैं। अब भाई संबंध तय करके ही लौटूंगा, चाहे एक सप्ताह ही क्यों ना रुकना पड़े मुझे।
1: लेकिन मामा जी ने तो कहा था हाई कोर्ट का काम है।
3: मामा जी? कौन मामा जी?
2: आप इनके मामा जी के मित्र नहीं हैं?
3: तुम लोगों को अवश्य भ्रम हो गया है। प्रेम बेटा, मैं तुम्हारे फूफा जी का मित्र हूँ।
1: जी आप मोहनलाल जी नहीं है?
3: अरे नहीं भाई, मैं तो सोहनलाल हूँ, सोहनलाल।
1: आप बरेली से नहीं आए?
4: बरेली से तो मैं आया हूँ प्रेम बेटा, तुम्हारे मामा जी का मित्र मोहनलाल।
1: तब ये महाशय कौन है?
4: अब ये तो इन्हीं से पूछो बेटा, आजकल ठगों की कमी नहीं है।
3: नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, मैं ठग नहीं हूँ श्रीमान जी, मैं लखनऊ से आया हूँ, लखनऊ से है, प्रेम प्रकाश के फूफा जी का मित्र हूँ।
1: ओ अरे महोदय, मैं प्रेम प्रकाश नहीं प्रेमचंद्र हूँ, प्रेम प्रकाश दूसरी सड़क पर रहते हैं, आप गलत ठिकाने पर आ गए।
3: देखो बेटा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने इसी सड़क पर एक व्यक्ति से प्रेम बाबू का आवाज पूछा, उसने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। मैं भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं तत्काल जा रहा हूँ।
0: फलाहार का सेवन तो करते जाइए।
3: अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो फलाहार का सेवन प्रेम प्रकाश की आवास पर ही जाकर करूंगा। अच्छा, स्वागत सत्कार के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार
3: जी।
2: हम तो सुबह से ही आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, ये सज्जन आए तो हमने समझा आप ही होंगे।
4: चलो कोई बात नहीं बेटा, प्रेम बेटा हाई कोर्ट में एक दिन का काम था हमारा, सो सोचा काम पूरा करके ही तुम्हारे यहाँ चलूं, सुबह लौट जाना है।
1: ये कैसे हो सकता है, आपको कुछ दिन रुकना पड़ेगा।
2: और क्या, जैसे मामा जी वैसे आप। हाँ अब ये बताइए, डिनर में आप क्या लेंगे?
4: अरे बहू, मुझे मेहमान नहीं समझो, अरे मैं तो घर का ही सदस्य हूँ, जो भी बनेगा प्रेम से खा लूंगा।
0: वाह भगवान, ऐसे मेहमान सबको मिले।

आज इतवार है। कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे झलकी, मेहमान कैसे कैसे। इसे लिखा था विनोद रस्तोगी ने।

0: भाग लेने वाले कलाकार युक्तिभद्र दीक्षित, अश्विनी अग्रवाल, ए एन रिजवी, जया पांडे और मृदुला बासु। आज इतवार है, कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
0: 0542227658।

लोक रंग कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और श्रोताओं आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है 7905519981 यानी 7905519981 ये इस कार्यक्रम का व्हाट्सएप नंबर है। कलाकारों के नाम हम आपको बता रहे हैं और उन्हीं कलाकारों से लोकगीत की फरमाइशें आपको भेजनी है। आज इस कार्यक्रम में शामिल कलाकार हैं रविशंकर प्रजापति, मंगला विश्वकर्मा और हंसराज प्रसाद। रविशंकर प्रजापति, मंगला विश्वकर्मा और हंसराज प्रसाद। सबसे पहले कलाकार का नाम लिखें, उसके बाद अपना नाम और जगह का नाम। वक्त रहते यानी शुरुआत में ही संदेश भेज दें ताकि आपके नाम जरूर शामिल हो जाएं। रविशंकर प्रजापति, मंगला विश्वकर्मा और हंसराज प्रसाद, शुक्रिया आपको कि आप प्रोग्राम का इंतजार करते हैं और कलाकारों के नाम बताते ही बहुत सारी आपकी फरमाइशें हमारे स्क्रीन पर उभर जाती हैं। तो हमारा आपका साथ यूं ही बना रहे और अब आपकी ही फरमाइश के इस लोकगीत के साथ प्रोग्राम का आरंभ कर रहे हैं। ये खेमटा है, कलाकार रविशंकर प्रजापति।

ये खेमटा आपने सुना, कलाकार थे रविशंकर प्रजापति, फरमाइशें आप सबने भेजी हैं इस लोकगीत के लिए। वलीदपुर मढ़ामऊ के हमारे श्रोता हैं राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि, अनुराग दीप, भकेलू यादव और मास्टर राम समुझी यादव। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा की फरमाइश अनारकली बाजार जगराव से आई है। मजनू कटीला दिल्ली के श्रोता हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। दिलदानगर गांव पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर के श्रोता हैं जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह। ये फरमाइश छत्तीसगढ़ पलारी से आई है प्रकाश वर्मा, अन्नपूर्णा वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा की। कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन हैं सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता। मुतला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, ओम कुमार सुरलकर की फरमाइश। आप हैं ग्राम पजौनिया, जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। नवागढ़ कटई बेमेतरा छत्तीसगढ़ से फरमाइश नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, मयंक जीत और पुष्पांजलि वर्मा की है। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तुबा आफरीन। आदर्श नगर मलोट पंजाब से फरमाइश राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ और साइना शर्मा की। राज पैलेस मौनाद भंजन के हमारे श्रोता हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके माताजी हैं राज मुनिया, ग्राम नारी पजदेवरा गाजीपुर से। गणुखा लालगंज रोहतास से हैं राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान और आर के सिंह चौहान। मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान, कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, कोमल धीमान, शुभम, प्रियंका और कुंज पर्व। ये फरमाइश फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी की। चकपुटही, असनाव बाजार, भदोही से गिरधारी लाल यादव, नागेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार यादव। गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू और देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से फरमाइश आई है मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौसर, अल्ताफ और नीलोफर फातिमा की। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन टिकेस्ट्रो, रोजी टिकेस्ट्रो, पॉल टिकेस्ट्रो और विलिस टिकेस्ट्रो। पोफाली से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता।

मरिया मध्य प्रदेश से, संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह और विकास सिंह। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और वसीम अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, मेहताब अंसारी, मेराज अंसारी और लल्लू और मल्लू अंसारी। जलालाबाद वेस्ट से ये फरमाइश आई है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता हुजा की। जवाहर नगर दुर्ग से हमें सुन रहे हैं आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। ये फरमाइश पिपरिया से आई है कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता की। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से हैं गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले। हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी की फरमाइश सुदामा नगर रटलाई झालावाड़ राजस्थान से। ये लाचारी हमारे तमाम श्रोताओं की फरमाइश पर मंगला विश्वकर्मा के स्वर में।

0: लाचारी मंगला विश्वकर्मा के स्वर में फरमाइशें आई हैं बहुत सारे हमारे श्रोताओं की। आप हैं पटेल नगर मुगल सराय से सुनील कुमार सिंह। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु और अर्णव आनंद, साथ में सत्यम आनंद। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत और उनके परिवार के बाकी सदस्य। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। जौनपुर से सोनू बिंद। त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी, शिवनाथ जायसवाल और परिवार के सदस्य हैं। गहमर पकड़ीतर हनुमान मंदिर चांदनी चौक गाजीपुर से। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन और मेघा मस्किन की फरमाइश। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, कमल साहनी है चौहल्दा बागपत से। ये संदेश है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक, साथ में माही मलिक का, मजनू का टीला से। ये नाम एक बार दूसरे नंबर से आए हुए हैं और शामिल हुए हैं। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर और राजेश राकेश और साथ में ऋषिता। ग्राम नागर कोहरा राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू और आराध्या साहू। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और अयान बाबू। गोपालापुर जौनपुर से अवधेश तिवारी। अब आपको मैंने कई बार कहा कि ये प्रियंका है या प्रियका है, इसे क्या पढ़ा जाए, तो ये प्री क्या आप लिखते हैं। साथ में शिवांगी तिवारी, जयप्रकाश तिवारी और बाबा यादव राम आसरे तिवारी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां हैं, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा की फरमाइश भी पर लोडसर गांव छत्तीसगढ़ से आई है। विजय कुमार यादव, बिंदु यादव, प्रतीक यादव, रश्मि यादव, अमोघ और वैदेही हमें सुन रहे हैं ग्राम पोस्ट रैदा आजमगढ़ से। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजता खुराना, केशु और रिधान खुराना की फरमाइश। रतिनाथ त्रिपाठी, राखी, आर्या, एंद्री, सारंग, ओमनाथ, शिवांग, अदिति और उनकी माता जी हैं निर्मला त्रिपाठी। आप सभी हैं कोटवा, कपिलधारा, सराय, मोहना, वाराणसी से। आपने लिखा है कुछ नए नाटक आप ही बनवाएं, आप देखिए कब स्थिति बन पाती है कि नए प्रहसन या झलकी हम आपको पिछले प्रोग्राम यानी आज इतवार है में सुनवा पाते हैं। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, रमेश कुमार विश्वकर्मा, पूनम विश्वकर्मा, प्रियांशु, प्रीत, प्रांजल, प्रकृति है मेहंदीगंज, मड़ई, राजा तालाब, वाराणसी से। महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब, आपकी फरमाइश आई है रामगढ़ कैंट से। जी विदुषी, शारदा सिन्हा का लोकगीत तो एक दो हफ्ते पहले ही इस कार्यक्रम में आपने सुना होगा, जब हीरालाल यादव भी थे और बुल्लू भी या रामदेव भी, तो नियमित रूप से ये सभी कलाकार शामिल होते हैं। मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई गायकवाड़। शाहकुटी मुगलसराय से हमें सुन रहे हैं वर्षा जायसवाल, शिवानी जायसवाल, हनुमानपुर मुगलसराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा और पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद और पिंकी जायसवाल।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं, इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 1805।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ। 0542227658।
5: स्वागत है श्रोताओं आपका कार्यक्रम में, और अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी प्रस्तुति। ये किसानी गीत है हंसराज प्रसाद और साथियों के स्वर में।

यही महाबा दया बमहुआ कोचाई रसवस भरी भरी रसवस भरी

ये किसानी गीत आप तक पहुंच रहा है हंसराज प्रसाद और साथियों की आवाजों में, फरमाइशें आप सबकी आई हैं। मुबारकपुर कटरा से जावेद अख्तर अंसारी, निखत परवीन, नुसरत परवीन, सलीम जावेद और शहीद हसन आजमी। हमारे श्रोता अनिल कुमार गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज दो वाराणसी से। मुरादाबाद दुल्हापुर से हमें सुन रहे हैं मोहम्मद फरमान और सलमान। हरैया बाईपार आजमगढ़ से हैं सत्यम यादव, आयुष, हर्ष, शिव कुमार यादव और उनके मित्र। जमानिया रेलवे स्टेशन से ये संदेश एसपी जायसवाल, डिंपल आशुतोष और अभिनव जायसवाल का। मुजफ्फरपुर बिहार के श्रोता हैं राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना, कल्पना, मुन्नी कुमारी और चांदनी, साथ में नंदिनी कुमारी। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह और सुरभि शाह हैं पद्म टॉकीज नेपा नगर से। छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा। अनूपपुर मध्य प्रदेश के श्रोता हैं जय मंत्री केवट, अंजलि केवट और रुद्राणी केवट। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी और शिवन्या गोस्वामी की फरमाइश उच्च भट्टी बिलासपुर से आई है। हिमांशु अग्रहरी हैं उमरपुर जौनपुर के श्रोता। जमशेदपुर रखालपथ कदमा से कुमारी प्राची ठाकुर, देविका ठाकुर, ये देविका होना चाहिए प्राची, साधना और मोना। अस्तुपुरा मऊ के श्रोता हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी और बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। श्याम सुंदर यादव, अरविंद यादव, टमाटर यादव, राम प्रताप यादव, सारंग छपरा खड्डा खुशीनगर उत्तर प्रदेश से। जी कजरी हम लोग सावन का महीना जब शुरू होता है उसके बाद सुनवाते हैं, ये थोड़ा आकाशवाणी की कुछ परंपराएं हैं। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके माता पिता हैं ग्राम नारी पचदेवरा गाजीपुर से। अंश गुप्ता, रमाशंकर गुप्ता, लकी गुप्ता और शिवम गुप्ता, लेकिन जगह का नाम आपने नहीं लिखा है। सोनू बिंद हैं जौनपुर से। नांदेड़ महाराष्ट्र से हमें सुन रहे नारायण गायकवाड़ और दयानंद गायकवाड़, ये फरमाइश गमहरिया जमशेदपुर से रोहन और आर जायसवाल की आई है। भोलानाथ यादव सुनौली चंदौली से हैं, चोचकपुर बाजार गाजीपुर से राम सकल चौधरी और भास्कर दुबे। जौनपुर गोपालापुर रमईपुर से हैं अवधेश तिवारी, प्रियंका तिवारी ही मान ले हम लोग की ये नाम होता है, शिवांगी तिवारी और जयप्रकाश तिवारी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय की फरमाइश। रुचिरा जौनपुर से हमें सुन रही हैं, शुक्रिया आपका। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, रेखा पार्थ कश्यप हैं बठेना पाटन दुर्ग से। ये फरमाइश श्याम मनोज, पन्नेलाल आशीष और मयंक की है कुशीनगर से। गमहापुर गंगापुर से हैं शंकर प्रसाद, आदर्श कुमार, स्नेहा कुमारी, जागृति, श्वेता कुमारी और रुद्र कुमार। आप हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग डबवाली से। आशीष कुमार महरे और जौनपुर के हमारे श्रोता हैं। आनंद प्रसाद श्रीवास्तव सेक्शन आईएमएस बीएचयू से आप हमसे जुड़ते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। दिलदानगर गांव गाजीपुर के श्रोता हैं जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह और केदार राम। ये प्रोग्राम अगर दिलशाद जी सुन रहे हैं तो उन्हें ये कहें कि आपकी फरमाइश पिछले 2-3 हफ्ते से नहीं आ रही है, लेकिन पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में आप जरूर लिखते हैं कि आपका नाम शामिल नहीं होता, तो आपको बता दें कि आप नंबर चेक करें, थोड़ा सा कन्फर्म हो लें क्योंकि आपकी फरमाइश नहीं आ रही है। तो श्रोताओं ये थे आज इस कार्यक्रम

0: में आपके आए हुए नाम यानी फरमाइश आपकी और अब तक जो भी फरमाइशें आई हैं वो प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं। आज का ये प्रोग्राम अब समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच डीआरएम वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, उसके बाद 2:15 पर दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: Good afternoon, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Government holds all-party meeting ahead of the monsoon session of Parliament. Opposition stages symbolic walkout over invitation to NCPI to the meeting. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju seeks cooperation of all parties for smooth running of Parliament. Flash floods and landslides hit multiple places in Jammu and Kashmir, claiming 7 lives and damage to property. Rescue operations in full swing, centre assures of all possible assistance. President Draupadi Murmu embarks on 3-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. In badminton, PV Sindhu scripts history, becoming first Indian to win Japan Open. Clinches women's singles title, defeating Japanese shuttler Akane Yamaguchi. And football fever peaks worldwide as Argentina and Spain gear up for a showdown in FIFA World Cup final tonight. The all-party meeting convened by the government ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow is underway at the Parliament House Annex. The meeting has been chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju and Leader of the House in the Rajya Sabha JP Nadda, Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan are also present in the meeting. Soon after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from it over the participation of the National Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in state assembly elections and recently several rebel Trimble Congress MPs have joined it. Talking to media, Trimble Congress MP Mahua Moitro said the entire opposition parties, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM, Trimble Congress and Aam Aadmi Party, have walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Deputy Leader of the Opposition, the Rajya Sabha, Pramod Tiwari, described the walkout as a symbolic boycott against the NCPI being invited to the meeting. However, after registering the protest, the opposition members attending the meeting. Speaking ahead of the meeting, Mr. Rijiju urged all political parties to cooperate in ensuring the smooth conduct of the monsoon session. He expressed hope that the members from both the ruling party and the opposition would participate constructively in the legislative business.
2: उनके मांग है तो हम तो अपने और से कोई अलग से किसी को बुला नहीं रहे ना, वो तो लोकसभा के सदस्य है, 20 लोग हैं, उसको तो बुलाना पड़ेगा।
1: News just in, the all-party meeting has concluded and Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju is addressing the media. Let's go in and listen.
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर,
4: इफ एनी पार्टी और मेंबर विशेस टू रेज एन इशू दे आर फ्री टू डू सो इन पार्लियामेंट। आई वुड लाइक टू टेल माय कॉलीग्स इन द ऑपोजिशन दैट पार्लियामेंट हैज फेस्ड डिसरप्शंस इन द पास्ट। सच डिसरप्शंस सर्व नो पर्पस एंड द पीपल डू नॉट अप्रिशिएट देम। दे वांट पार्लियामेंट टू फंक्शन स्मूथली एंड इफेक्टिवली।
2: हम ऑपोजिशन पार्टी सबको बता करके बिल लाएंगे। अभी हम 8 बिल और बाकी महत्वपूर्ण जो सवाल होते हैं या वहाँ स्पेशल मेंशन होते हैं जीरो आवर में होते हैं, वो तो होते ही रहते हैं। हर संसद सत्र में हर मेंबर का अपना बात रखने का अधिकार है, लेकिन सरकार के बिजनेस के बारे में हमने जो सूची जारी किया है उसका अतिरिक्त और भी अगर आएंगे तो मैं बता दूंगा उसके
5: लिए।

0: Again, government holds all-party meeting ahead of the monsoon session of parliament. Opposition stages symbolic walkout of invitation to NCPI to the meeting. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju seeks cooperation of all parties for smooth running of parliament. Flash floods and landslides hit multiple places in Jammu and Kashmir, claiming several lives and damage to property. Rescue operations in full swing. Centre assures of all possible assistance. President Draupadi Murmu embarks on three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania. In badminton, PV Sindhu scripts history, becoming first Indian to win Japan Open, clinches women's singles title, defeating Japanese shuttler Akane Yamaguchi. And football fever peaks worldwide as Argentina and Spain gear up for a showdown in FIFA World Cup final tonight. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
2: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी, देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले।

0: इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद

0: निकालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रही। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01-991-295-681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3

0: दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने 2 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 3रा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर 3रा स्थान हासिल किया।
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में NCPI को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान

0: नुकसान पहुंचा, बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।
2: कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो ठगी को स्टाइल बना गई, धोखे को हंसी में बदल गई और छोटे शहरों की बड़ी उड़ानों की कहानी बन गई। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फिल्म बंटी और बबली की। एक ऐसी फिल्म जिसने बताया कि सपने देखने वाले छोटे शहरों में भी मिलते हैं और जब दो सपने एक साथ भागते हैं तो बवाल मचता है। बंटी और बबली रिलीज हुई थी 27 मई सन 2005 में और इसका निर्देशन किया था शाद अली ने, जो यश चोपड़ा के असिस्टेंट रह चुके थे और साथ ही अजय सी फिल्म पहले ही बना चुके थे। ये फिल्म थी यशराज फिल्म्स के बैनर तले और इसकी कहानी लिखी थी जयदीप साहनी ने। और हाँ, ये वही फिल्म है जिसमें पहली बार अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन एक साथ स्क्रीन पर नजर आए और उनके साथ थी रानी मुखर्जी बबली।
3: चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए बबली।

फिल्म की कहानी की बात करें तो राकेश यानी बंटी जो किरदार अभिषेक बच्चन ने निभाया है, वो उत्तर प्रदेश के फिक्की नगर का एक स्मार्ट लड़का जिसे कॉरपोरेट वर्ल्ड में नाम कमाना है। और वहीं विम्मी यानी बबली यानी रानी मुखर्जी एक छोटे शहर की लड़की जो मॉडल बनना चाहती है। जब इन दोनों के सपनों को दुनिया समझने से इनकार कर देती है तो ये दोनों बन जाते हैं पार्टनर। किसके? ठगी के। जी हाँ, कभी धर्म स्थलों के नाम पर, कभी नकली बिजनेस डील्स के नाम पर, कभी पर्यटन मंत्रालय के अफसर बनकर ये दोनों लोगों को ठगते हैं, मगर चुटीले अंदाज में। और फिर इन दोनों के पीछे लग जाता है एक डैशिंग पुलिस वाला, डीसीपी दास यानी अमिताभ बच्चन।

फिल्म के म्यूजिक ने भी इसे सुपरहिट बना दिया। संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय की जोड़ी ने, गीत लिखे थे गुलजार साहब ने। अब बताइए, जब शंकर एहसान लॉय और गुलजार मिल जाएं तो फिर क्या बात होती है। सफलता की बात करें तो बंटी और बबली उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में रही। फिल्म फेयर अवार्ड 2006 में रानी मुखर्जी को मिला था बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन और अमिताभ बच्चन को मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड। म्यूजिक को भी खूब

सराया गया कजरारी गीत को बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर का खिताब मिला था। आपको पता है श्रोताओं, जब कजरारी गीत की शूटिंग चल रही थी तो ऐश्वर्या राय एक गेस्ट अपीयरेंस के लिए आई थी, लेकिन सेट पर उनके और अभिषेक बच्चन की बातचीत शुरू हुई और वहीं से उनकी असल जिंदगी की लव स्टोरी भी शुरू हुई ऐसा माना जाता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम में एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी बंटी और बबली। कार्यक्रम पेश किया स्तुति मिश्रा ने। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स, DTH, DRM, वेव्स OTT और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में बच्चे अपना कार्यक्रम सुने। बाल गोपाल।

चुन्नू मुन्नू जय हिंद। चुन्नू मुन्नू देखा, आज हमहन याद करत है जा भारत के महान अमर शहीद के, जे की जब आपन देश अंग्रेजन के अधीन रहल, गुलाम रहल, माने जब परतंत्र रहल और अंग्रेजी सेना में आप एक सिपाही रहलें और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी रहें, जेकरे सजग भइले से अंग्रेजी सरकार हिल गई। अरे हाँ बच्चा लोगन, चुन्नू मुन्नू हम बात करे थे शहीद मंगल पांडे जी के बारे में। पूरा देश आज आपके याद करत हो। देखा चुन्नू मुन्नू, आज के दिना है ना, 19 जुलाई 1827 के मंगल पांडे का जन्म भेल रहा है ना, और इनकर जन्म ना अपने प्रदेश माने उहाँ एक गांव है नगवा, वही नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म भयल रहा। और चुन्नू मुन्नू हम बात करत है तो बहुत सा आपन जो चुन्नू मुन्नू हुआ नगवा गांव में भी सुनत हुआ हमहन का कार्यक्रम है ना। तो देखा, देश के प्रति सेवा का भाव इनके मन में कुट कुट के भरल रहा। तब तक चुन्नू मुन्नू मंगल पांडे बस 22 बरिस के उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हो गई ना, है ना, और आपके भर्ती भइले के बाद बंगाल में पैदल सैनिक के रूप में देखा तैनात कैल गेल। और इनकर देखा जौन हमने बात करत है जा देश के प्रति ना, इनकर जौन जज्बा रहा वो उभर के आयल जब अपने देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजल 1857 के क्रांति के रूप में। चुन्नू मुन्नू तू लोगन के बतावत है कि वो समय सेना में देखा नया नया राइफल आयल रहा, जौने में गोली डाले से पहले ओके जौन है ना मुंह से खोले के होए, और सैनिक लोगन में ई बात फैल गई कि बंदूक के खोलत के समय ना जौन कारतूस हो ओमे गाय और सुअर ई दोनों के चर्बी का जौन है प्रयोग कैल गेल हो। तो देखें ई जौन है ना बात हिंदू और मुस्लिम जौन सेना में आपन सैनिक रह भारतीय वो दोनों लोगन के धार्मिक भावना के ठेस पहुँचाओ वाली रह। चुन्नू मुन्नू तो मंगल पांडे जौन है ना सीधे इनकार कह देना कि हम ई बंदूक ना चलाइब, और उनके इनकार कैले पर ना जौन अंग्रेज अधिकारी रहा वो उनके जौन है कि जब फटकार लगे ना तब मंगल पांडे के अच्छा नहीं लगल और ये अपने बंदूक से अंग्रेज जौन सेना अधिकारी रहें उन पर गोली चला देना। अब उनके ये जौन गोली चलौले से अंग्रेज सेना अधिकारी भड़क गई ना, और इनके ऊपर फिर सैनिक अदालत में जौन है कि कार्यवाही चलल और इनके फांसी के सजा सुनावल गई। चुन्नू मुन्नू और दुख का बात ई बाय ना कि 8 अप्रैल 1857 के दिना आपके जौन है कि फांसी पर चढ़ा देवल गयल, और इनके इस घटना जौन इनके साथ सैनिक जौन अंग्रेजी सरकार दुर्व्यवहार कैलस ऐसे बहुत सारे जौन भारतीय सैनिक रहा चुन्नू मुन्नू उनके मन में अपने देश के प्रति आज़ादी के भावना ऐसन जागल कि 1857 में पूरे देश में चारों तरफ विद्रोह हो गया। तो इनके देश के प्रति जौन समर्पण रहा ओके देखते हुए आज के दिना यानी 19 अप्रैल के अपने देश में इनकर जन्म दिवस मनावल जाता। आ तू लोगन के भी स्कूल में मनावल गल, हम तो देखली तू लोग सवेरे गया रला हा। तो हम कहीं ई देश के प्रति जौन देश के प्रेम का भाव हो ई आज भी सबके मन में ऐसे बनल रहे के चाहिए। समय तो बदल गया है चुन्नू मुन्नू, देश के प्रति देश

0: जोन भावना है ना, वो देश के तरक्की के लिए होए के चाहिए, देश के विकास के लिए होए के चाहिए, ताकि अपन देश दिन दुगुना रात चौगुना और पूरे विश्व में जौन ऊंचाई छुअत रह, है ना। और देखा जब जब हम लोग अपने कार्यक्रम में आईला तो यही के साथे साथे कुछ जानकारी से भरल भी चीज लेके आईला जा, उमन हर बेरी जौन है कि कुछ न कुछ अलग अलग होला, है ना जौन मुनो। तो आज देखा अपने कार्यक्रम में जौन है ना जानकारी के बात लेके आल ही कि हमहन का संस्कृति का हो, हमहन का परंपरा का हो, एके अच्छे से फरिया के बतावत हुन डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय। तू लोगन ई जवन वार्ता सुना।
1: प्यारे बच्चों, आज भारतीय संस्कृति और परंपराएं एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आप हमारे देश के भविष्य हैं, इसे जानना बहुत आवश्यक। भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है और परंपराएं क्या हैं? संस्कृति बहुत जरूरी है हमारे व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए। संस्कृति को जानना बहुत जरूरी है। यदि आप इसी उम्र में इसे गहराई से समझ लें, हमारा किसी समाज का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, विश्वास और जीवन मूल्य, इस सब का समग्र रूप को संस्कृति कहते। आप समझ लिए, हम प्रतिदिन के जीवन में जो कुछ करते हैं उसे हमने अपनी पीढ़ियों से सीखा है, अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी को देखते हुए जो कुछ हम सीखते हैं वह सब हमारी संस्कृति है और वही आगे चलकर परंपरा का रूप ले लेती। संस्कृति से, संस्कृति शब्द जो है वो सम उपसर्ग और क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है परिष्कृत, शुद्ध किया हुआ या सुधरा हुआ। यह मनुष्य के आंतरिक और बाह्य जीवन को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाती। आपको ध्यान देना होगा कि यदि हमें अच्छा मनुष्य बनना है तो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो सदियों से हमारी कई पीढ़ियों ने जिसका पालन किया है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे बड़े, जब उनसे बड़ा कोई आता है तो उसका अभिवादन करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। अब ये हमारी संस्कृति है, तो हमें इसे सीखना है कि उसी तरह हमें भी अपने से बड़े का कैसे सम्मान करना है। हमें हमारा रहन सहन किस तरह से, अगर कोई बड़ा हमारे सामने बैठा है तो हमें खड़ा रहते हुए उसका अभिवादन करना है, जब वो कहे बैठने के लिए तब हमें बैठना है। इन बिंदुओं पर हमें बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। आज प्रायः युवाओं पर, बच्चों पर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आधुनिकता की छाप लग जाने से आज के बच्चे हमारी भारतीय संस्कृति से भटक रहे हैं। ऐसा आरोप आप पर न लगे, इसलिए हमें इसे समझना जरूरी है कि हमारी संस्कृति क्या है। हमने पढ़ा होगा बचपन में और कहानियों में, आपने अपने दादा दादी से सुना होगा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। यह कितनी बड़ी बात है, देखने में तो बहुत छोटी लगेगी सुनने में, लेकिन इसका जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि कोई आपके यहां आया या घर पर ही प्रातः काल उठने के बाद यदि हमने जाकर बड़ों के सम्मुख हाथ जोड़कर अभिवादन कर दिया तो आपके प्रति उनके मन में जो भाव पैदा होगा, प्रेम पैदा होगा, और उस प्रेम का सकारात्मक प्रभाव जो आपके जीवन पर पड़ेगा वह आपको लक्ष्य तक जाने में भटकने नहीं देगा। इसी के साथ साथ हमारा रहन सहन कितना सादा है, कितना सहज है, और हमारा भोजन भारतीय परंपरा के अनुसार कितना शुद्ध है, कितना सात्विक है, यह सब हमारे संस्कृति के अंग है। हमारी भाषा, हम कितना मीठी भाषा बोलते हैं, कितना

0: ऐसी भाषा बोलते हैं जो आसानी से कोई समझ ले और हमारी वाणी से किसी को कोई तकलीफ न हो, कोई कष्ट न हो। यह सब हम अपने बुजुर्गों से, अपने बड़े लोगों से सीखते हैं। यह सब संस्कृति का ही रूप है और यही आगे चलकर यह हमारी परंपरा बन जाती है। और जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो हमारी सदियों की पूरे विश्व में ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता, ऐसी परंपरा किसी देश की नहीं है। आप सौभाग्यशाली हो कि भारत में आपने जन्म लिया है, इसके लिए आपको गर्व करना चाहिए। और अपने जो बड़े हैं, जो परिवार के, या जब थोड़ा बड़े होकर हम विद्यालय में गए, वहां गुरुजन मिले, हमारे बड़े भाई मिले बड़ी कक्षाओं के, उनसे भी हमें अपनी संस्कृति को सीखना है कि वो विद्यालय में जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, कैसे वहां गुरुजनों का अभिवादन कर रहे हैं, वहां जाने के बाद कक्षा में बैठकर कैसे शिष्टाचार पूर्वक वार्ता करते हैं। यह सब कुछ हमारी संस्कृति का अंग है। इसके बाद वहां पर हमें होमवर्क मिला, कुछ कार्य मिला, घर आने के बाद कैसे हम अपने जीवन को व्यवस्थित करते हुए गुरु के आदेश का भी पालन करना है, और घर पर आने के बाद घर की भी कुछ आवश्यक आवश्यकताएं हैं जो माता पिता बड़ों के आदेश का पालन करना है, दोनों का समन्वय हम कैसे बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ावें। यह सब हमारी सांस्कृतिक विरासत का ही भाग है। आपको अपने जीवन में संतुलन बनाते हुए इस संस्कृति को जिंदा रखना है। जैसे आपके बड़ों ने आपको दिया, उसी तरह आपको भी बड़ा होकर आने वाली पीढ़ी को आपको भी देना है, ताकि यह हमारी विरासत इसी तरह चलती रहे और समाज में संतुलन बना रहे। जरा सा भी असंतुलन हुआ हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, तो हम भटक जाएंगे, फिर हमारी भारतीयता वहां लुप्त होती हुई दिखाई देगी, तो हम आरोपी बनेंगे। हमें आरोपी बनना नहीं है। प्यारे बच्चों, आपको बहुत सजग रहते हुए, अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाते हुए, अपने को प्रशंसा का पात्र बनना है इस समाज में। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। आप हमारी भारतीय संस्कृति के गौरव बने। आपको देखकर लोग गौरव की अनुभूति करें, माता पिता गौरवान्वित हो आपको देखकर। ऐसा
1: दिखाई जानकारी कितना बढ़िया रहल है, हमहन के संस्कृति और परंपरा का हो। डॉक्टर हरेंद्र कुमार आए, बड़ा बढ़िया से बतैना, तू लोग सुन ले होबा। आपन संस्कृति और एक परंपरा इहो है कि बड़न का कैसे मान मनुहार करे के, तो देखा है गीत में सुना। Yeah.

0: चुन्नू मुन्नू देखा कितना नीक गीत रहा, समय के देखा कमी रहा, इसलिए अगले कार्यक्रम में फिर बढ़िया सा जवान है कि तू लोग के गीत सुनवाई। और देखा घड़ी कहा था कि अब तू लोगों से जवान की विदा लेवे का समय हो गला, तो चला था ही। चुन्नू मुन्नू जय हिंद।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युवाणी।

0: मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती
1: तो
0: है।
1: दोस्तों, नई उम्मीद, नए उत्साह और नई सोच के साथ स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूँ शालिनी।
0: और मैं हूँ जय शालिनी। आप सभी श्रोताओं को हमारा स्नेहिल नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं प्रोग्राम की शुरुआत के साथ ये गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं। सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
2: 0542227658।
4: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ। 0542227658।
6: शालिनी, आज सुबह बैंक का एक मैसेज आया तो अचानक एक बात याद आई। क्या तुम्हें पता है कि आज का दिन भारतीय बैंकिंग इतिहास में क्यों खास माना जाता है?
7: बिल्कुल, आज 19 जुलाई यानी बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस है, जो हर वर्ष 1969 में मनाया जाता है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था।
6: लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
7: क्योंकि उस समय बैंकिंग सुविधाएं मुख्य रूप से बड़े उद्योगों और शहरों तक सीमित थी। किसान, छोटे व्यापारी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक बैंकिंग सेवाएं आसानी से नहीं पहुंच पाती थी।
6: और राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं रहा, बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी सक्रिय भागीदारी निभाना बन गया था।
7: इसलिए तो आज जनधन योजना, डिजिटल बैंकिंग, ATM, इंटरनेट बैंकिंग और UPI जैसी सुविधाएं उसे मजबूत बैंकिंग व्यवस्था और अधिक सशक्त बना रही हैं।
6: लेकिन सुविधा के साथ सावधानी भी उतनी जरूरी है दोस्तों। जैसे कि अपना OTP, ATM पिन या बैंक पासवर्ड कभी भी किसी के साथ साझा न करें और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें।
7: बिल्कुल सही, सुरक्षित बैंकिंग ही समझदारी की पहचान है।
6: शालिनी, आज के विद्यार्थियों की पढ़ाई पहले से काफी अलग दिखाई देती है। इसकी एक बड़ी वजह हमारी नई शिक्षा नीति भी है।
7: सही कहा, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है।
6: यानी पढ़ाई के साथ कौशल, रचनात्मकता, नैतिक मूल्य और व्यवहारिक ज्ञान पर भी समान जोर दिया जा रहा है।
7: हाँ, इसीलिए तो इसी सोच के साथ 5+3+3+4 की नई शिक्षा व्यवस्था लागू की गई है, जिससे बच्चों की शिक्षा उनकी आयु और मानसिक विकास के अनुरूप हो सके।
6: साथ ही शुरुआती कक्षाओं में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने पर विशेष बल दिया गया है, ताकि बच्चे विषयों को बेहतर ढंग से समझ सकें।
7: और सबसे अच्छी बात तो

0: ये है ना कि अब विद्यार्थियों को कला, संगीत, खेल, विज्ञान, कंप्यूटर और व्यावसायिक शिक्षा जैसे विषयों पर अपनी रुचि के अनुसार चुनने की अधिक स्वतंत्रता दी गई है।
1: डिजिटल युग को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लास और तकनीक के उपयोग को भी इस नीति में विशेष महत्व दिया गया है।
0: दोस्तों, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: कोई बात नहीं टीम ए, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही जवाब है अकबर। और आपको बता दें कि इस किले को अकबर ने बनाया था, और इस मजबूत किले का निर्माण बादशाह अकबर ने 1853 में कराया था, और इसी वजह से इसे हम अकबर का किला के नाम से भी जानते हैं। ये संगम स्थल पर यमुना नदी के किनारे स्थित है। अपने समय में इसकी गिनती वास्तुकला, निर्माण और कारीगरी के मामले में सर्वश्रेष्ठ किले के तौर पर होती थी। फिलहाल इसका इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है और इसका एक सीमित हिस्सा ही पर्यटकों के लिए खुला हुआ है।
1: दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न टीम बी से है, जो है कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है।

0: असम।
1: अफसोस टीम बी, ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु के तंजौर में इस कुचिपुड़ी नृत्य को भागवत मेले नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे कर्नाटक संगीत पर प्रदर्शित किया जाता है।
2: अब टीम सी से हमारा प्रश्न है, 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप का मेजबानी कौन सा देश करने वाला है?

0: पेरिस।
1: अफसोस कि आपका ये जवाब गलत है। सही जवाब है भारत। आपको बता दें कि भारत 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबान करेगा, जो 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक आयोजित होगा। इस टूर्नामेंट नॉकआउट प्रारूप में होगा, जिसमें 200 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे।
2: टीम ए से हमारा आज का चौथा सवाल है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है?

0: 10 डिग्री।
1: टी में बहुत सही जवाब है आपका। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। यह लिटिल अंडमान उत्तर में और कार निकोबार दक्षिण के बीच स्थित है। इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है और यह अंडमान सागर व निकोबार सागर को जोड़ता है। टीम बी आप रेडी हो जाइए, ये सवाल आपके लिए है। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है?

0: एमपी के द्वारा।
1: अफसोस टीम भी, आपका ये जवाब गलत है। इसका सही आंसर है संसद। आपको बता दें कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी कि एसटीवी और गुप्त मतदान से होता है। इसमें विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन के रूप में कार्य करता है।
2: हमारा आज का छठा प्रश्न 3C से है। भारत के प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है?

0: बंगाल गैजेट।
1: टीम सी आपका जवाब बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको बता दें कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की समाचार पत्र के संपादक थे, साथ ही इन्होंने भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता की नींव रखी थी। पहली बार इसका संपादन तब के कलकत्ता, जिसे अब हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, यहीं से शुरू हुआ था। इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है अपना पहला राउंड, अब बारी है राउंड टू की। पर उससे पहले आइए जानते हैं कि आज के टाइम में हमारी यूथ अपनी हेल्थ को लेकर कितना अवेयर है और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उनकी हेल्थी लाइफस्टाइल को चैलेंज करती है।
2: तो टीम ए, सबसे पहले आप बताइए कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे है, आपका रूटीन, डेली रूटीन क्या है?
3: अर्ली मॉर्निंग जाग जाना एंड फॉर गुड हेल्थ वर्कआउट करना। मैं जिम जाती हूँ, उसके बाद मैं अच्छी डाइट लेती हूँ और रेस्ट भी प्रॉपरली करती हूँ, संग में अपना सारा पढ़ना पढ़ाना ये सारे काम करते हुए, और अर्ली सो भी जाती हूँ।
4: मेरा नाम विनीता राव। सबसे पहले मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, उसके बाद थोड़ा बहुत वर्कआउट करना चाहिए। डेली रूटीन में जो काम होता है वो तो मॉर्निंग में करना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ना, और जल्दी रात में जल्दी सोना चाहिए, वो फोन वगैरह रात में थोड़ा कम चलाना चाहिए।
1: टीम बी, आप बताइए आपका रूटीन कैसे रहता है, क्या चीजें आप करती हैं अपनी लाइफ में?
5: मैं बेसिकली सुबह जल्दी तो नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन मैं अपने डेली रूटीन में हेल्दी जितना खा सकूँ उतना खाने की कोशिश करती हूँ। बाहर का मैं बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ, और वो तो हम यूथ है तो जल्दी सोने का तो कोई ज्यादा वो नहीं है, हो जाता है लेट।
6: मेरा नाम गौरव श्रीवास्तव है। हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और जो है अपना सारा काम जो है सिस्टम जैसे करना चाहिए वैसे करते हैं। जैसे आजकल के यूथ तो बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं, लेकिन हम जो है मेरा सब काम टाइमली होता है। और उसके अलावा देखिए आज के समय में मोबाइल बहुत कम चलाना चाहिए, ज्यादा जितने भी यूथ हैं तो मोबाइल बहुत ज्यादा चलाते हैं, जिसके वजह से हेल्थ कॉन्शियस लोगों को ज्यादा होता है। तो मेरा यही मानना है कि मोबाइल कम चलाना चाहिए।
1: टीम सी, आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करने के लिए क्या क्या चीजों का फॉलो करते हैं?
7: मेरा नाम उज्ज्वला यादव है। मैं जिंदगी के हर मोमेंट को खुल के जीना चाहती हूँ और हमेशा खुश रहने का प्रयास करती हूँ। और मैं ऐसा नहीं कहती कि सुबह जल्दी ही उठना चाहिए, आप जब भी उठे अपने रूटीन को, जो भी आप गोल सेट करिए उसको पूरा करने का पूरा कोशिश कीजिए। जिस दिन आप हर रोज का गोल अगर पूरा कर लेंगे, आप अपने आप हेल्दी डाइट की तरफ और हेल्दी लाइफ की तरफ अग्रसर होंगे।
8: मेरा नाम है स्मृति तिवारी और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल के यूथ जो हैं पढ़ाई के चक्कर में या अपने लाइफ को सेटल करने के चक्कर में अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, तो मेरा बस ये कहना है कि वो हेल्दी डाइट लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पढ़ाई भी समय से करें, व्यायाम करें। थैंक यू।
1: हमारे टीम मेंबर्स ने बहुत अच्छी बात कही, सबके अपने अपने विचार हैं, और इसमें मैं ये पूछूंगी कि तुम्हारा क्या रूटीन रहता है, तुम अपने लाइफ को कैसे हेल्दी बना के रखती हो?
2: मेरा कोई रूटीन ऐसे एज सच फिक्स नहीं होता है। मुझे जब मौका मिलता है मैं कोशिश करती हूँ रात में जल्दी सोने का और सुबह जल्दी उठने का, बट अगर कभी बाई चांस जल्दी नींद नहीं भी खुली फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरा जो डेली का रूटीन है, जो भी घर के काम है, अपना एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, जो भी चीजें हैं, चाहे लेट से उठूं चाहे जल्दी उठूं, उसे फॉलो करती हूँ।
1: बेसिकली ये होना चाहिए कि आप कभी उठे कभी सोए, बट आप जितना भी टाइम देते हैं आप उसको एक ऑर्गेनाइज वे में रखें ताकि

0: आपको वो नुकसान भी ना करे, आपका काम भी मैनेज हो, आपका ध्यान रखा जाए,
1: गोल को फिक्स करते हुए टाइमली उसे पूरा करते
0: हैं, पूरा करें।
1: इस बातचीत के बाद अब रिज्यूम करते हैं अपना सेकंड राउंड। टीम ए से हमारा सवाल है, अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर किस क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया है?

0: चंद्रशेखर आजाद।
1: बिल्कुल सही जवाब है टीम ए आपका ये। दोस्तों आपको बता दें कि सन 1870 में प्रिंस अल्फ्रेड की शहर यात्रा को चिन्हित करने के लिए इस पार्क का निर्माण किया गया था। तब इसका नाम अल्फ्रेड पार्क था। बाद में इस पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया क्योंकि उन्होंने 1931 में यहाँ पर अपने प्राणों की आहुति दी थी।
2: अब आ रही है टीम बी की, तो हमारा आठवां प्रश्न है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है?

0: भारत का।
1: अफसोस, आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। आपको बता दें कि कबड्डी की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी और ये यहाँ का पारंपरिक खेल है, लेकिन बांग्लादेश ने इसे अपना राष्ट्रीय खेल घोषित किया है। भारत में कबड्डी बहुत लोकप्रिय है और इसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे एशियाई खेलों और प्रो कबड्डी लीग में खेला जाता है।
2: टीम सी से हमारा अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है?

0: कान की हड्डी। अफसोस टीम सी, आपका जवाब सही तो है पर आपने स्पेसिफिक नहीं बताया है कि उस हड्डी का नाम क्या है। तो आपको बता दे दोस्तों कि वो कान की हड्डी है, स्टेपीज। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मध्य कान में पाई जाती है। यह ध्वनि तरंगों को आंतरिक कान तक पहुंचाने में मदद करती है और सुनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: टीम ए से हमारा 10वां प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है?

0: अफसोस, आपका जवाब गलत है। सही जवाब है दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि यह पहले बार बार बाढ़ लाकर भारी नुकसान पहुंचाती थी। ये झारखंड के पलामू जिले से निकलकर पश्चिम बंगाल में बहती है।
1: टीम भी आपसे हमारा आज का अगला सवाल है कि भारत में शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है।

0: गुजरात।
1: अफसोस टीम बी, आपका ये जवाब गलत है। दोस्तों, भारत का शीत मरुस्थल है लद्दाख। भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र अत्यधिक ठंडा, शुष्क और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वर्ष भर शीत मरुस्थली जलवायु अनुभव करता है।
2: टीम सी से हमारे सेकंड राउंड का आखिरी सवाल।

0: भगत सिंह।
1: आपका जवाब बिल्कुल सही है, सही जवाब है भगत सिंह। मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह द्वारा 1930 से 1931 में जेल में लिखा गया एक प्रसिद्ध लेख है। यह लेख वैज्ञानिक सोच, तर्कशीलता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है। भगत सिंह ने इसे अपने नास्तिक होने के कारणों को स्पष्ट करने के लिए लिखा था, जिससे यह आज भी प्रासंगिक बना हुआ है।
0: फर्स्ट और सेकंड राउंड के स्कोर्स को मिलाकर टीम ए ने जुटाए हैं 9 अंक और टीम बी ने प्राप्त किए हैं -4 और टीम सी के पास है 8 अंक।
1: तो अब आगे ध्यान से सवालों का जवाब दीजिएगा साथियों, क्योंकि इस राउंड में बजर से नजर हटी मतलब दुर्घटना घटी। आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दें कि इस स्टेज में पूछे गए सारे सवाल सभी टीम्स के लिए कॉमन है और उन्हें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर मौका दिया जाएगा, यानी कि जिसको भी आंसर आएगा वो बजर दबाएगा।
0: तो हमारे बजर राउंड का पहला सवाल है, सारे लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? टीम सी ने सबसे पहले बजर दबाया है, टीम सी अपना जवाब बताइए।
2: विशाख दत्त।
0: टीम सी आपका जवाब बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको बता दें कि विशाख दत्त गुप्त काल के एक प्रमुख संस्कृत कवि और नाटककार थे। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुवादित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। आपको बता दें कि विशाखा दत्त की दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है जिनके नाम है देवी चंद्रगुप्तम राघवानंद नाटकम।
1: अब हमारा दूसरा सवाल है, बड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा, विश्व के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? टीम ए ने बजर दबाया है, बताइए अपना आंसर।
3: नाम दफा।
1: अफसोस आपका जवाब गलत है, इसका सही जवाब है किबुल लामजाओ। दोस्तों किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह लोकतक झील पर बना हुआ है और इस झील पर तैरते बाघ व झोपड़ियों को फुमेट कहा जाता है।
0: हमारा इस राउंड का अगला सवाल है कि किस पदार्थ को भारत का पहला GI टैग मिला है? हाँ, टीम ए ने सबसे पहले बजर दबाया है, अपना जवाब बताइए।
2: चाय को।
0: और स्पेसिफिक?
2: पश्चिम बंगाल की चाय।
0: टीम ए आपका जवाब सही है और स्पेसिफिकली बात करें तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय, जिसे चाय की शैंपेन भी कहा जाता है, भारत के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में उगाई जाने वाली एक प्रसिद्ध चाय है जो अपने विशिष्ट स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है।
1: इस राउंड का हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? टीम बी ने बजर दबाया है, आंसर बताइए।
3: वेस्ट बंगाल।
1: अफसोस आपका जवाब गलत है, इसका सही जवाब है MP। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी कि CZA ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रीवा ऐतिहासिक रूप से सफेद बाघों का घर रहा है, जहां 1951 में मुहान नामक अंतिम ज्ञात जंगली सफेद बाघ पाया गया था।
0: दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? टीम सी ने सबसे पहले बजर दबाया है, टीम सी अपना जवाब बताइए।
3: बिहार में।
0: टीम सी आपका जवाब बिल्कुल सही है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार करना है। बिहार भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85% से अधिक योगदान देता है, जिससे यह किसानों के लिए फायदेमंद होगा।
1: हमारे आज के क्विज का लास्ट बट नॉट द लिस्ट सवाल है कि हाल ही में आयोजित हुए 97th एकेडमिक अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? टीम बी ने बजर दबाया है, बताइए अपना आंसर।
3: लापता लेडीज।
1: अफसोस आपका जवाब गलत है, का सही जवाब है अनोरा। एकेडमिक अवार्ड जिसे हम ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, हाल ही में इसका 97th संस्करण आयोजित हुआ था, जिसमें अनोरा को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था।

0: और इसी के साथ पूरे हो चुके हैं हमारे सारे सवाल, और अब बारी है जानने की किस टीम ने बाजी मारी है। और इसी के साथ पूरे हो चुके हैं हमारे सारे सवाल, और अब बारी है जानने की कि किस टीम ने बाजी मारी है। 13 अंकों के साथ हमारी आज की रनर अप टीम है टीम ए,
1: और -6 पॉइंट के साथ 30 नंबर पे है टीम बी, और 18 अंकों वाले दमदार स्कोर के साथ हमारे आज की विनर टीम है टीम सी। तो टीम सी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ये बाजी मान ली है, और टीम बी आपसे इतना कहेंगे कि आपने बहुत अच्छी कोशिश की है और तैयारी में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट लाई, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप जरूर इसमें विनर होंगे।
0: हमारी विनिंग टीम और बाकी सभी टीम्स को बहुत बहुत बधाई, और आप सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। टीम बी, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपने अच्छा परफॉर्म किया है, अगली बार और अच्छा करिएगा और कोशिश करिएगा और अच्छे अंकों के साथ ऊपर आने।
1: तो चलिए फिर एक एक करके आप सभी के एक्सपीरियंस भी जान लेते हैं। टीम ए, बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस?
2: बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत डर रही थी मैं शुरू में, लेकिन अब जाके मुझे अच्छा लग रहा है और मजा भी आया मुझे।
1: रनर अप टीम बनकर कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत खुशी हो रही है मेरे पार्टनर के साथ मुझे।
3: बहुत अच्छा लगा, स्टार्टिंग में जब आई थी तो बहुत नर्वस हो रहा था, फील ऐसा लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर बाकी आगे होने पे अच्छा लगने लगा और मुझे अच्छा लगा।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आप लोग बहुत कम्फर्टेबल हुए हमारे साथ। टीम बी,
4: भले ही हार गए नीचे से फर्स्ट आए लेकिन बहुत मजा आया,
1: यही कॉन्फिडेंस चाहिए।
3: मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि कुछ कुछ चीजें थी जिनका आंसर आता था दूसरी टीमों को तो मुझे भी आता था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर मुझे बिल्कुल नहीं आता था। इस पे मैं अगली बार बहुत कोशिश करूंगी और अगली बार फिर से परफॉर्म।
1: बिल्कुल, आप नेक्स्ट टाइम और प्रिपरेशन करके आइएगा, और आपका कोशिश बहुत अच्छा था। टीम सी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस?
5: बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मुझे लगता है कि आकाशवाणी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, ये युवाओं के लिए मतलब अपने ज्ञान को और बढ़ाने का एक बेहतरीन मंच है और जानने का, तो थैंक यू सो मच आकाशवाणी।
3: थैंक यू।
6: इस क्विज में आगे काफी अच्छा लगा, हम लोग नए नए लोगों से मिले, बहुत कुछ सीखने को मिला, और स्टार्टिंग में हमें उम्मीद ही नहीं थी कि हम लोग जीतेंगे, लेकिन आके काफी अच्छा लगा और सबने जवाब दिया, और हमें कुछ चीजें नहीं आ रही थी लेकिन हमें आज पता चला, आज अवेयरनेस हुई कि ये चीजें भी हमारी जागरूकता को बढ़ा रही है। थैंक यू।
0: वी रियली होप साथियों कि आपका हमारे क्विज के प्रति उत्साह यूं ही बना रहे, और आगे चलकर हमारे साथी जो भी हमें घर बैठकर सुन रहे हैं वो भी यहां आएं और ऐसे ही पार्टिसिपेट करें और अपनी कला का प्रदर्शन करें।
1: तो दोस्तों, युवाड़ी क्विज में आज बस इतना ही।

0: तो दोस्तों, अब समय है अपने शब्द भंडार को थोड़ा और समृद्ध बनाने का।
1: तो आज का हमारा हिंदी का शब्द है प्रत्यायोजन, और इसका अर्थ है अपने किसी का

0: सारे अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपना। अगर हम इसको सेंटेंस में बनाएं जो हिंदी में वाक्य कहते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार होगा। कार्यालय के प्रमुख ने अपने कुछ प्रशासनिक अधिकारों और प्रत्ययोजन वरिष्ठ अधिकारी को किया।
1: और अब बारी हमारे आज के अंग्रेजी के शब्द की, जो कि है सब्सटेंशिएट, SUBSTANTIATE, जिसका अर्थ है किसी तथ्य या विचार को प्रमाणों के आधार पर सही सिद्ध करना। एंड इन सेंटेंस वी कैन से इट एज द साइंटिस्ट सब्सटेंटेड हर थ्योरी विथ एक्सपेरिमेंटल डेटा। और दोस्तों आइए जानते हैं क्या कुछ घटित हुआ देश और दुनिया में इस हफ्ते। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने हाल ही में AI आधारित हरित ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ACITI साझेदारी की शुरुआत की है।
0: प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को 2030 तक के रोडमैप के साथ रणनीति साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया और 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किया।
1: वैज्ञानिकों ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कोलोबस बंदर की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम कोलोबस कांगोएंसिस रखा गया है।
0: तो दोस्तों कहते हैं ज्ञान वही है जो सही समय पर सही जवाब बनकर सामने आए। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब वक्त है अपने पसंदीदा सेगमेंट क्वेश्चन ऑफ द डे का।
1: इसमें हमने आपसे कल प्रश्न किया था, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मुख्य रूप से किस शहर से निकाली जाती है? जिसका सही जवाब है पुरी, उड़ीसा।
0: और इसी प्रश्न का सही उत्तर देने वाले हमारे विजेता हैं, जिन्होंने हमें सही जवाब दिया है, उनका नाम है मुकेश कुमार प्रजापति सिग्रा वाराणसी, रवि मौर्या सिमरौल, आजमगढ़ से चंदा चंदौली से, सुधांशु शेखर जलालीपुरा, प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से।
1: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाक से, और साथ ही में है बाबू दिव्यांश। रिंग रोड नर्मदा नगर से हैं सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक, भावना वर्मा, और नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा, बसंती बाई और गणेश शिवदे।
0: खंडवा मध्य प्रदेश से हैं श्यामबाई रायवरकर, इसी के साथ ही दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा पीपलोद छत्तीसगढ़। ग्राम खैरगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वैदिका वंश, निकेश धर्मेंद्र, मेघा नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई।
1: अब दोस्तों आज बारी हमारे आज के प्रश्न की, जो कि है जुलाई 2026 में ICC का 111वां सदस्य देश कौन सा बना है?
0: अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो बिना देर किए हमें अपना उत्तर भेजिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी @youthairvaranasi, या फिर आप हमें ईमेल youthairvns@gmail.com पर भी कर सकते हैं।
1: दोस्तों अब इसी के साथ आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है, तो जाते जाते बस यही कहेंगे कि पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि स्वच्छ हवा और स्वच्छ वातावरण की हम सभी को जरूरत है। समय हो चुका है, तो अब दीजिए हमें इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, समाचारन के साथ हम शिवानी अरोरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नया भवन का लोकार्पण कैले। ई भवन 200 करोड़ रुपए से बेसी के लागत से बनावल गेल हो। मुख्यमंत्री प्राधिकरण का वेबसाइटों का शुभारंभ कैले। यह मौका पर वहां के कहले कि आपदा के घड़ी में सरकार हर नागरिक के साथे खड़ी बा। मुख्यमंत्री आपदा से बचाव बदे जन जागरूकता पर जोर देत कहले।
1: शांति के समय में हम लोगों को स्वयं की ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में जाकर के अगर हम इसके बारे में भी कुछ लोगों को बता सकें, छात्रों को बता सकें, वहां के शिक्षकों को बता सकें, किसी रविवार के दिन जनपद स्तर पर प्रधानाचार्यों के सम्मेलन के माध्यम से भी उनको हम इससे किसी भी आपदा से जुड़े हुए क्या क्या सावधानियां हैं, इन सावधानियों के बारे में अवगत करा सकें, तो मुझे लगता है कि देश की बहुत बड़ी सेवा ये हो सकती है।
0: मुख्यमंत्री वन्य जीव संघर्षों का जिक्र करत कहले कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य हो जवन मावन मानव वन्य जीव द्वंद्व

0: के आपदा के श्रेणी में रखी के रहती देले का कार कैलस।
1: कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जिन्हें आप एक प्रकार से आधी भौतिक आपदा के रूप में ले सकते, यानी किसी जीव के द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने मानव वन्य जीव द्वंद को भी आपदा की श्रेणी में लेकर के उससे लोगों को राहत देने का कार्य किया।
0: प्रदेश का 826 ब्लॉक प्रमुखन के पहली बेरी प्रशासक का जिम्मेदारी सौंपल गयल हो। यह बारे में ब्लॉक प्रमुखन के प्रशासक के तौर पर नियुक्ति का आदेश आजू प्रदेश सरकार का पंचायती राज विभाग की ओरी से जारी कई दिहल गयल। आदेश के मुताबिक क्षेत्र पंचायतन का सामान्य निर्वाचन 2026 के बाद संगठित कयल जाए वाली नया क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक की चाहे 6 महीना जवन पहले हो के ओ समय खातिर इन्हें प्रशासक नियुक्ति कैल गेल हो। प्रशासक के रूप में ब्लॉक प्रमुख कौनो नीतिगत निर्णय नाही ले पहिए। बिहने से शुरू हो रहल संसद का मानसून सत्र के पहले सरकार आजू संसद भवन एजेक्सी में सर्वदलीय बैठकी बोलावलसी। बैठकी का अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहले। बैठकी में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन का नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आ डॉक्टर एल मुरुगन भी मौजूद रहले। बैठकी शुरू भयले के जुड़ते बाद विपक्षी दल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPPI के बैठक में शामिल कैले के लेके विरोध जतावत वॉक आउट कैलसी। NCPI हालिये में गठित एगो नया राजनीतिक दल हो जिसमें तृणमूल कांग्रेस कई को बाकी सांसद शामिल हुए। ये बिच्ची संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आज मीडिया से बतियाबत सज्जो राजनीतिक दलन से अपील कैले की ऊ एह मानसून सत्र के सुचारू कामकाज के सुनिश्चित कैले में योगदान असहयोग करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 10वीं कक्षा का दूसर की बोर्ड परीक्षा का नतीजा घोषित कर दिले हो। छात्र अपन नतीजा डिजिलॉकर करके रिजल्ट पोर्टल पर देख सकेले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह वर्षी पहली बेरी 10वीं कक्षा पदे दुई को बोर्ड परीक्षा आयोजित कैल गई। बोर्ड के मुताबिक दोनों परीक्षा का संयुक्त नतीजा के आधार पर यह बरसी कुली 96.78% छात्र पास भइले। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियन अभिभावकन के ऑप्टिकल अंक प्रमाण पत्र OMR CT का जांच बदे खाली असली CT जमा कैले का सलाह देले हो। फर्जी चाहे AI से बनावल गयल OMR CT दिहले पर कानूनी कार्यवाही हो सकेला। यही नाते विद्यार्थियन अभिभावकन से अपील कैल गयल बा कि ऊ जांच बदे खाली असली OMR CT जमा करे। परीक्षा एजेंसी के मुताबिक हालिये के दिन में जांच बदे भेजल गयल कई गो OMR CT फर्जी पावल गयल रहे। यही नाते अब हर शिकायती हर OMR CT का सावधानी से जांच कैल जा रहल बा। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के नाते श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी जत्रा के अस्थायी रूप से स्थगित कई दिहले हो। मौसम के हालाते में सुधार भयले के बाद फिर से जत्रा शुरू कैल जाए। ओह खराब मौसम के नाते श्री अमरनाथ जी का जत्रो रोके दिहल कैल बा। मौसम अनुकूल भयले रास्ता के सुरक्षित घोषित कैले के बाद जत्रा फिर से शुरू कैल जाए। गोरखपुर के सतही राज्य के कई गो पूर्वी जिलन में बीतल 2 दिन से मध्यम से भारी बरखा का सिलसिला जारी बा। बरखा के नाते शहरी इलाकन में जनजीवन प्रभावित भइल बा। यह बीचे मौसम विभाग अगला 3 दिन बदे प्रदेश के सज्जो पूर्वी जिलन में भारी बरखा अकछु जगह पर आकाशीय बिजली गिरले का चेतावनी जारी कैले हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।

मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात्रि 8 बजे सुनिएगा अखिल

भारतीय रविवासरीय संगीत सभा रात के 9:30 पर सुने संसद के समक्ष मुद्दे। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम के 6:30 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने कृषि जगत। इस कार्यक्रम में फल उत्पादन आय का अतिरिक्त स्रोत, इस विषय पर शैलेंद्र रघुवंशी से बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही आनंद उठाइएगा बाबूलाल यादव और साथियों के गाए हुए लोकगीत का। शाम के 7:31 पर श्रोताओं के पत्रों के साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। कार्यक्रम होगा पत्र के लिए धन्यवाद। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे बेगम अख्तर के गाए गजल।

रात 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। फिल्म संगीत का समय होगा शाम 6:10 और शाम 7:00। साथ ही कार्यक्रम रसरंग 7:50 तथा रसमाद्री 8:35 पर सुनेंगे।

यह था हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब आप सुनेंगे कल यानी दिनांक 20 जुलाई सन 2026 दिन सोमवार को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण तथा रात्रि 8 बजे सुनेंगे संसद समीक्षा। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 9:30 पर सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, प्रसारण होगा हमारे लखनऊ केंद्र से। कल सुबह 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे गीत भजन, कलाकार होंगी ज्योति यादव।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 12:45 तथा रात 10:30 पर आप सुनेंगे गिटार वादन। कलाकार होंगे सिद्धार्थ बनर्जी तथा इसी कार्यक्रम के में सुबह 7:31 पर सुनेंगे गायन। कलाकार होंगे सिद्धराम स्वामी कोरवार। शाम 6:30 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें धान की फसल में खरपतवार प्रबंधन विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर देवनारायण यादव। साथ ही हंस राज यादव और साथी के गाए हुए किसानी गीत भी आप सुन सकेंगे तथा इन्हीं के गाए हुए लोकगीत आप सुन सकेंगे सुबह 9:50 पर और 1:45 पर। कल सुबह 6:05 पर सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें, विषय होगा आम की बागवानी। इस विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। कल सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कल सुबह 6:35 पर सुनेगा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, विटामिन्स की कमी से होने वाली बीमारियां कारण और निवारण। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर राहुल कुमार सिंह। कल सुबह 6

तो यह थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में आप गाना सुनेंगे। आवाज है कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीत है आनंद बख्शी की, संगीत है अनु मलिक की। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में सुन रहे थे आरजू फिल्म का ये गीत। गीत था आनंद बख्शी की, संगीत था अनु मलिक का। अगला गाना, आवाज है सुनिधि चौहान और सोनू निगम की, गीत है समीर की, संगीत है संदीप का।

0: सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाज में आप सुन रहे थे जंगल फिल्म का ये गीत। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत था संदीप का। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। श्वः आरभ्यमाणस्य संसदः प्रावृट् सत्रात् प्राक् सर्वकारेण सर्वदलीय सभाम् आहूतम्। सभायाम् NCPI दलम् आमन्त्रणे विपक्षेण प्रतीकात्मक रूपेण बहिष्कारम् कृतम्। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजुः सर्वान् राजनैतिक दलान् संसदः सुगमतया संचालनं सुनिश्चेतुं प्रार्थितवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया इत्येतेषां त्रिराष्ट्राणां भ्रमणार्थं प्रस्थितवती। जम्मू कश्मीर प्रदेशे अनेकेषु स्थानेषु आकस्मिक जलप्लावनेन भूस्खलनेन च नैके जनाः मृताः, सम्पत्तिनां क्षतिः चाभवत्। उद्धार कार्याणि प्रचलन्ति, केन्द्रेण सर्वविध सहायतायै आश्वासितम्। बैडमिंटन क्रीडायां पीवी सिंधु इत्येषा प्रथमा भारतीय महिला अभवत्, यया जापान ओपन बैडमिंटन स्पर्धा विजित्य ऐतिह्यं विरचितम्। अपि च अद्य रात्रौ फीफा विश्वकप अंतिम स्पर्धायाः कृते अर्जेंटीना स्पेन देशौ सज्जौ स्तः।

0: पंचो राम राम मुनक्का बहन,
1: का हो रमेश भैया।
0: का हाल चाल बा खेत खरिहान का, गांव गिराव का?
1: गांव गिराव कुल बढ़िया हौ। अरे का
0: हाँ
1: खेत खरिहान त पूछला है त खरिहान त इस समय नाही होत बा। आ
0: हाँ
1: खेते का देखा तैयारी होत है काहे से कि अब
0: घर
1: रोपनी।
0: घर
1: हाँ अब रोपनी का जो न
0: बिल्कुल।
1: तैयारी होत है, बीया भी लगभग लगभग तैयार हो गल है। तो
0: अब बहुत से किसान भैया लोग रोप के खाली भी हो गए हुआ, जे आ गए थी कि अपन बिया बेहन डल्ले हुआ। अब बहुत से इसमें सिवाने में चल जाते, चाहे वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गांव के केहरो दिशा में निकला।
1: हाँ
0: मुनक्का बहन इस समय सब कोई अपन रोपनी में लगल बा, और रोपनी का गीत गौनाई भी सुने में बड़ा आनंद दे वाला। लेकिन हमार नहीं हो रहा वो किसान भैया लोगन से है, जे अभी तनि सा अलसियात हवा,
1: हाँ
0: पिछड़ल
1: हाँ
0: हवा।
1: हाँ हाँ
0: अभी देखें पिछड़े का समय नहीं है,
1: बिल्कुल
0: बिया
1: बिल्कुल
0: बिहन लहा करके

0: आप निश्चित रोपनी का काम करके खाली रहें। और देखें इस समय रोपनी में मुनक्का बहन खाए पिए का बड़ी दिक्कत हो जाला कि काम देखा है आदमी कि चुल्हानी जा करके दो रोटी का जुगाड़ करे। लेकिन यही में अगर जेकरे पल्ले ईंधन का व्यवस्था बढ़िया बा तो वो कर तो देखा काम मतलब टटका टटका तैयार हो जात बा।
1: हाँ सही कहत हुआ भाई। देखा मौसमों ऐसा हो ना कि
0: हाँ
1: ये मौसम में कुल ईंधन नरमाए जाता, चाहे गोहरी कला चाहे लकड़ी
0: हाँ
1: ला। तो
0: बिल्कुल
1: ऐसे
0: बिल्कुल
1: में तुहार जौन कह का मतलब हो कुल घरेतीन समझा थे इन बहन
0: हाँ
1: लोगन कि कह लिया चाहत हुआ कि जौन ईंधन माने बात होत हमन का तो
0: हाँ
1: कहीं भी रख ला, रख के बना ला गैस का बात होत हो।
0: हाँ
1: लेकिन इहो कहब कि एहू का मतलब सोच समझ के पूरा तैयारी कर के हमने तो करीला जौने से ज्यादा एकर उपयोग हो सके आ खेती बारी में जौन है ना हमारा अपन योगदान ढेर दे सकल जा अपने मलिकार के संगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें जौन भी नई तकनीक है सौर ऊर्जा के माध्यम से जौन हमन के आजकल बिजली अपने घरे में जुगाड़ हो जात बा, बिजली के बिल से निजात मिल जात बा। तो अगर बहुत सा आज घरे तीन लोग विज्ञान के साथे आगे बढ़त हैं, इंडक्शन बा अपने तरीके से अपने चुल्हानी में कई तरह का ऐसा बिजली वाला यंत्र रखले हैं कि जैसे उनकर खेती किसानी में झटपट वाला खाना बन जाए। तो ये कुल देखें लाभ तब्बे मिलेला जब आदमी तकनीक अपना वाला। एक क्रम में जौन पीएम सूर्य घर योजना के तहत जौन चलत है कि 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 किलोवाट जैसन पंच भैया लोगन का जरूरत हो 300 यूनिट तक का बिजली फ्री हो जात बा, बिजली देवे के नहीं होत। और सबसे बड़ बात की लगवावे में सरकार अपन योगदान देत बा, सब्सिडी देत हवा और अधिक से अधिक आप लोग लगवावे। बस खाली अमन एक जुगाड़ और रहे के बा कि छत का व्यवस्था अगर बा तो जो सोलर पैनल है वो ऊपर लग जात बा, फिर तार के माध्यम से आपके घर घर में बिजली बा, पंखा बा, बल्ब बा, बत्ती बा और बहुत से कुछ यंत्र ऐसा हवा जो ये सोलर पैनल से संचालित हो जात हवा चलत हो।
1: एकदम नीक कहला है। आप तक अपने घरे के अगवारे पिछवारे लगभग सब ही के लग गल है। आ
0: हाँ
1: रमेश्वर भैया के तो लगवावे के पड़ल, पंच भैया लोगन कहे से भौजी एकदम पीछे पड़ गई नी कि सबके
0: बिल्कुल
1: लग गया
0: बिल्कुल
1: लो,
0: तो
1: तो
0: कर
1: हम के लगवावे के पड़ी। आ
0: हाँ
1: सही कही नी कहे से देखा ऐसे लाभ है, लाभ है नुकसान कौनो तरह का नाही बा हो भैया। कहे से देखा पहली बात तक कि बिजली का जोन बिल चुकावे के बाद उमन
0: उसे
1: कमी
0: मुक्ति
1: होत बा
0: बा।
1: है ना, साथे साथे अपने पर्यावरण के लिए भी ऐसे कौनो तरह का जियान नहीं पहुंची। आ एहू
0: बिल्कुल
1: के साथे तू ई कह सकल है ना कि एकर रख रखाव जवन है एहू में बड़ी
0: हाँ
1: विशेष ध्यान देवे के जरूरत नहीं है। आ अब
0: बिल्कुल
1: तो देखा ई ऐसन ऊर्जा हो भैया ना कि
0: हाँ
1: कभो खत्म न होई, जब तक सूरज उगल रही है जब तक घाम
0: हाँ
1: मिलत रही
0: हाँ
1: तब तक ई जवन है ईंधनों मिलत रही। आ एक अब तो देखत हुआ ना कौनो कौनो अपने ही देशवा में कहीं कहीं जईबा त सोलर से चले वाला कूकर बा, सोलर से
0: हाँ
1: चले
0: हाँ
1: वाला
0: हाँ
1: परेस बा,
0: बिल्कुल
1: माने कुल
0: बिल्कुल
1: साधन ऐसे उपलब्ध बाए।
0: बिल्कुल मुनक्का बहन एकदम सही सहजत है ने। यहाँ तक कि कुकर प्रेस अब कूलर भी ऐसा लोग लोग लगा लेते हैं अपने मड़ई झोपड़ी दलाने में अपने बरामदा में कि वो से राहत बा। और लाइन तारे वाला खंभा वाला रहे चाहे ना
1: ना
0: रहे
1: रहे
0: अपने
1: बिल्कुल
0: छत्ते पर वाला अगर सूरज भगवान के दया से अगर सोलर पैनल चार्ज हो गल तो आपका अन्हार दूर अजोर अजोरे रही रात भर। आ जौन बिजली बत्ती पंखा का बात करत है जाओ कुल लाभ बा।
1: आ कितना जाने ते एक जिकरे घरे ढेर ही बिजलिया पैदा हो जाता हो, दूसरे के बेच के पैसों कमाए लेते
0: हाँ सर
1: हो।
0: बिल्कुल सरकार के वो वापस हो जाला तो ओकर 2 पैसा आमदनी हो जाला। और
1: हाँ
0: जौन सबसे नगद बात मुनक्का बहिन
1: ओ का
0: कि पर्यावरण संरक्षण ऐसे कौनो प्रदूषण नहीं न तो धुआं उठे के बा आ न जमला की आंखें के रोशनी में कोनो दिक्कत बा न प्रकृति के पेड़ पौला पौधा के ऐसे कौनो प्रदूषण नहीं होए के है।
1: सही बात। तो देखा हम तो कहीं पंच भैया लोगन जागरूक हुवन, आ
0: हाँ
1: समय
0: हाँ
1: समय पर हम हनु अपन जागरूक करत रही ले जा, बहुत भैया
0: हाँ
1: लोगन अपना ले ले हुवन। आ
0: हाँ
1: जे ना अपने ले है वो आप तनी सचेत हो जाए और
0: हाँ
1: योजना का लाभ उठा के अपने घरे जौन है कि ई कुल साधन के आसानी से उपयोग में लिया में करे के
0: बिल्कुल। आ
1: कुछ
0: एक
1: नहीं
0: के
1: हो।
0: बात चलत चलावत सहेजे के ई बा कि घर पर छत होए जरूरी बा एमन पहला बाई। आ दूसरा ई बा कि अगर आपके अगर इच्छा बा आपके घर पर छत बा तो आप निश्चित रूप से आप सरकारी पोर्टल पर जाएं पीएम जोन घर योजना है सौर ऊर्जा वाला एक पर आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकना। अब चला कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाए। आज हम बात बात कही में का करल जाए
1: का करल जी का देखा शुरू में खाए पिए का बात कही।

0: मिला
1: हाँ हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना। तो देखा खेती आ बारी हमहन का तो मेन बात,
1: बिल्कुल
0: हाँ कि
1: बिल्कुल
0: नहीं। तो
1: हाँ हाँ
0: खेती का तो बात बात होता है बार, लेकिन आज अपने पंचायती में देखा लेके आयल है जा
1: हाँ
0: बारी का बात, यानी फल उत्पादन है ना।
1: हाँ हाँ
0: ऐसे के आए जवन हो
1: हाँ
0: वो कैसे मिलला है ना,
1: हाँ
0: यही विषय पर कि माने फल उत्पादन से जवन आय का अलग से तो के स्रोत
1: अतिरिक्त स्रोत जो न
0: बिल्कुल
1: होता।
0: मिलत हो तो वो कैसे मिली है ना। यही विषय पर शैलेंद्र रघुवंशी हुआ बड़ा अनुभवी हुआ,
1: हाँ हाँ हाँ
0: इनसे
1: हाँ
0: बात कैले हुआ सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया। तो पंचलोगन ये बात कही सुने।
1: अब सुनल जा।
2: शैलेंद्र रघुवंशी, आप ग्राम और पोस्ट बबियाओं चोलापुर जिला वाराणसी का रहने वाला हुआ और एक प्रगतिशील किसान भी हुआ और जागरूक किसान हुआ और खेती के साथ साथ आप बाड़ी बगीचा भी लगुले हुआ और अतिरिक्त आय भी आप जो हो फल उत्पादन से प्राप्त कर लेना। तो हम आपसे एक अनुभव जानल चाहब कि जो ई आप बगीचा अगर लगुले हुआ तो कितना क्षेत्रफल में लगुले हुआ।
3: नमस्कार। हम पहले जब शुरुआत कैली बागी का
2: जी
3: तो पहले तो हम भारत सरकार के जितना संस्थान हुआ या यूनिवर्सिटी हैं वहाँ जाके हम एक बार भ्रमण कैली और जानल चाहली कि हम का चीज़ का खेती और बागवानी करी जौन कि हम सफल हुई। तो हम पूरे देश में घूम घूम के देखे, जा करके वैज्ञानिकन से मिले तो लोग बताऊ ना हमें और सबके बतावे का हम एक अपन तैयार कैली कि हमके अमरूद का बागवानी करे के हो।
2: अच्छा
3: अमरूद का बागवानी के चयन हम ये बदे कैली कि अमरूद तराई में भी होला, पहाड़ी पर भी होला, कम पानी में भी होला और जहाँ अधिक पानी हो वहाँ भी अमरूद सर्वाइव कर जाला। तो ऐसे हम अमरूद और अमरूद साल में 3 बार हमें फल देला। और छोटा पौधा होला, अगर हमें कभी विचार आल के हटावे के हो तो आसानी से ओकर हम पौधा हटा देबे। और एकर हम 2 बार कटाई छटाई भी करीला। तो कटाई छटाई का एक फायदा हो जाला कि ओकरे नीचे हम इंटरक्रॉपिंग मतलब सह फसल भी ले लेला।
2: कौन चीज
3: तो
2: का।
3: ऐसे सह फसल में हम हल्दी का फसल अपने अमरूद के बाग में लगा करके ऊपर अमरूद रही नीचे हल्दी रही ओके ले लेला।
2: अच्छा
3: तो एक अलग से ही हमारे आय का जरिया भी बन जाला।
2: अच्छा अच्छा तो हरदी बजे तो 300 उचास जमीन चाह ले, तो एक सिंचाई वगैरह अमरूद का कैसे करत हो।
3: अमरूद का सिंचाई हम टपक सिंचाई से करीला।
2: अच्छा
3: टपक
2: कि
3: सिंचाई
2: सीधे मतलब
3: लगुले,
2: पौधा तक
3: हाँ
2: पानी
3: पौधा
2: चल
3: के
2: जाए।
3: पास पानी जाई। बीच में जैसे 9 बाई 12 फीट पर हम लगुले हई तो 9 बाई 12 फीट के बीच में हम मेड़ बना दीला, वही
2: अच्छा
3: पर हल्दी लग जाले।
2: अच्छा कि पानी का असर मतलब
3: जी
2: पानी ना
3: तो
2: लगा पावे
3: जी
2: ऊपर। तो कौन प्रजाति का अमरूद हो आपको।
3: हम करीब 16 प्रजाति अपने पास लगुले हई।
2: 16 प्रजाति।
3: जी
2: तो एक पौधा आप कहाँ से लिया लेना है।
3: पौधा हम कुछ तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ हो, कुछ वहाँ जाके हम मिले। फिर अपने यहाँ सबसे बड़ा संस्थान पूसा का हो, वहाँ जाके कुछ वैरायटी ले आए। फिर ग्वालियर से ले आए, पंतनगर से, जहाँ जहाँ से हमके ही मालूम भेल कि नहीं यहाँ अच्छी प्रजाति के अमरूद के हो वैज्ञानिक निकलले हो वहाँ जाके उनसे मिलके उ प्रजाति के अपने यहाँ लियावे का प्रयास कैली
2: अच्छा
3: और धीरे धीरे 16 प्रजाति अभी हमारे पास हो।
2: तो यहाँ जो ना बाग लगुले हुआ बाहर से भी लिया के लगुले हुआ, तो जो मौसम वहाँ का रहा वो हिसाब से यहाँ ओकर अनुपालन हो जाता।
3: जी बिल्कुल हो जाता हो।
2: अच्छा ओकर फल जो हो ओकर साइज जो हो और बढ़वार विकास वैसे होता है जैसे
3: हाँ
2: वहाँ होता रहला
3: बिल्कुल
2: है।
3: अच्छा होता।
2: अच्छा तो इस समय तब फल निकलत हुई ओकर।
3: हाँ ये समय अभी फल बहुत शुरुआत भयल हो लेकिन आगे 10 दिन के बाद अच्छा निकले लगी।
2: का विशेषता हो एकर।
3: देखिए अलग अलग प्रजाति के अलग अलग व्यवस्था है। हमारे पास एक ललित प्रजाति है जो अंदर से लाल होला, ई खास करके प्रोसेसिंग वेराइटी हो।
2: जिके
3: और
2: इलाहाबादी कहल जाला।
3: नहीं नहीं
2: अच्छा वो
3: वो
2: अलग
3: अलग
2: वाला।
3: हो, वो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा द्वारा विकसित कल हो, ये प्रोसेसिंग वेराइटी हो।
2: अच्छा
3: एकर वो खूबी है कि बहुत ज्यादा फला वाला और
2: अच्छा
3: एकर अगर हम जूस निकाल के रख दें तो 1 साल तक बिना कोनो केमिकल के ही रह जाला। तो ये बदे
2: अच्छा
3: ही अच्छा हो। तो कोनो कोनो प्रदेश में जहाँ की मूल्य संवर्धन का काम होता हो
2: हाँ
3: वहाँ जैसे गुजरात हो और अरुणाचल प्रदेश हो वहाँ ज्यादा एकर मांग हो।
2: तो वहां आपका ये फसल जाले।
3: हाँ हम पौधा जैसे अरुणाचल प्रदेश में 50,000 पौधा हर साल हम भेजीला ललित का। तो वहाँ
2: अच्छा
3: लोग किसान बड़े पैमाने पर लगौले हुआ और जा करके हम प्रशिक्षित भी वो लोग के करीला।

0: के कैसे देख रेख करे के हो, कब इनमें कटिंग करे के हो, फल लागल तो हम का करे के हो, सारी व्यवस्था वहां पे जाके हम प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें बताई ला।
1: अच्छा, तो इस समय कौन कौन और जोन हो फल आप अपने बगीचा में लगुले हो जो निकलत हो?
0: अमरूद शुरू में लगौली हम, फिर 2011 में हमरे समझ में आयल, और समझ में आयल कि जब किसान बाहर से हमार बागवानी देखे आवे शुरू कईने, तो लोगन का एक कहना रहल कि आप तो 16 वैरायटी के अमरूद लिया के लगा लेना, लेकिन हर किसान के संभव ना हो कि हर इंस्टीट्यूट में जाएं, हर कृषि विश्वविद्यालय में जाएं, तो काहे ना हमें पौधा बना के देते हैं।
1: अच्छा
0: तो हम वही किसानन लोगन के राय पर, मांग पर, हम अपने यहाँ 2011 में एक ठे नर्सरी स्थापित कर दी, और नर्सरी में अमरूद का पौधा वैज्ञानिक विधि से वी ग्राफ तकनीकी से हम बनावे शुरू कर ली पॉली बैग में।
1: तो इकरे बदे कोनो वैज्ञानिक प्रशिक्षण भी आप लेना कि
0: नहीं,
1: मतलब अपने आप
0: वैज्ञानिक
1: शुरू कर
0: प्रशिक्षण ना
1: लेना?
0: ले ली हम, और चूंकि आना जाना हमार केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेला लखनऊ में रहल, वहां के वैज्ञानिक लोग, यहाँ के उद्यान विभाग का जो कर्मचारी लोग हुआ, ये लोग भी हमके बताऊ ना, कुछ देख के भी अनुभव भयल, हम अपने से काम शुरू के लिए। उस समय तो पहले साल हम 30,000 पौधा बनौली, जो उनकी एकर प्रदेश खाली महाराष्ट्र में दे दिली, और फिर हम धीरे धीरे मांग के अनुसार बनावे लगली। 2-2.5 लाख पौधा हम हर साल अमरूद का बनाईला, और पूरे देश में हम किसान के देला।
1: तो कौन हिसाब से तैयार करने के?
0: एक पॉली बैग में हम तैयार कईला, वी ग्राफ से तैयार कईला।
1: बी ग्राफ का
0: वी
1: होता है?
0: ग्राफ का मतलब ये हो कि हम पहले बीजू तैयार कईला,
1: अच्छा।
0: बीज से अमरूद का बीज हो ओके डाल करके बीजू तैयार करब। जब वो पेंसिल साइज का हो जाई, पेंसिल से पेन साइज के मोटाई का जब वो पौधा हो जाई, तब उनमें हम वी ग्राफ्ट, वी ग्राफ्ट का मतलब ये होला कि कटिंग करके ओके वी आकार का चीरा लगावल जाला,
1: अच्छा
0: और जौन हम बड स्टिक लिया साइन जो कहल जाला,
1: हाँ
0: ओके वी आकार में छील करके
1: अच्छा
0: उनमें डालल जाला,
1: वही में बैठा
0: हाँ
1: देला।
0: उनमें बैठा के ओके पन्नी से बढ़िया से बांध देवल जाला, जौन से कोनो प्रकार का फंगस उनमें न आवे न तो में पानी जाए।
1: अच्छा
0: फिर धीरे धीरे वो 15 से 20 दिन में सेट हो जाला, और ऊपर जो हम बड़ी स्टिक लगौले रहब उनमें फूटाव आवे लगी,
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: उनमें जैसे हम कलम जब बांधिला, तो उनमें हम एक कैप पहना दईला, पॉलिथिन के एक कैप आवाला ओके पहना के ढक दईला, तो ऊ कहला कि नमी बनौले रहला उनमें हमार जो बड़ी स्टिक, चूंकि हम एक तरह से ऑपरेशन करते थे, तो ऑपरेशन के बाद उनमें कोनो प्रकार का फंगस न लगे,
1: संक्रमण ना हो।
0: संक्रमण न हो, तो ओकरे बदले हमने ढक दिला, तो नमी बनौले रहला। 15-20 दिन के बाद जब उनमें इस फुटाव आवे लगी, स्प्राउटिंग दिखाए लगला कि इनमें से पत्ता निकलत हो, और पत्ता लगभग गेहूं के साइज का हो जाला, तो वो कैप हमने निकाल दिला।
1: अच्छा, तो ये बतावे कि जो आप लगावे के बाद कहत हुए बीज, तो ओके का कुछ उपचारित तो वगैरह भी करे ना?
0: जी, बीज के हमने 2 तरीके से उपचारित कईला। पहले तो हम अच्छा बीज ले, ओके बढ़िया से धुलाई करने के बाद ज्यादातर जो है बीजामृत, जब हमने अपने यहाँ बनाई ला, ये
1: अच्छा
0: प्राकृतिक एक खाद हो, प्राकृतिक विधि से गाय के गोबर मूत्र से बनावल जाला, उनमें हमने एक जो है डुबा दे ला,
1: अच्छा
0: और डुबाने के बाद फिर हमने निकाल के ओके सुखा के तो बीज डालल जाला। अगर कभी उपलब्ध ना हो तो कोनो भी फंगीसाइड हमने ले लेवल जाला, फंगीसाइड में ओके पहले उपचारित करके तब वो बीज के डालल जाला कि बीज का अच्छे से जमाव हो जाए।
1: जिससे रोग वगैरह लगने की संभावना कम हो जाए।
0: हाँ जी,
1: अच्छा, ये अमरूद के अलावा और चीज आपके बगीचा में
0: अमरूद के
1: कौन कौन
0: अलावा
1: सी?
0: हम आम पर भी काम करते थे।
1: आपका भी पौधा तैयार कर
0: जी,
1: ना,
0: आम का भी पौधा तैयार करते थे।
1: तो आपके बगीचा में कुछ फल वाला भी पौधा, मतलब फल देवा
0: जी,
1: वाला
0: फल
1: भी हो
0: वाला
1: कि
0: भी हुआ,
1: खाली
0: नहीं,
1: पौधा तैयार
0: फल
1: कर
0: वाला
1: रहे
0: भी
1: हैं?
0: हुआ, आम भी हो, अमरूद भी हो, आंवला हो, बेल हो, बेर हो,
1: हाँ, ये सब चीज का पौधा आप तैयार
0: जी
1: कर
0: जी
1: रहे हैं?
0: नींबू भी हो, मुसब्बी भी हो, किन्नू भी हो, ये सब का पौधा हम तैयार कईला।
1: अच्छा, तो आम का तो इस समय फसल आवत हुई आपके बगीचा
0: जी,
1: में?
0: अब
1: अच्छा,
0: तो
1: कौन से
0: समापन
1: प्रजाति
0: के
1: का हो?
0: तरफ हो, और लंगड़ा दशहरी तो समाप्त हो गल हो, अभी आम्रपाली और मल्लिका कुछ बचल हो।
1: अच्छा,
0: जी,
1: तो एकर पौधा भी तैयार कर ले हुई
0: एकर हम
1: है?
0: पौधा भी तैयार कर ले।
1: अच्छा, तो कहाँ कहाँ एकर पौधा भेजो ना?
0: अभी जैसे एक बहुत बड़ा हमने कार्यक्रम शुरू कर ली ये बार से, क्योंकि बनारस का लंगड़ा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो, और सरकार के GI भी दे ले हो,
1: अच्छा
0: लेकिन लंगड़ा का क्षेत्रफल बनारस में दिन पर दिन घटत हो, जब शहरीकरण का विकास हो लगल, ऐसे क्षेत्रफल लेकर घटे लगल।
1: अच्छा
0: तो ये बार हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से, मुख्य विकास अधिकारी महोदय से मिलकर के एकर क्षेत्रफल बढ़ावे के विषय में एक दिन हम चर्चा कर ली,
1: अच्छा
0: तो लोग तैयार भई ना, और फिर इबल किसान

0: चयन किया जाए। तो हमने एक सुझाव उन्हें दे ली कि काहे ना जो हर गांव में अमृत तालाब बनत हो, अमृत जलाशय, ये काफी बड़े एरिया में बनल हो और लगभग हर गांव में हो, तो एकरे किनारे अगर हमने 20-20 पौधा लगा देवल जाए अमृत सरोवर के, तो अमृत सरोवर के भी सुरक्षा हो जाये और आम का जो हो क्षेत्रफल भी बढ़ जाये। तो ए बार 492 अमृत सरोवर बनारस में बनल हो।
1: अच्छा,
0: जौने के किनारे हम लगवली है हर सरोवर के किनारे 20 पौधा।
1: अच्छा।
0: और ओकर देख रेख जो वहाँ गांव में एक अमृत सखी रखल है, हर तालाब पे एक महिला रखल है।
1: अच्छा।
0: उनके कह गल हो कि भाई तुम्हें एकर देख रेख करके हो, बल्कि एकर जो कमाई हो पंचायत का भी एक आय बढ़े का स्रोत हो जाए।
1: तो ये कहे कि जैसे बनारसी लंगड़ा हो तो बनारस के बाहर एक जो पौधा भेजन तो का वहाँ भी एक जो आकार प्रकार होला
0: जी सेम होला, सेम होला, सेम होला। लेकिन भैया एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमने कहो कि बनारस का जो लंगड़ा प्रसिद्ध रहा धीरे धीरे वो एकदम खत्म हो कगार पे हो, कि होकर ध्यान नहीं देता क्योंकि कैसे हमने संरक्षित रखी। लेकिन ये बीड़ा हम उठौली, हम घूम के पूरे बनारस में खुजली कहाँ ऐसा पौधा जोन कम से कम 70-80 साल पुराना हो।
1: अच्छा।
0: जोन ओरिजिनल लंगड़ा हो, हमके पूरे बनारस में 5-6 पौधा मिललो और वही से हम बनावे शुरू के लिए ही। और हमारे एक उद्देश्य है कि जोन बनारस का लंगड़ा हो ओके सफेदा भी बोल जाला, कागजी भी बोलल जाला, एकर स्वाद हर आम से अलग हो, एके बचावल जाए और एके आगे बढ़ावल जाए। कहें कि जोन भी लंगड़ा बिके आवत हो तो बनारस का लंगड़ा नहीं हो, ओकर स्वाद भी बहुत अंतर हो।
1: अच्छा अच्छा तो ये बतावे कि ये जो आप खेती करत हो इससे लाभ आपके कितना हो जाता हो?
0: देखें ऐसे दो प्रकार का हमारा लाभ है। एक तो प्रकृति से जुड़ल गल हमने
1: जी
0: और प्रकृति से जुड़ के ये काम करे में बड़ा शांति मिले ले। दूसरा अर्थ लाभ भी हमें भयल, अर्थ लाभ जो हम पारंपरिक खेती करते धान गेहूं गन्ना मक्का आलू ऐसे हमें ज्यादा ज्यादा का लगभग 4-5 गुना हमें लाभ ज्यादा मिले लगा।
1: मतलब जितने क्षेत्रफल में मुख्य फसल की खेती हो
0: जी
1: उतने फसल में अगर बारी बगीचा लगाए के
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: उससे
0: 5 गुना ज्यादा। हाँ ये थोड़ा सा ध्यान देवे के हुई।
1: अच्छा।
0: ध्यान का मतलब समय समय पर ओकर देख रेख, समय पर दवा, समय पर खाद, काहे भैया कि पौधा भी अब भोजन मांगला, अगर हमें आय देत हो उपज देत हो तो ओके भी हमें भोजन समय समय पर देवे के हुई। तो जब हम देव जौने में प्राकृतिक खाद ज्यादा से ज्यादा ओके दियाई तो सारा तत्व जौन तत्व हमारे शरीर बदे जरूरी है 16 वह पौधा बदे भी जरूरी है। तो अगर वो ओके मिली और ओकर उपजल अगर हम फल अन्न खाब तो हम भी स्वस्थ रहब, हमारे अंदर भी विटामिन का कमी न हो।
1: हाँ, जब अपन जमीन संतुलित रही ओकर मात्रा जो पोषक तत्व का हो
0: हाँ
1: तो भाई वह संतुलन हमारे शरीर में
0: ही में रही
1: वही को उत्पादकता लेते
0: हैं। जी
1: जी तो इस समय समय पर मिट्टी का जांच भी करवाना का?
0: जी बिल्कुल कराइला।
1: अच्छा।
0: हम अपने यहाँ रखले भी है मिट्टी जांच मशीन, आस पास के किसानन के भी करीला।
1: अच्छा।
0: उन्हें भी बताओ
1: जी जी उन्हें
0: का कितने मात्रा में दी वही की हो।
1: अच्छा, पानी का जो कर पीएच मान वगैरह होला
0: जी
1: निकालने
0: अभी तक वो सुविधा तो हमारे पास नहीं है, हम बीएचयू से ही सहयोग ले लिया।
1: अच्छा,
0: क्योंकि बीएचयू से एक हमारा अनुबंध भी भल हो कि वो बीएचयू के साथ मिल करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानन का कैसे हमने आय बढ़ाई एपे हम और बीएचयू मिलके काम कर जाए।
1: अच्छा, तो वहाँ से आपके सहयोग मिला था,
0: पूरा पूरा मिला पूरा था। सहयोग मिला था
1: वही सलाह के आधार पर आप अपन काम कर
0: जी, जी।
1: तो भैया शैलेंद्र रघुवंशी, आप इतना जागरूक प्रगतिशील किसान हुआ और पंचायती में ही ना अपन अनुभव बताऊ ना अनुभव बताओगे दे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटवा ढूंढ रहे? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने? RBI कहता है कि
2: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
3: और को भी सिखाओ।
4: मुनक्का बहन,
5: हाँ भैया,
4: देखें फनेस से पहले जो बात कही अकरम हमन सुनल चाहत रही है कि आमदनी कैसे बढ़ावल जाए खेती के साथे साथे, तो जोन फल उत्पादन का एक सशक्त माध्यम है आय बढ़ावे बदे, एक बदे जोन शैलेन्द्र रघुवंशी भैया जानकारी देना है तो इन्हों के दिहल जाए धन्यवाद। आ सुधीर भैया अपन जो बात कही कहना है इन्हों के धन्यवाद। बड़ा नगद जानकारी रहल कि अगर देखें अच्छी प्रजाति का अगर फल का पौधा अगर मिल जाए,
5: हाँ,
4: तो देखें बढ़िया चीज तो सब चाहला कि खाए के मिले, पहिरे के मिले, ओढ़े के मिले। तो अगर ऐसे में अगर पुरान स्वाद वाला अगर जैसे आम हो गल या कोनो भी जामुन हो गल जो पहले मीठ लगे, वो कुल अगर चीज अगर अब नए लोगन के मिले तो निश्चित रूप से ओकर बाजार भाव भी बढ़िया मिली और फल का मांग भी रही।
5: मांग भी रही तो जरूरत हो, सबसे बड़ी बात हो ना भैया कि पहले पेड़ तो लगावे,
4: हाँ, तब पेड़ा खाएं,
5: तब पेड़ा खाएं। हाँ, सबके तो आम चाहिए, सबके जामुन चाहिए, मतलब जौन फल खूब बढ़िया चाहिए।
4: हाँ,
5: लेकिन कोई पेड़ लगावल ना, हाँ, चाहता,
4: हाँ, हाँ,
5: दुआर गंदा हो तो मार पतई गिर जाता या, हाँ, मतलब ये तरह का मानसिकता है, खूब घर बने के चाहिए, लेकिन पेड़ पालो लगी ना, रस्ते में चलिए जब घाम हुई तो छहाए बदे खोजियन तो कहाँ से हुई। पहले जागरूक बना, पहले पेड़ पालो लगा, फलदार वृक्ष लगावा, औषधि वाला पेड़ लगावा, तब न जाने कि ई कुल तोह के लाभ मिली, पैसों मिली, खैबो करवा, है ना?
4: बिल्कुल मुनक्का बहन, बहुत बढ़िया सनेस बात कही के माध्यम से आप कह देनी पंच भैया लोगन से। आ देखे निश्चित रूप से रस्ते में हमन कहीं थक जाइला, हार जाइला, तो सोची ला जा छहा ले, वो समय पेड़ खोजी ला जा। ऐसे ही घरे में चार पैसा अगर आवत बा तो सोची ला जा थरिया में ई आ जाए, वो आ जाए, लेकिन सच्चाई ऐसे ही तरी बा कि हमहन पेड़ लगावत नहीं, हमहन खेती बारी में अपन कोनो योगदान देत नहीं, आई कहां से पेड़ छांव दी है कहां से। तो निश्चित रूप से देखें पंच भैया लोगन, विकास तो बहुत जरूरी है लेकिन विनाश के पथ पर नहीं। निश्चित रूप से जैसे कहीं अगर कोनो उद्योग घराना लगत बा तो चार पेड़ अगर कटात बा तो 14-40 पेड़ लगे के चाहिए,
5: बचावे के,
4: बिल्कुल जौन वीरान जंगल बा वहां पेड़ लग जाए, ताकि जौन हरियाली का औसत है वो कटे। लड़कैया में जब हम पढ़त रही है तो जानत रही है कि 70% खुला है, 35% आदमी के देहल है, तो जो 70% ऑक्सीजन बदे पर्यावरण बदे देहल बा ऊपर भैया हमन कब्जा न करल जा, हरियाली बनौले रह जा,
5: हरियाली बनल रह और हरियाली हमन के कार्यक्रम में भी बनल रही। देखा है बाबूलाल यादव और साथी लोगन का गवनई हो तो पंच लोगन सुने और हरियर होके झूमे।
4: बिल्कुल बिल्कुल सुने।

0: बहन देखा रहना बाबूलाल यादव भैया उनके संगाती लोग दिहल जावा देशभक्ति गीत सुनाओ बदे धन्यवाद। आ देखा चला चला जान वाले काल का हुई
1: काल देखा हुई सवेरे 6:05 पर खेती के बाद
0: हाँ।
1: और आम का बागवानी विषय पर जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह भैया अकाल सांझी के अपने कृषि जगत में का हुई।
0: काल संध्या के यही कार्यक्रम में 6:30 बजे धान की फसल में खर पतवार प्रबंधन पर जानकारी दी है अपन देव नारायण यादव भैया। सब पंच भैया लोग सुन के लाभ लिए हैं और घड़ी का सुई इशारा कर सा चला चले के तब पंचो राम
1: राम राम।
0: राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में सुन रहे थे आशिकी फिल्म से ये गीत। गीत था समीर का, संगीत था नदीम श्रवण का।

0: सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: एक प्रकार से

अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में सुन रहे थे धड़कन फिल्म से ये गीत। गीत थी समीर की, संगीत थी नदीम श्रवण की। अगला गाना प्रेम रतन धन पायो, फिल्म से सुन

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों की

लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलिया से प्राप्त सूचना के अनुसार नाम पूजा, पिता का नाम रुद्र प्रसाद, माता सुनीता देवी, निवासी ग्राम चेतन, थाना सिकंदरपुर, जनपद बलिया, ये दिनांक 26 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2 बजे से लापता हैं। आखिरी बार जब इन्हें

देखा गया तब इनका पहनावा गहरा नीला रंग का सलवार सूट और लाल रंग की कोटी। इनकी आयु 14 वर्ष, कद 5 फीट, चेहरा लंबा, माथा चौड़ा, आँख नाक कान औसत है। इनके बारे में कोई जानकारी मिले तो निकट के थाना क्षेत्र को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय आदमपुर वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार नाम कृष्ण कुमार भारती, पिता का नाम स्वर्गीय दिलीप कुमार, निवासी कजाकपुरा आदमपुर वाराणसी, ये दिनांक 15 मार्च 2026 दिन रविवार से लापता है। इनकी आयु 20 वर्ष, रंग गोरा, लंबाई 5 फीट 6 इंच, पहनावा नीली टी शर्ट, काला पैंट और चप्पल पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो निकट के थाना क्षेत्र को सूचित करें। ये थे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
1: मेरी गुड़िया के
3: नाम। दादी आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो क्या
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नवीन भवन का किया लोकार्पण। आपदा के प्रति पहले से सतर्कता तैयारी और जागरूकता पर दिया जोर। प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को बनाया गया प्रशासक। पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश। केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के चौथे क्षेत्रीय चिंतन शिविर का आज लखनऊ में हुआ समापन। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खटके ने राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए युवाओं का किया आह्वान। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। राज्य के अधिकांश स्थानों पर अगले दो दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 200 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनाए गए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि हर आपदा से निपटने के लिए यूपी को ऐसा राज्य बनाया जाए जहां प्रत्येक नागरिक विश्वास लेकर जीवन जी सके कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ वो भी तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रायः आपदा व जनधन की व्यापक हानि के बाद हम लोग सक्रिय होते हैं और संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन आपदा के प्रति पहले से सतर्कता तैयारी व जागरूकता जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर पर ला सकती है।

0: कई प्रकार की होंगी। एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा हुआ है, बाढ़ है, कहीं पर लाइटनिंग की घटना है, अतिवृष्टि के कारण होने वाली जनधन की हानि का हो, या फिर मानव की असावधानी से होने वाली आपदाएं, अग्निकांड की घटनाएं हैं, या किसी भवन के गलत डिजाइनिंग के कारण या किसी दुर्घटना के कारण भवन का धराशायी हो जाना है। कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जिन्हें आप एक प्रकार से आधी भौतिक आपदा के रूप में ले सकते हैं, यानी किसी जीव के द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने मानव वन्य जीव द्वंद को भी आपदा की श्रेणी में लेकर के उससे लोगों को राहत देने का कार्य किया।
1: नवीन मुख्यालय भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम

0: अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। राज्य सरकार ने प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को आज प्रशासक बना दिया है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बना दिया गया है। राज्य सरकार ने आज 826 ब्लॉक प्रमुखों की प्रशासक के तौर पर नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल आज समाप्त हो गया है। सामान्य तौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद खंड विकास अधिकारी को प्रशासक बनाया जाता है, लेकिन सरकार के इस फैसले से ब्लॉक प्रमुख आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने तक अपने पद पर बने रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे, लेकिन सामान्य रूटीन काम करते रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख किसी नीतिगत मामले से संबंधित प्रस्ताव डीएम के माध्यम से शासन को भेजेंगे। शासन स्तर पर ही अंतिम मुहर लगाई जाएगी। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में विपक्षी पार्टियों ने नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया NCPI को सर्वदलीय बैठक में शामिल करने पर विरोध जताया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने NCPI को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट NCPI को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। NCPI हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में आगामी 22 जुलाई को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक बुलाई गई है और विवरण हमारे प्रतिनिधि से।
3: अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले के बीच अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 22 जुलाई को अहम न्यासी बैठक बुलाई गई है। बैठक के एजेंडे में SIT की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा और ट्रस्ट की विभिन्न समितियों के पुनर्गठन का प्रस्ताव शामिल है। वहीं दूसरी ओर निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रस्ट के पुनर्गठन, वित्तीय लेन देन के फॉरेंसिक ऑडिट, ट्रस्ट में उचित प्रतिनिधित्व और मंदिर की पूजा व्यवस्था रामानंदी परंपरा के अनुसार संचालित करने समेत कई मांगे उठाई हैं। अब इस मामले पर सभी की निगाहें 22 जुलाई की ट्रस्ट बैठक और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के चौथे क्षेत्रीय चिंतन शिविर का आज लखनऊ में समापन हो गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने कहा कि देश के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की मुख्य प्रेरणा शक्ति हैं। श्री खडसे ने जिला युवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को सेवा, समर्पण और सामूहिक प्रयास की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने शिविर में हुई चर्चाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाने का आह्वान किया। ये शिविर युवा नीतियों को और प्रभावी बनाने और नशा मुक्ति जैसे अभियानों में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों

0: से जनता को अवगत कराने के लिए आज सिद्धार्थनगर के इटवा में जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों से सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश वासियों को मिला है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम ठीक होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। अमरनाथ यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के अधिकांश जिलों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों और तराई क्षेत्रों में ये क्रम आगामी 2 दिनों तक जारी रहेगा।
1: उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि एक अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड और बिहार के ऊपर मौजूद है, साथ ही में जो मानसून ट्रफ है हरदोई और बनारस से पास हो रहा है, जिसकी वजह से आज प्रदेश में अच्छी वर्षा हुई लखनऊ समेत, और ये सिलसिला आने वाले अगले 24 घंटे में भी रहेगा और आने वाले अगले 3 दिनों तक। इसी तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में स्पेशली जो तराई बेल्ट है वहां पर भारी वर्षा की संभावना है, जो बुंदेलखंड रीजन है वहां पर भारी वर्षा की भी संभावना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय के नवीन भवन का किया लोकार्पण। आपदा के प्रति पहले से सतर्कता, तैयारी और जागरूकता पर दिया जोर। प्रदेश के 826 ब्लॉक प्रमुखों को बनाया गया प्रशासक। पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश। केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के 4th क्षेत्रीय चिंतन शिविर का आज लखनऊ में हुआ समापन। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए युवाओं का किया आह्वान। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अगले 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
3: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पत्र के लिए। धन्यवाद।

0: पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, सना जी हमारे साथ हैं। सना सलीम जी, आपको भी नमस्कार हमारी ओर से।
1: अरुण जी, आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार।
0: और आज दोनों हाथों में लड्डू नहीं है लेकिन नान खटाई है श्रोताओं।
1: नान खटाई और... नहीं खाती।
0: नहीं खाती और लाती में अंतर होता है ना, जब आप लेके आएंगी यानी जब लाती हुई होंगी। जैसे
1: पसंद है कहने का मतलब।
0: हाँ, ये हमारे जो हजारों सुनने वाले हैं दूर दराज के इलाके में, उनको बता दें कि अभी अभी रथ यात्रा का मेला बीता है, बनारस में बड़ा प्रसिद्ध है। और वहां पर जो नान खटाई है वो बड़ी मशहूर है सदियों से, और वो अभी सना जी के हाथों में है, आपके लिए भी हो सकता है।
1: उमस वाली जो गर्मी है वो बरकरार है अरुण जी, लेकिन हमारे श्रोताओं के मैसेजेस जो हैं वो उस उमस भरी गर्मी में भी कर रहे हैं समय निकाल के, ये बड़ी बात है।
0: हाँ, यानी मेल भेज रहे हैं मैसेजेस। हाँ। तो आप लोगों को वो जो लाइट जलने वाला प्रोग्राम होता है जिसमें झालर बत्तियों का भी इंतजाम हो गया है आजकल
1: शाम वाले में।
0: हाँ, तो एवरी डे वाली जो है दिवाली हो गई।
1: वाराणसी की वाइब को अच्छा करने के लिए झालर बत्ती का इंतजाम।
0: और हम सब

0: उस माने हमारे जो पीढ़ी के दौर के लोग हैं वो उन इंतजाम कहते हैं,
1: जी
0: उससे हम लोग जो है वो क्या है
1: जुदा जुदा है। तो अब
0: जी
1: मेल देखते हैं किन किन श्रोताओं के आए हैं। ये पहला मेल है सोया शिवपुर दुल्हापुर गाजीपुर से दिनेश सिंह यादव का।
0: जी
1: लिखते हैं, मैं अभागा,
0: क्यों
1: सबसे पहले
0: अभी
1: मैं
0: वो पिछले दफे वहां पर हम ये कहने वाले थे कि मैं महरूम हूं उन इंतजाम से, तो ये क्यों अपने आप को ऐसा लिख रहे हैं?
1: पता नहीं, सबसे पहले मैं समस्त आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समस्त कार्यक्रम अपने आप में लाजवाब होते हैं और समस्त प्रस्तुतकर्ता भी अपने आप में अनूठे ही होते हैं।
0: लेकिन आपका नाम पहली बार हम सुन रहे हैं।
1: हाँ, ये बात अलग होती है कि हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती है।
0: ख्याल
1: आप
0: अपना अपना।
1: जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं अभागा क्यों लिख रहा
0: जी
1: हूँ।
0: वही मैं तब से सोच ही रहा
1: इसका
0: हूं।
1: कारण है कि मैं 1996 से रेडियो से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन ये मेरा पहला पत्र है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। अच्छा, इसलिए।
0: इसलिए ये अपने को कह रहे
1: हाँ,
0: हैं, तो वही हम कहने वाले थे कि
1: 30 साल से
0: खैर
1: जुड़े हुए
0: चलिए,
1: हैं।
0: देर आए दुरुस्त आए ये बात जो कही जाती है, लेकिन अब आप निरंतरता बनाए रखेंगे और प्रोग्राम सुनेंगे और इस प्रोग्राम में भी शिरकत करते रहेंगे। स्वागत इस्तकबाल है आपका।
1: जी, आगे लिखते हैं कि कृषि जगत कार्यक्रम में मेरा सुझाव ये है कि मिश्रित प्रस्तुतिकर्ता आ रहे हैं, तब से वो मजा नहीं आ रहा है जो पहले मिलता था। कृपया एक कार्यक्रम दोनों पुरुष अथवा दोनों स्त्री ही प्रस्तुत करता
0: जी
1: हूँ।
0: मिश्रित से इनका तात्पर्य यानी ये है कि एक
1: जी,
0: मेल एक
1: एक
0: फीमेल
1: फीमेल।
0: जो एंकर आ रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम में बहुत वर्षों से परंपरा तो यही रही है कि उस कार्यक्रम में दो मेल ही एंकर रहते हैं, प्रेजेंटर रहते हैं, और जो दिन का प्रोग्राम महिलाओं का होता है ग्रामीण महिलाओं के लिए उसमें दोनों महिलाएं होती हैं। ये कभी कभी प्रयोग के तौर पर होता है। बहरहाल आपकी ये बात हम लोगों ने अपने कार्यक्रम प्रमुख महोदय तक पहुंचा दी है, और देखिए अगर ऐसा आइंदा कुछ, कई बार ये भी होता है कि दिक्कतें होती हैं कि कौन उपलब्ध है कौन नहीं है, इस हिसाब से भी ऐसा करना पड़ता है, लेकिन आपकी सलाह पर हम लोग गौर करेंगे। और ये बात भी ध्यान देना है कि अगर मेल फीमेल भी हैं तो प्रोग्राम रुचिकर हो, ये इम्पोर्टेंट है,
1: सही
0: वरना
1: बात है।
0: इस कार्यक्रम को भी हम लोग कभी दो मेल ही किया करते थे, एक्सप्रेस तो अभी हो गया
1: जी,
0: है।
1: तो इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अगला मेल आज का है जीके परमार का, गांधीनगर गुजरात से।
0: अच्छा ये नए नए नाम आ जा रहे
1: हाँ, नए
0: हैं।
1: नए नाम दिख रहे हैं। आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। वाराणसी वाइब्स फेसबुक लाइव शो में अलग अलग विषय पर श्रोताओं का प्रतिभाव जान सकते हैं। मैं हर रोज ये कार्यक्रम सुनता हूँ। अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं, वो सभी सुनते हैं। श्रोताओं की फरमाइश पर हिंदी फिल्मों के गाने सुनकर दिल खुश हो जाता है।
0: बिल्कुल आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े और प्रोग्राम में प्रतिभाग करते हैं, भले ही वो सोशल मीडिया के जरिए क्यों न हो, तो हमें अच्छा लगता है कि आप जैसे दूर दराज के श्रोताओं तक हमारे प्रोग्राम पहुंच रहे हैं और आप हमारे कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं। इसी प्रकार अपना जुड़ाव बनाए रखिए और बाकी प्रोग्राम भी सुनिए और बताइए कि वो प्रोग्राम आपको कैसे लगते हैं।
1: जी, और अरुण जी, ये जो नए नए प्रोग्राम शुरू हुए हैं, इसका एक फायदा तो ये हुआ कि नए नए श्रोता जो है हमसे जुड़ रहे हैं इस
0: बिल्कुल वो
1: कार्यक्रम
0: झालर
1: में।
0: बत्ती जल गई है ना।
1: जी, तो अब देखते हैं कि अगला मेल किसका है। ये है ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, मुबारकपुर से, दिलशाद हुसैन और फातिमा सोकरा का।
0: और ये बहुत ऊंचे हमारे श्रोता हैं, ऊंची
1: जी,
0: तकिया वाले,
1: अब देखते हैं आज
0: नियमित
1: इनके
0: श्रोता
1: मेल
0: हैं।
1: से
0: जी
1: हमें जानकारी में कितना इजाफा होता है।
0: हाँ मालूमात में।
1: जी जी लिखते हैं, मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं
0: हाँ ये
1: होता।
0: पहली लाइन जो है सना जी के लिए है, उनकी मुस्कान जो है बड़ी मकबूल हो रही है। मुस्कान की आवाज नहीं होती लेकिन जो इनकी हंसी है उसकी तो श्रोताओं में चर्चा है।
1: दोस्त तो मिल जाते हैं हर रास्ते पे, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। ये
0: ये भी
1: आपके
0: आपके
1: लिए है,
0: लिए
1: ये
0: कहा
1: आपके
0: गया है।
1: लिए है।
0: अब ये फैसला हम लोग दिलशाद जी पर छोड़ रहे
1: हाँ,
0: हैं।
1: अगली बार आप मेल में ये जरूर लिखिएगा
0: कौन सी लाइन किसके लिए है?
1: किसके लिए है। कार्यक्रमों के बारे में लिखते हैं कि दिनांक 8 जून को कार्यक्रम बनारस बीट्स के अंतर्गत प्रसारित आज आकाशवाणी ने पूरे कर लिए हैं अपने 90 साल, और ये 90 साल हैं बेमिसाल। पर श्रोताओं के विचार विमर्श सना सलीम द्वारा सुना, रेडियो एक ऐसा जादुई माध्यम है जो केवल आवाज और संगीत के जरिए लोगों के दिलों को जोड़ता है। मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त है और मेरा पहला प्यार है।
0: जी
1: जब चारों ओर सन्नाटा हो या आप अकेले हो, तो रेडियो की आवाज उस सन्नाटे को एक खूबसूरत महफिल में बदल देती है। ये एक ऐसा दोस्त है जो कभी शिकायत नहीं करता, कभी बहस नहीं करता, और हमेशा आपकी पसंद का संगीत या
0: इसी भाषा और लहजे पर हम कहते हैं कि ये सना जी के लिए स्क्रिप्ट हो जा रही है, या फिर इन्होंने आपका ही प्रोग्राम सुन करके ये
1: हो
0: बातें
1: सकता
0: लिखी
1: है।
0: हैं।
1: हो सकता है।

0: चाहे रसोई में काम करती माँ हो, बहन हो, रात में पढ़ाई करता छात्र हो, या हाईवे पर ट्रक चलाता कोई ड्राइवर हो, रेडियो सबका एक समान दोस्त बनकर उनका अकेलापन दूर करता है।
1: बहुत अच्छा, जब श्रोता भी इतनी अच्छी बातें करते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है कि कुछ आज के दौर में भी है जो लोग भाषा, संस्कृति, और निसंदेह सना जी ये मानिए कि जो भी जो कृत्रिमता आजकल ले खा गया, चैट जीपीटी, एआई के जरिए जो कविताएं, कहानियां तक लिखी जा रही हैं, लेकिन जो दिल से बात लिखी जाती है वो पता चल जाती है और मालूमात में इजाफा भी हो ही जाता है।
0: जी, उसी दिन के लिए इन्होंने लिखा है कि 90 साल बेमिसाल आशुतोष शास्त्री और सना सलीम द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम सुना। आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा में 64 साल की लंबी हिस्सेदारी आकाशवाणी वाराणसी केंद्र की है। वाराणसी केंद्र की स्थापना 28 अक्टूबर 1962 को हुई और FM विविध भारती का प्रसारण आरंभ साल 1993 में वसंत पंचमी पर हुआ। दिनांक 21 जून को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद, अरुण सर और सना सलीम द्वारा प्रस्तुत सुना। अपने ईमेल उत्तर सुनकर दिलशाद हो गया।
1: बिल्कुल, आप जैसे श्रोताओं से ही ये जो 90 साल हैं वो बेमिसाल हमारे बने हुए हैं और ये साथ बना रहे, और आप ये जरूर कहेंगे श्रोताओं से कि हर हफ्ते हर किसी का मेल शामिल कर पाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, फिर भी इंतजार किया करें और उसी लगाव के साथ प्रोग्राम से जुड़े रहा करें।
0: जी, 21 जून के लिए ही इन्होंने लिखा है कि लोक रंग अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना, बार बार फरमाइश करते रहे पर हमारी पसंद का गीत बजा पर हमारा नाम शामिल नहीं हुआ।
1: बिल्कुल, हमें लग रहा है कि ऐसा हुआ नहीं होगा, क्योंकि लोक रंग में कभी भी नाम नहीं बचते हैं। कई बार ये होता है कि किन्हीं कारणों से श्रोता अपना नाम स्वयं सुन नहीं पाते हैं, या दूसरी चीज ये हो सकती है कि कहीं और नंबर पर वो आपका मैसेज डिलीवर हुआ हो या हम तक पहुंचा ना हो, ये भी संभव होता है सर्वर या टेक्निकल रीजन से, इंटरनेट वगैरह के कारण। कई बार कुछ श्रोताओं के मैसेज जो शुरू में भी भेजे हुए होते हैं वो समय के अंदर तक नहीं आ पाते हैं।
0: जी, आगे लिखते हैं कि 22 जून को आपके केंद्र से प्रसारित सना द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सुना, श्रोताओं को बहुत सारी नसीहत आमोज बातें बताई, इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी को बधाई।
1: हाँ, आमोज सुन करके तो सना खामोश हो गई। बहरहाल, उनकी जानिब से हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं तहे दिल से, और यूं ही अपने खत हम तक भेजते रहिएगा मेल के जरिए, और आप अच्छी हिंदी लिख रहे हैं इसके लिए मुबारकबाद खास तौर से दिलशाद जी।
0: जी, इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अगला मेल है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान का। लिखते हैं, आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त अरुण पांडे और सना सलीम को प्यार भरा सलाम। अर्ज है,
1: ये अच्छा है कि अब थोड़ा सा तसल्ली हो गई कि सना जी ही रहेंगी, वरना कई बार संगनी और साथनी लोग लिखने लगते हैं।
0: जी, जिसने अदा सीख ली गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएगी साजिशें जमाने की।
1: ये पता नहीं किसके लिए है,
0: ये भी आप अगली बार बताइएगा कि किसके लिए है।
1: लेकिन बात आपने अच्छी कही है कि हमें हर स्थिति में मुस्कुराते हुए परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और आगे का रास्ता निकालने की कोशिश हर सूरत में करनी चाहिए।
0: जी, लिखते हैं कि 14 जून का PKLD मुझे बहुत पसंद आया। जब अरुण सर और सना इस शो को करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कार्यक्रम का समय कब समाप्त।
1: उन्होंने सना जी लिखा है।
0: सना जी की हंसी और अरुण जी आपका बोलने का लहजा मुझे टीवी में DTH से दूर होने ही नहीं देता।
1: अच्छा, यानी आप हमारे प्रोग्राम DTH पर सुनते हैं, तो वहाँ तो क्वालिटी भी अच्छी मिलती होगी। हम लोगों की कोशिश तो होती है कि प्रोग्राम हमारे सारे के सारे अच्छे हों, जो आपको बांधे रखें और आप बिल्कुल ही हमारे माध्यम से दूर न हो।
0: जी, आगे लिखते हैं कि 16 जून का अंजना झा ने संदेशों पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस बहुत ही सुंदर किया था, उनकी आवाज मीठी और तलफ्फुज साफ है।
1: जी, बहुत पुरानी हमारे यहाँ वो उद्घोषिका हैं और उनके प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं ये जानकर उन्हें अच्छा लगेगा।
0: 2 जून का शुचि उपाध्याय ने सुहाने तराने में गीतों से संबंधित अच्छी जानकारी दी। उसी दिन झंकार में राज कपूर की फिल्मों के बेहतरीन गीत बजाए गए और 2 जून को ही संदेशों पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में मोहतरमा ने खूबसूरत नगमों को चुना था। तो ये मोहतरमा कौन थी?
1: ये जब वो जान जाएंगी, क्योंकि उनका ये खास नाम इन्होंने लिखा है, तो जब ये प्रोग्राम सुनेंगी तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि तारीफ सिर्फ उन्हीं के लिए आई है।
0: जी, 3 जून का झंकार की खासियत थी कि सदाबहार गीत बजाए गए, साथ ही गीतकार, संगीतकार और गायक के नाम बताए गए। और उसी दिन मेल पर बेस्ड फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अंजना झा ने बहुत ही सुंदर किया था। 7 जून का आरोग्यम में डॉक्टर रजा त्रिपाठी ने थायराइड से जुड़ी समस्याओं पर उपयोगी और लाभप्रद जानकारी दी। शेष अगले मेल में।
1: बहुत बढ़िया, आपने बड़े तफसील से तमाम प्रोग्राम का जिक्र किया और तिथिवार प्रोग्राम आपने सुने। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। यूं ही अपने मेल हमें भेजते रहिए, आपके मेल का इंतजार।

0: ये अगला मेल है अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 पहाड़िया वाराणसी से। भेजने वाले हैं हमारे नियमित श्रोता अनिल कुमार गुप्ता गोंड और रमा गुप्ता गोंड। लिखते हैं, मॉनसून सत्र में सुहाने मौसम का आनंद लेते हुए हम आकाशवाणी वाराणसी के दोनों ही चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रम को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मन में खुशी होती है।
1: हमें भी खुशी होती है। अच्छा, एक चीज है सना जी की, आज के
0: जी
1: दौर में कौन इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखता है। पत्र लिखने का दौर खत्म हो गया, कविता कहानी साहित्य हर कोई लिखता नहीं है और उस सिंफ में हर कोई माहिर हो ये
0: सही
1: अपेक्षित भी
0: बात
1: नहीं
0: है,
1: है। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम के जरिए श्रोता 20-25-30 लाइन हिंदी लिख
0: लिख
1: रहे
0: रहे
1: हैं,
0: हैं।
1: ये काबिले तारीफ बात है।
0: जी, आगे लिखते हैं अनिल जी कि इधर कुछ दिनों से आनंद और खुशी का प्रतिशत कुछ कम हो गया है। कारण क्या हो सकता है?
1: क्या हो
0: जहां
1: सकता है?
0: हम कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं।
1: कुछ करते सुनते हुए भी हम महसूस ही करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सुन ही नहीं पाते, तो हम महसूस क्या करेंगे?
0: सही बात है। विगत पिछले कई महीनों से बार बार प्रसारण का बाधित होना आकाशवाणी वाराणसी के प्रति लगाव और प्रेम को कम करने का प्रयास है क्या?
1: नहीं, हमारी ओर से ऐसा कोई प्रयास नहीं
0: जी
1: है। ये जरूर है कि आजकल हमारा प्रसारण इंटरनेट और तकनीकी माध्यमों पर, मौसम की अच्छाई पर इतना निर्भर हो गया है, मीडियम वेव के मामले में खास तौर से,
0: जी
1: कि मीडियम वेव शॉर्ट वेव के प्रसारण इसीलिए FM का प्रादुर्भाव हुआ कि वहां पर मौसम का और आसपास अगर इमारतें हैं तो इन चीजों का प्रभाव फ्रिक्वेंसी पर पड़ता है। इसलिए FM आया कि आपको साफ स्पष्ट आवाज सुनाई दे। और अब तो मोबाइल और इंटरनेट का युग है, ऐसे में जहां थोड़ा सा तकनीकी व्यवस्था यानी इंटरनेट वगैरह मुकम्मल हो, सिग्नल अच्छे हो, तो प्रसारण जरूर अच्छा मिलता है। ये जानिए कि हम लोग आपकी हर बात, इस तरह की चीजें प्रोग्राम के दौरान भी श्रोता लिखते हैं देश भर से, वो हम लोग तकनीकी अनुभाग तक पहुंचा देते हैं।
0: जी, हमारा विनम्र निवेदन है कि प्रसार भारती को अवगत कराया जाए, क्योंकि वाराणसी का आकाशवाणी केंद्र एक धार्मिक नगरी, संस्कृति और परंपरा और संगीत और साहित्य से लबालब भरा हुआ
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल, वाराणसी की अहमियत, काशी की जो परंपरा है, यहाँ की जो विभूतियां हैं जिनका देश दुनिया में खासतौर से कला साहित्य में, भाषा में, संगीत में बड़ा योगदान रहा है, और आज भी हमारे यहाँ के तमाम कलाकार हैं जो दुनिया के कोने कोने में जाकर के गीत संगीत साहित्य की प्रस्तुतियां देते हैं। तो निसंदेह आपने सही कहा, काशी की अहमियत सदियों से है और आज भी है और आइंदा वक्त में भी रहेगी। आपकी बातों को हम लोग जो जहाँ उपयुक्त स्थान तक जरूर पहुंचा रहे हैं।
0: ये मेल अनिल जी का इसी पे बेस्ड ही है इस बार का। अगर प्रसारण की गुणवत्ता अपने मानकों पर खरी ना उतरे, बार बार बाधित हो, हर बार मौसम की ही अपनी ढाल बनाया जाए, कहाँ तक उचित है? मेरा प्रसार भारती से करबद्ध निवेदन है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हम सभी वर्गों के लिए प्रसारित कार्यक्रम को बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं। वो ध्यान उत्पन्न होता है तो वो बातें जो मनोरंजन करती हैं या कोई ज्ञानवर्धक संदेश देती हैं, कानूनी सलाह हो या किसानों को कोई नई तकनीक की जानकारी देनी हो या किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति या खिलाड़ी का साक्षात्कार हो, अगर प्रसारण की गुणवत्ता सही नहीं होगी तो क्या हम अपने प्रयास में अपने आप को सफल मानेंगे?
1: ये जानिए कि इस प्रसारण क्षेत्र में भी, वो चाहे टेलीविजन हो या रेडियो हो, सुधार निरंतर होते रहता है। तकनीक का अर्थ ही है कि नए नए उपकरण, नई नई सुविधाएं उसमें आती रहती हैं। तो उम्मीद करें कि ऐसा कुछ सुधार जरूर रेडियो प्रसारण, FM प्रसारण के क्षेत्र में भी होगा कि आपको बेहतर गुणवत्ता मिलेगी। आपकी बातों पर हम लोग गंभीरता से गौर कर रहे हैं, आपने हमें मेल भेजा, बहुत शुक्रिया आपका। यूं ही लिखते रहिए और अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहिए।
0: जी, और आज का ये आखिरी मेल हम शामिल कर रहे हैं, हमारे नियमित श्रोता ही हैं, जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का।
1: जी
0: शुक्र है कि इन्होंने बधाई से अपनी मेल की शुरुआत की है। लिखते हैं, 15 मई को अंजना झा द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो व्हाट्सएप पर आधारित था, सुना, बहुत प्यारा लगा। बहुत मधुर गीतों को सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। अच्छी प्रस्तुति के लिए अंजना जी को बहुत बहुत बधाई। उसी दिन शिखा श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत एक ही कलाकार में माधुरी दीक्षित पर सुना, उनकी स्क्रिप्ट बहुत शानदार थी, गीतों का चयन भी मनमोहक था, इसके लिए शिखा श्रीवास्तव जी को दिल से धन्यवाद। 16 मई को पूजा सिंह द्वारा प्रस्तुत गीतांजलि सुना, दिल को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। माँ पर गीत भी बहुत मधुर थे।
1: अच्छा, पूजा जी का जिक्र प्रोग्राम में बहुत समय बाद आया है।
0: अच्छी प्रस्तुति के लिए पूजा को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो आपकी बधाई इन तमाम प्रोग्राम के लिए, शिखा श्रीवास्तव, पूजा सिंह और बाकी जिन हमारे RJs का और साथियों का आपने जिक्र किया, उन तक पहुंच रही है।
0: जी, और उसी दिन 19 मई के गुड मॉर्निंग बनारस की भी प्रस्तुति इनकी, पूजा जी की, इनको पसंद आई थी। आगे लिखते हैं कि 24 मई को सना सलीम द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस और बनारस बीट सुना, अच्छी जानकारी मिली। सना की प्रस्तुति बहुत लाजवाब होती
1: एज
0: है।
1: यूजुअल, वो

0: होती होती है जी।
1: उनकी प्रस्तुति को बहुत मन से सुनता हूँ, अच्छी शानदार प्रस्तुति के लिए सना को दिल से धन्यवाद, शुक्रिया आपका। 24 मई को सना और अरुण भैया द्वारा प्रस्तुत पत्र के लिए धन्यवाद सना।
0: अच्छा, आप ये वही श्रोता है जिन्हें पिछली बार हमने कहा था।
1: जी, आप लोगों की प्रस्तुति बहुत शानदार होती है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई।
0: हाँ इंशाल्लाह, ये जोड़ी बहुत सारे लोग कहते हैं, अब हम लोग को देखिए बहुत सारे, जब दो तीन चार बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते भी हैं।
1: ये भी बात सही है। और आखिर में इन्होंने लिखा है कि 25 मई को अंजू तिवारी द्वारा प्रस्तुत झंकार जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को समर्पित था, बहुत अच्छी जानकारी के साथ साथ बहुत मधुर गीतों का समावेश किया था, सुनकर अच्छा लगा।
0: बिल्कुल, अंजू जी की ये खासियत है कि वो अपने लिए अवसर बना लेती हैं और आरजे जो हमारे हैं जिनके लिए तो अवसर बने बनाए हुए हैं, जैसा हमने कहा कि लाइट जला करके अवसर बनाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे बीच के लोग हैं जो बहुत तबीयत से प्रोग्राम करते हैं, उनमें अंजू जी भी हैं। जब भी कोई ऐसा मौका अवसर आता है तो वो मान न मान अपनी बात कही देती हैं और अच्छा बोलती हैं। बहुत अच्छा लगेगा उन्हें कि आपकी बधाई उन तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंच रही है।
1: इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही मेल हमें करते रहिए हर हफ्ते हमारी ईमेल आईडी पर pkldairvaranasi@gmail.com पर।
0: आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा और हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए अरुण पांडे
1: और सना सलीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार। कुछ और कहने का मन था क्या वहाँ पर चलते चलते? तब फिर हम लोग चलते हैं श्रोताओं, फिर आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंग। लीजिए सुनिए आज की फिल्म से ये गाना। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रवण, आवाजें हैं अनुराधा पौटवाल और कुमार सानू की।

अभी आप सुन रहे थे आज की फिल्म से ये गीत। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे नदीम श्रवण। आवाजें थीं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। लीजिए सुनिए फिल्म जो जीता वही सिकंदर। फिल्म से गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं जतिन ललित, आवाजें हैं उदित नारायण और साधना सरगम की।

अभी आप सुन रहे थे जो जीता वही सिकंदर फिल्म से ये गीत। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे जतिन ललित, आवाजें थी उदित नारायण और साधना सरगम की। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं बेगम अख्तर। इनके स्वर में सुनिए गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार थी बेगम अख्तर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत।

0: मुकदमा ऑन आकाशवाणी।
1: प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनते हैं पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही है जया सिन्हा।
2: नमस्कार। कभी एले पैदे की मोहब्बत बने, कभी मिनले की मासूमियत, कभी रंग दे बसंती का जुनून दिखाया, तो कभी थ्री इडियट्स का सपना। तनुमेद मनु के मनु से लेकर रॉकेट्री के नंबी नारायणन और शैतान के रहस्यमी किरदार तक और उसके बाद धुरंधर, इनका सफर मानो हर दौर में एक नई कहानी लिखता रहा है। भारतीय सिनेमा के बहुमुखी कलाकार, अभिनेता, लेखक, निर्देशक आर माधवन को वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। स्वागत करते हैं आर माधवन का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल यही कि पद्मश्री मिला, काफी बधाइयां आई, लेकिन सबसे पहला विचार क्या आया? और आपने कहा कि ये सपनों से परे एक सम्मान आपको मिला है, ऐसा क्या है जो इस सम्मान को इतना विशेष, इतना खास बनाता है?
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी, और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम रेडी फॉर इट।
2: ये सम्मान एक किरदार के लिए, एक फिल्म के लिए नहीं है, ये आपके पूरे सफर के लिए है। तो जब ये खबर मिली तो ऐसे में कोई किरदार याद आया कि ये किरदार मेरा सच में बेहद खास था? और साथ ही जिस जिम्मेदारी की बात की आपने, तो अब असर आया है कुछ जब फिल्म चुनाव करते हैं या कुछ सेलेक्ट करते हैं कि अब मैं पद्मश्री, थोड़ा सा अच्छे से मुझे सेलेक्ट करना होगा क्योंकि एक जिम्मेदारी है मुझे?
3: बहुत अच्छा सवाल है ये। नहीं, क्यों है कि सबसे पहले तो मुझे इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार की जो जिम्मेदारी है वो सबसे सर्वोत्तम आ जाता है जब मैं कहानी सिलेक्ट करता हूँ। तो एज अ एक्टर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे पर्सनालिटी के साथ मैच करता है, मेरे बॉडी ऑफ वर्क के साथ मैच करता है। और फिर एक और फैक्टर हो जाता है कि क्या एक पद्मश्री को ऐसा एक्टिंग करना चाहिए, पर दैट्स वेरी लेट इन दी प्रोसेस। जहां तक सम्मान का सवाल है, ये सिर्फ जैसे कि आपने कहा बहुत फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ ये सम्मान है, चाहे वो तमिल हो जाए या इंग्लिश हो जाए या हिंदी। मैं सिर्फ बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड समाज की और मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती है, जो भी आप करते आ रहे हो उससे अच्छा ही करना होगा।

0: माधवन की एक खासियत है कि हर एक दशक में एक किरदार इनका सुपरहिट हुआ, थ्री इडियट्स एंड फिर आपने धुरंधर, वनराज। ये जो हर कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि कैसे आप इतना रेलेवेंट रहने, हर दशक पीढ़ी को आप जोड़ा अपने से, क्या इसके पीछे का सीक्रेट क्या है?
1: यहाँ सीक्रेट तो है ही ना, देखिए चाहे वो नंबे नारायण हो जाए या फिर आप धुरंधरी ले लीजिए जहाँ पे अजय दोवाल साहब का किरदार है, उस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो संजय दत्त साहब हैं, अर्जुन रामपाल जी हैं, अपने रणवीर सिंह हैं, अक्षय खन्ना जी, ये लोग जो असली किरदार हैं उसकी तरह दिखते तो थे, थोड़ी बहुत सेम्बलेंस थी। पर अगर आप फिल्म के डायरेक्टर होते और अगर आपसे कहा जाता है कि अजय दोवाल के लिए हम माधवन को कास्ट करें, जाहिर है कि आप मना कर देती, क्योंकि कोई सेम्बलेंस नहीं है। फिजिकल रिजेंबलेंस होगी तो आप एग्री करोगे ना।
0: ये माधवन की खासियत है ना, हर किरदार में
1: वो विजन है आदित्य धर की। और मैं जो कहने की मतलब ये है कि चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो मुकेश या आदित्य धर, उनका एक विजन होता है कि हाँ माधवन ये कर पाएंगे। जब उनको कॉन्फिडेंस होता है और वो ऑफर करते हैं तभी मैं ये रोल कर पाऊंगा, अगर ये रोल मेरे पास आता ही नहीं तो मैं करूंगा कैसे। तो चाहे कोई भी रोल हो जाए, वो एक जो क्रिएटिव टीम है, जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो लोग, वनराज ले लीजिए इन शैतान, बहुत मुश्किल है ना कि माधवन जैसे कैरेक्टर को कोई ये नेगेटिव कैरेक्टर दे, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कोई नेगेटिव कैरेक्टर इस खतरनाक लेवल पे किया ही नहीं था।
0: और आपने एक्सेप्ट किया ये भी,
1: मैं वही कह रहा हूँ, जो मेरे पास मौका आता है वो निडर होकर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो मेरी खासियत है बस। बट ये मौका मिलना ऊपर वाले की देना।
0: किस तरह से आपको लगता है कि इस समय जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज हैं, कंटेंट है, छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, ओटीटी, आपको लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन समय है? पिछले एक दशक में आप देखते हैं एक बड़ा बदलाव मिला है।
1: जी हाँ, ओटीटी की वजह से और रील्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से हमें ऐसे नए स्टार्स मिले हैं जो पहले हमें सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से आया करते थे, उनके लिए हमें वेट करना पड़ता था कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई किरदार आए जिसको हम स्टार मानने लगे। पर ओटीटी की वजह से इतने कमाल के एक्टर्स आए हैं, इतने कमाल के टैलेंट हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड में ले लीजिए, हाल ही में रिलीज हुए दो बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म के एक्चुअल डायरेक्टर जो है वो यूट्यूब के डायरेक्टर्स हैं, तो वहां के रॉयल्टी नहीं कर पा रहे, जो चीज जो आजकल के यंग जनरेशन जो है वो बड़ी बड़ी फिल्में बनाने लगे। इट इज अ फैबुलस मूव, कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है, एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है।
0: आप एफटीआई से जुड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं युवाओं के लिए, क्योंकि एक ऑरेंज इकोनॉमी का उदय इस वक्त हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विजन रहा इंडस्ट्री को, अगर हम बात करें सब्सिडीज की बात करें या फिर हम बात करें ऐतिहासिक आयोजन हुआ वेव समिट का, किस तरह से देखते हैं ये जो एक सर्ज है ऑरेंज इकोनॉमी, उस लिहाज से भारतीय सिनेमा को आप कैसे देखा?
1: मुझे लगता है कि हॉलीवुड जो है वो हमेशा बहुत ही दूरदर्शक था, जो वो देश की खासियत थी, वो होने वाली जो संभावना है, जो होने वाली क्षमता है, उसके बारे में फिल्म बनाया करता था। और इस वजह से अगर हमें लगता है कि इस धरती पे कोई एलियन का अटैक हो जाए तो सिर्फ एक अमेरिकन ही जाके हमें बचा सकता है, या उनके पास ये टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम बच सकते हैं, तो उन्होंने वो पहले से प्रोजेक्ट करना शुरू किया, एक सॉफ्ट पावर को यूज करना शुरू किया। मुझे लगता है कि हम इस इंडस्ट्री में अभी तक अपना सॉफ्ट पावर और अपना जो हक है जो हमने आज तक बाकी फील्ड्स में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो साइंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, हर्बल मेडिसिन हो, योगा हो, हर चीज में जो हमने अपने आप को मशहूर साबित किया है पूरे दुनिया में, उस जगह को हमने अभी तक क्लेम नहीं किया एज फार एज आर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज कंसर्न। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है, एक एकम्प्लिश्ड इंडिया की, एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे किरदारों में कभी हम पहले से ही जयशंकर साहब जैसे कोई किरदार को नहीं दिखा पाए। वो आए, उन्होंने एस्टैब्लिश किया, वो पूरे दुनिया में हमारे जिस तरीके से वो प्रेस वालों के साथ डील करते हैं, और वो किरदार क्यों नहीं हम पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में सोच पाए। मैं इसकी छोटी छोटी जो है बातें कर रहा हूँ। सो आई थिंक जो प्रधानमंत्री जी और ये जो नया इनका एंडेवर है बहुत ही जरूरी है, एंड जब आप ये करोगे होगा ये कि हमारे यंग जनरेशन जो है उनके लिए जो नंबर ऑफ हीरोज हैं, जो नंबर ऑफ आइडल्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और बहुत सारे फील्ड में हमें इन्वॉल्व होने का प्रोत्साहन मिलेगा।
0: एक ऐसी फिल्म है जो आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव रही, रॉकेटरी द नाइट इफेक्ट, कितना चुनौतीपूर्ण था निर्देशन की कमान संभालना, और ये फिल्म आपके लिए कितनी एक लाइफ चेंजिंग थी। साथ में आपने फिल्म बनाई लेकिन आपके अंदर क्या कुछ बदल दिया है?
1: बहुत अच्छा सवाल। इस फिल्म ने मुझे जो कुछ सिखाया है वो मैं सिर्फ फिल्मों में नहीं, मैंने अपने निजी जिंदगी में भी अपनाया है, क्योंकि इसके सारे जो मार्गदर्शक थे वो है मिस्टर नंबे नारायण जी, पद्म भूषण है, और उनकी कहानी इतनी कमाल की थी, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं था और वो खुद उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे। ये हमारी खासियत है इंडियन की ना, जो अपनी अचीवमेंट के बारे में बात ही नहीं करना उनको ठीक लगता है, वो अपने दर्दनाक कहानी के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। उनसे जो मुझे 5 साल सीखने को मिला और जैसे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि जब आपका मन वाकई में किसी चीज पे लगता है, पहले आपको एक सपना आता है, फिर उसके बाद दूसरी बार जब आता है तो वो आपके लिए एक पैशन बन जाता है, और तीसरी बार तो एकदम आप उसके पीछे ही लग जाते हो और वो आपके लिए एक ऑब्सेशन बन जाता है। रॉकेटरी मेरे लिए एक ऑब्सेशन बन गया था। मैंने ना आए दिखाया बाएं, मुझे लगा था कि ये कहानी बता

0: पे बैठ जाता है ना, तो फिर आप सामने में जितने चैलेंजेस सब छोटे लगने लगते हैं। बस आप एवरी डे काउंट करते हो, एवरी मिनट काउंट करते हो कि मुझे आगे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना कि हम कितने दूर जाने वाले हैं और क्या हासिल करना चाहता हूँ, मुझे बस ये देखना है कि आज मुझे क्या करना है और कितनी अच्छी तरीके से मैं कर पाऊंगा, चाहे वो एक शॉट हो जाए, चाहे वो एक सीन हो जाए, चाहे वो किसी को ब्रीफ करना हो जाए। मैं पूरे दिल से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज करता था, फिर मैं नतीजा के बारे में सोचता था।
1: आपने बात की सॉफ्ट पावर की, आज हम देख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा को एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सिनेमा आज दुनिया के कोने कोने में भारतीय संस्कृति, भारतीय कहानियां, भारतीय सितारों को लेकर जाती है और जोड़ती है। सिनेमा में वो ताकत है जो हमने देखा। आपकी ये फिल्म नामी की बात करें, राष्ट्र निर्माण को लेकर भी सिनेमा का एक बेहद बहुत ही सशक्त रोल हो सकता है, उस लिहाज से भी ये फिल्म बहुत ही खास रही। किस तरह सकते हैं युवाओं पर इसका इफेक्ट?
0: नम्मी नारायण साहब जिस इलाके में रहते थे वहां पे वो पहले से ही रहते आ रहे हैं पिछले 40 साल से। एक हीरो थे पहले, फिर सबके आंखों के वो तारे बन गए, फिर अचानक उन्हें देशद्रोही का करार दिया गया, जिसके वजह से लोग उनके यहाँ आने नहीं जाना चाहते थे, दिवाली पे नहीं आते थे, उनको मंदिरों में अलाउड नहीं किया जाता था, और फिर इस फिल्म के बाद वो एक वापस सुपरस्टार बन गए हैं। और आज जब भी हम कोई कंपटीशन की बात करते हैं तो देखिए ना, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितने सारे कंपटीशन शुरू हो गए। आजकल यंगस्टर्स स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आज भी उनका जो इंजन आज तक फेल नहीं हुआ है, इट्स अ हाईली मोटिवेटिंग फैक्टर। और स्पेस रॉकेटरी के पब्लिसिटी के दौरान मैंने एक बात कही थी, पहले कहा जाता था कि जिस इंसान के पास हथियार और घोड़े हों तो वो राज कर सकता है पूरे दुनिया पे, फिर कहा जाता था कि जिसके पास शिप्स हो, जो समुन्द्र को अपने काबू में कर ले, वो दुनिया पे राज करेगा, फिर कहा जाता था कि जिनके पास एयरफोर्स हो और आसमान पर जो राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। आज ऐसा मौका आ गया है कि स्पेस के ऊपर जिसका राज है, जिसका कंट्रोल है, वही पूरे दुनिया पर राज करेगा, और वो सही है। और उस दौड़ में हम कभी पीछे नहीं रहना चाहते, इसी वजह से हमारे यंगस्टर्स को जो प्रोत्साहन मिलती है, व्हेन यू सी पीपल लाइक नम्मी नारायण एंड ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट।
1: कितने किरदार किए आपने, हर किरदार में एक अलग रंग माधवन का हमें देखने को मिलता है, ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि आपकी अपनी एक प्रिपरेशन है, यू नो कि मैं इस किरदार को इस तरह से देखूं, एक विजन है डायरेक्टर का, लेकिन ये मेरा विजन, क्योंकि आज आप उस मुकाम पर हैं कि आपके पास वो एक लिबर्टी है कि मैं अपने किरदार चूज कर सकता हूं, किस तरह से उसे अपनी बात कहनी है, क्योंकि कहानी कहने का अंदाज आज बदल चुका है, तो वो मैडी इफेक्ट कहां से आता है और कैसे आता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लोगों ने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जो जिसके बारे में जवाब देना चाह रहा हूँ। जब भी कोई किरदार हमें मिलता है करने के लिए, चाहे वो फिक्शनल हो या रियल लाइफ पे बेस्ड हो, इतना तो तय है कि इस चेहरे में जो जेन्युइन एक्सप्रेशंस होते हैं वो लिमिटेड है। मैं कुछ 3-4 तरीके से हंस पाऊंगा जो मैं निजी जिंदगी में वाकई में हंसता हूँ, या मैं रो पाऊंगा जैसे निजी जिंदगी में, उसकी एक रियलिटी होती है और वो रियलिटी ही कैमरा में ट्रांसलेट होती है।
1: इतना तो मैं विश्वास नहीं करती, 3-4 एक्सप्रेशन है आपके पास
0: जो ओरिजिनल नहीं। एक होता है कि आपने किरदार निभाने के लिए अभिनय किया, और एक होता है कि आपने उस पे जान फूंक दी। जब आप जान फूंकते हो उसमें तो आपके जो एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड होते हैं, जो जेन्युइन होते हैं। तो हमें ये तय करना पड़ता है कि इस किरदार को प्ले करते समय कौन से सीन में वो जेन्युइन मैडी की एक्सप्रेशन डाल दिया जाए, ताकि वो रस जो है वो आपको लगे कि ये वाकई में ये इंसान जी रहा है। बाकी जगह मैं एक्टिंग कर सकता हूँ बाकी पूरे सीन में, पर मुझे वो चंद सीन या चंद शॉट्स पे मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें मैडी आधा वनराज को कैसे डालें, या आधा मैडी या माधव शास्त्री को कैसे ले आएं, ताकि वो जेन्युइननेस के साथ वो किरदार निकल जाए, तो लोगों को वो एहसास हो जाता है कि वो रियल है। आई थिंक दैट इज द आइडेंटिफाइंग कि वो कौन सा शॉट है, कौन सा सीन है जहां पे आपको मैडी बनना है, असली लाइफ मैडी बनना है, और कहां पे आपको किरदार बनना है, वो आई थिंक इज द टैलेंट दैट इज इंपॉर्टेंट दैट आई हैव।
1: ऐसा शुरू में हुआ कि मैडी इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया, या आपकी जो रोमांटिक हीरो या चॉकलेट बॉय हीरो थी वो इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई कि गंभीर किरदार के लिए लोग आपको, मतलब उसको गंभीरता से लेने में समय लगा ऑडियंस को या फिल्म इंडस्ट्री को, निर्माता निर्देशकों को?
0: नहीं, देखिए अगर आप मेरी फिल्मों की फिल्मोग्राफी हिंदी में देखेंगे तो पहला फिल्म था रहना है तेरे दिल में, उसके बाद दिल विल प्यार व्यार, के बाद रंग दे बसंती, फिर गुरु, फिर हो गया 3 इडियट्स, तनुवर्ड्स मनु, तो वो एक प्रोग्रेसर नहीं था। मुझे एक ही टाइप की फिल्में करने का मौका नहीं मिला, हालांकि मैंने सिर्फ एक फिल्म का सीक्वल किया विच इज तनुवर्ड्स मनु, पर अगर आप देखोगे तो सारे किरदार अलग है, विक्रम वेरा ले लीजिए, फिर साला खड़ूस, फिर रॉकेटरी, उसके बाद शैतान, फिर दे दे प्यार दे, फिर ओटीटी में जो मेरे किरदार हैं जो कि मैंने रेलवे मैन में की है, या ब्रीद में, तो सारे सीरियस ही रहे एक्चुअली। और मैं चाह रहा था कि कभी यार हल्का फुल्का रोल भी कर लूं, तो उसमें दे दे प्यार दे 2 में मुझे एक मौका मिला। उसके अलावा मुझे लगता है लोग गंभीर रोल में मुझे ज्यादा पसंद करते हैं।
1: सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है आपको पर्सनली, कि आज सेट पे गए हैं, आज इसमें करने में मजा आएगा, क्या आपको लगता है कि मुझे मजा आता है सबसे ज्यादा?
0: देखिए, ये सवाल का जवाब शायद वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर। ये मजा तब आता है जब पूरे सेट में ना सारे लोग एक ही फिल्म को बनाने में लगे हुए हैं,
1: क्राफ्ट
0: नहीं, सबकी नियत जो है वो उस एक फिल्म को बनाने की है। कभी ना लोग जुड़ जाते हैं,

0: अलग मकसद लेके, कि कभी किसी को यार फिल्म पैसों के लिए करनी है, कभी किसी को ये नाम के लिए करना होता है किसी को, पर जब एक सेट में सब कोई मिलकर एक ही किस्म की फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही आइडिया को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि एक दोस्ती सी छा जाती है सेट पे, एक वननेस बन जाता है, तो फिर आपको ना मजा आता, बहुत मजा आता सेट पे, चाहे वो धुरंधर हो जाए, चाहे वो रंगदी बसंती हो जाए, सबको पता था कि हमें करना क्या है, कोई अपनी और अपनी दिशा पे जो है ना कहानी को ना अपनी क्राफ्ट को खींचने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ये होता है अनफॉर्चुनेटली, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फिल्म एक ही नियत से नहीं बनी है। तो जब सबकी नियत सेम होती है, सब जुट के एक ही फिल्म बनाने होते हैं, तो उसका जो मजा है ना, दैट्स अनकंपेरेबल। अब हम अपने फैमिली से दूर रहते हैं, हम कई महीनों तक एक ही यूनिट के साथ रहते हैं, पर वो जो दूर रहने का जो दर्द है, वो अच्छे सेट में होने से वो वो दर्द दूर हो जाता है।
1: जब फिल्म को लेकर आपको लगता है अलग अलग किरदार जो सारे हम सब दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किए, एंड मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा एक लकी भी रहे या बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट रहे कि हर आपका किरदार एक कल्ट फिल्म के रूप में निकला। कैसे इतनी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा माधवन बनते चले गए?
0: जैसे कि मैंने कहा, ये किरदार मुझे ऑफर होना ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर हमें पता चलता कि कोई किरदार बन रहा है तो हम सामने से अप्रोच करें, अगर वो मौका होता तो मैं जरूर करता था, पर मैंने कभी की नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये किरदार बन रहे हैं। पर आपका जो सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है, वो इसलिए क्योंकि जो भी रोल हमें मिलता है करने के लिए उसे पूरे जी जान लगाकर करना ही मेरा काम, और मैं ये कभी सोच के नहीं चलता कि मेरा किरदार जो है पिक्चर के बाद लोगों को सबसे ज्यादा याद रहे। ये मेरे लिए एक्चुअली, अगर मैं ऐसा अप्रोच लेके चलूंगा तो ये मेरे लिए एक हार है, ये मेरी एक मैं कहूंगा कि ग्रीडी वाला एटीट्यूड होगा, जिसकी वजह से फिल्म को कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी एक्टर से आप पूछ लीजिए कि आप चाहते हो कि आपको इस फिल्म में बहुत नाम मिले या आपकी फिल्म को नाम मिले, तो हर एक एक्टर हमेशा कहेगा कि फिल्म को नाम मिलना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जब तक फिल्म चलेगी नहीं ना, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग भले ही आपकी मतलब इतनी प्रेस करें कि आपने बहुत कमाल की फिल्म की, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं चली, फिल्म नहीं चली, उससे किसी को कोई फायदा नहीं होता।
1: रिपीटिशन दोहराव से डर लगता है?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रेपिटेशन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स रिपीटेड बिकॉज इट इज गुड, बट द एटीट्यूड इज टू मेक श्योर दैट द फिल्म विंस। तो अगर किसी सीन में मेरा सीन नहीं है, हीरोइन का सीन है या किसी और का सीन है जहां पे वो हम पे हावी हो रहे हैं, तो एज एन एक्टर मेरे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आई शुड अलाउ देम टू बी दैट, टू पुट मी डाउन इन द सीन, टू मेक श्योर दैट द फिल्म वर्क्स। तो मैं इसी नियत के साथ सेट पे जाता हूँ, ऊपर वाले की दुआ से आज तक वो चलता आ रहा है मेरे लिए।
1: सबसे ज्यादा किरदार आपको कौन सा याद आता है, आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे से कुछ ले गया, ये तो यार मेरे में रह गया, ये मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा?
0: मेरे ख्याल से नंबी नारायण साहब की जो किरदार है वो धुरंधर, एक हॉर फिल्म अभी कर ही रहा हूँ जो रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है जीडी नायडू, वो हमारी इंडियन एडिसन के बारे में एक फिल्म है। तो ये सब रियल लाइफ कैरेक्टर कुछ ना कुछ मुझ में छोड़ जाते हैं।
1: धुरंधर की कामयाबी को लेकर जो हिस्टेरिया हुआ, या उसका एहसास कैसे है? भारतीय सिनेमा के लिए बहुत उल्लेखनीय है ये, किरदारों के लिए, सबके लिए, बॉक्स ऑफिस नंबर्स, क्योंकि कोविड के बाद जिस तरह से हम उभरने की कोशिश कर रहे थे, कितनी महत्वपूर्ण है ये फिल्म, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आपके लिए, एक एक किरदार को लेकर अभी तक जिस तरह से हिस्टेरिया है या लोकप्रियता है, हाउ इम्पोर्टेंट दिस फिल्म इज?
0: मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ और ये मानता भी आता रहा हूँ कि जब कोई फिल्म की रिसर्च सही होती है, जब उसके पीछे में सिर्फ पैसे कमाने की मकसद नहीं बल्कि एक कहानी को तहे दिल से कहने की जो इच्छा होती है ना, वो अगर सही रहे, उसका रिसर्च सही रहे, अगर आप दुनिया सही तरीके से बना पाओ, तो वो कभी ऑर्डिनरी फिल्म हो ही नहीं सकती। जहां तक धुरंधर का सवाल है, मुझे पता है कि हर एक इंसान, हर एक जो टेक्नीशियन है, हर एक एक्टर जो है, वो इतना इन्वॉल्व था फिल्म के साथ कि इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट द कैरेक्टर फ्रॉम द प्रोफेशनल, इट वॉज दैट वेरी गुड। इसमें हकीकत से जुड़ी हुई हर चीज है, एक प्रोग्रेसिव, एक एडवांस्ड और एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो अगर कहानी रहेगी तो लोग वाकई में देखेंगे। धुरंधर वॉज एग्जैक्टली दैट, और इसमें यंगस्टर्स को बहुत दिनों के बाद थिएटर में आके एक फिल्म को देखकर गर्व करने का महसूस हुआ। उनको पता चला कि हमारी जो सुरक्षा है, जो हम इतनी आसानी से हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि एक ही देश है जो एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए, इर्द गिर्द घूम के बाकी सब देशों में देख लीजिए, ये हो नहीं पा रहा है। सुरक्षा की जो है सवाल जो है सर्वोत्तम है सबके दिमाग में बाकी के देशों में। सो आई थिंक टू बी एबल टू पे ओमाज एंड शो रिस्पेक्ट टू दीज पीपल, ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है और लोगों ने भर भर के थिएटर में देखा।
1: रियल लाइफ हीरोज की आप बात कर रहे हैं, आप खुद रियल लाइफ हीरो भी रियल जिंदगी में निभा चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने पद्म में भी एक बदलाव देखा, पीपल्स पद्म हमारे पद्म बन चुके हैं, जो हमारे देश के गुमनाम नायकों, अनसुने नायकों को सम्मानित कर रहा है, किस तरह से देखते हैं?
0: ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जब कोई अपना काम बगैर किसी उम्मीद का करे, समाज के लिए जो भलाई है वो किसी उम्मीद के बगैर करे और दिल से करे, तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है, उसका असर ज्यादा होता है, और इन लोगों को सम्मानित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी एटीट्यूड को हम ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं। सबके सामने कोई भला करना या फिर उसका फोटो निकाल कर उसके लिए शय पाना, वो कुछ लोग करते हैं, चाहे वो भला करें तो अच्छी बात है, लेकिन वो शय पाने की भी इच्छा रखते हैं। पर ये जो पद्मा की जो है फिलॉसफी है, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा सोच इसमें गया है, और मुझे बड़ा गर्व

0: है कि इस सोच के साथ पद्म अवार्ड दिया जा रहा है आज के दिन।
1: आखिरी सवाल, किसी ने समुद्र के किनारे चिल्ला चिल्ला कर कहा कि दुनिया को पागलों की जरूरत है। क्या आप ये मानते हैं कितना पागलपन अभी भी मौजूद है 3 दशकों के बाद, इतने किरदारों के बाद?
0: मुझे लगता है मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अभी अभी तो शुरुआत ही है, क्योंकि ये पागलपन का मतलब ये है कि जो चीज पहले से चलती आ रही है उस पे हम लोग खुश होकर उसी चीज को फॉलो करने में, जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है और कभी कभार वो समाज के लिए सही नहीं होता। तो उस चीज को तोड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो किसी पागल के पास ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये पागलपन मुझ में अभी भी।
1: बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही रहें और मैडी लगातार हर नए किरदार के साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कुछ कलाकार हिट फिल्में देते हैं, कुछ किरदारों से याद रखे जाते हैं, लेकिन बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपनी पहचान बदलते हैं और फिर भी दर्शकों के दिलों में वही जगह बनाए रखते हैं। माधवन उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक है, एक कलाकार जिसने मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा भी दी और अब पद्मश्री के रूप में देश ने उनके योगदान को सलाम किया है। माधवन जी, इस विशेष बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप पीपल्स पद्म।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम रस माधुरी। लीजिए सुनिए सोर्भ फिल्म से ये गीत। गीतकार हैं संतोष आनंद, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने।

अभी आप सुन रहे थे शोर फिल्म से ये गीत। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे जतिन ललित, आवाजें थी उदित नारायण और साधना सरगम की। अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसमाधुरी। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म जाल से। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं एसडी वर्मन, गाया है हेमंत कुमार।

0: अभी आप सुन रहे थे जाल फिल्म से ये गीत। गीतकार थे साहिर लुधानवी। संगीत
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ।

0: लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया, क्योंकि एनसीपीआई मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
1: एनसीपीआई के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि एनडीए में एनसीपीआई अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन वो दो, एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे हैड टू बी गिविंग चांस, एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फील to run the house is their responsibility, but in our house it has become regular practice to disturb the house and not allow the house to run.
1: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज किया जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों, मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
4: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
5: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे।

0: माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
1: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए असर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और मजबूत होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है, जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता है। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
3: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन बूट के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयरज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल

0: के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of parliament beginning tomorrow, urges all political parties to ensure smooth functioning of the session. Center to develop over 160-kilometer long Rameshwar Paradeep Highway along Odisha coast to boost tourism and spiritual journeys. 11 people killed as torrential rain triggers landslides in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir. Flash floods following heavy rain claim 9 lives in Nagaland. U.S. military launches airstrikes targeting Iran's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps in retaliation of killing of American troops in Jordan. And in sports, football frenzy grips world as Argentina and Spain prepare for the final battle of FIFA World Cup tonight. And in men's cricket, host England set 388-run target for India in the third and final ODI at Lord's. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government today convened an all-party meeting in Parliament House next week. The meeting was chaired by Raksha Mantri Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of the Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
2: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed, that has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party.
3: Today the entire entire opposition, all parties have all walked out, all party meeting in protest because NCPI, which is an unrecognized party, these so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved.

0: night. French striker Kylian Mbappe has surpassed Lionel Messi's World Cup scoring record, taking his career tally to 22 goals and took the lead in the Golden Boot race. Meanwhile, several Indian cities, states including Kerala, Manipur, Mizoram and Meghalaya have declared holiday in schools and higher educational institutions for tomorrow after demands by students and political leaders. They cited the late night schedule of the finals and concerns over attendance and travel after the game. And in men's cricket, England have set a target of 388 runs for India in the series deciding third ODI at Lord's in London. Chasing the target, Shubman Gill led Indian side with 93 for no loss in 16 overs when reports last came in. Opting to bat, England scored 387 runs at the loss of 3 wickets in 50 overs. Players from both the team were wearing black armbands and observed a minute silence to honour the legendary West Indies all-rounder Sir Garfield Sobers, who recently passed away. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of Parliament beginning tomorrow, urges all political parties to ensure smooth functioning of the session. Centre to develop over 160-kilometre-long Rameshwar-Paradip Highway along Odisha coast to boost tourism and spiritual journeys. 11 people killed as torrential rain triggers landslides in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, flash floods following heavy rain claims 9 lives in Nagaland. U.S. military launches airstrikes targeting Iran's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps in retaliation of killing of American troops in Jordan. And in sports, football frenzy grips world as Argentina and Spain prepare for the final battle of FIFA World Cup tonight. And in men's cricket, hosts England set 388 runs target for India in the third and the final ODI at Lord's. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले जो कल से शुरू हो रहा है, कल कुल पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया। उसने सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो इजलास की कारकर्दगी के खुश उसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाएं। मरकज ओडिशा के साहिल पर सियाहत और रूहानी मकामात के सफर को फरोग देने के लिए 160 किलोमीटर से तवील रामेश्वर पारादीप शाहरा तामीर करेगा। जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से जमीनी तोदे खिसकने के हादसात में 11 अफराद हलाक हो गए। उधर नागालैंड में भी मूसलाधार बारिश के सबब अचानक सैलाब से 9 अफराद की जाने चली गई। अमरीकी फौज ने उर्दुन में अमरीकी फौजियों की हलाकत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में ईरान के पासदारा ने इनकलाब फौज पर फजाई हमले किए हैं। और खेलों में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप के फाइनल मैच का दुनिया भर में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और मर्दों के क्रिकेट में लॉर्ड्स में तीसरे और आखिरी ओडीआई में मेजबान इंग्लैंड ने भारत के लिए 388 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास कल से शुरू हो जाएगा, जो अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान बहुत से अहम बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे, जिन पर बहस मुबहसा होगा। मॉनसून इजलास से पहले हुकूमत ने आज पार्लियामेंट हाउस की एनेक्सी में एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ऐवान के सरबराह जगत प्रकाश नड्डा, पार्लियामानी उमूर के वजराए ममलकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी इस मीटिंग में शरीक हुए। अपना दल की रहनुमा अनुप्रिया पटेल, जेडीयू के रहनुमा संजय झा, टीडीपी के रहनुमा लवु श्रीकृष्ण देवरायलू, कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी रहनुमा धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट महुआ माझी और दीगर 40 सियासी पार्टियों के 50 से ज्यादा रहनुमा भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, ऑपोजिशन पार्टियों ने भारत की नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी की शमूलियत के मामले पर मीटिंग से अलामती वॉकआउट कर दिया। एनसीपीआई एक रजिस्टर्ड पार्टी है, जिसने हाल ही में मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में शिरकत की थी और तृणमूल कांग्रेस के कुछ बागी अरकान पार्लियामेंट ने इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। अलबत्ता ये ऑपोजिशन अरकान मुजाहरे के बाद मीटिंग में शरीक हो गए। मीटिंग के बाद नामनिगारों से बात करते हुए जनाब किरण रिजिजू ने सभी सियासी पार्टियों से जोर देकर कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी से जारी रहे और वो अहम मामलों पर तामीरी बहस मुबाहसा करें।

0: उन्होंने जोर देकर कहा कि बजाय रखना अंदाजी के एक बामाना बहस जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए लाजमी है।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: टीएमसी की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत सभी ओपोजिशन पार्टियों ने इस मीटिंग से वॉकआउट किया। उन्होंने ये इल्जाम भी आयद किया कि एनसीपीआई कोई तस्लीमशुदा पार्लियामानी पार्टी नहीं है। राज्यसभा में ओपोजिशन के नायब रहनुमा प्रमोद तिवारी ने एनसीपीआई को इस मीटिंग में मदऊ किए जाने के खिलाफ इस वॉकआउट को एक अलामती बायकॉट करार दिया। एनसीपीआई के रहनुमा सुदीप बंदोपाध्याय ने ओपोजिशन पार्टियों की स्कूल पार्टी मीटिंग के दौरान उनके एहतजाज पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि एनडीए में एनसीपीआई अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले पार्लियामेंट के कामकाज से मुतालिक मुशावरती कमेटी बीएसी की मीटिंग तलब की है। मीटिंग में हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने पार्लियामेंट इजलास के दौरान जेर गौर आने वाले कानून साजी और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब ओम बिरला ने तामीरी बहसो मुबाहसा, बामाना शिरकत और पार्लियामानी रिवायात की आला अकदार की पासदारी की अहमियत पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस ने वजाहत की है कि कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास के पेश नजर नई दिल्ली जिले में किसी भी एहतजाजी मार्च या जुलूस की इजाजत न तो मांगी गई है और न ही दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि मजकूरा इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की दफा 163 नाफिज है, लिहाजा जंतर मंतर के अलावा इलाकों में एहतजाजी मार्च, जुलूस, मुजाहरे और 5 या इससे ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी आयद है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत उड़ीसा के साहिल पर 160 किलोमीटर से ज्यादा तवील रामेश्वर पारादीप शाहराह तामीर करेगी, जिस पर 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। ये शाहराह खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे रियासत के साहिली इलाके में सकाफती, मजहबी, सियाहती और इकतसादी मकाम के माबेन बिला रुकावट रबता फराहम होगा। वजारत ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से सड़क के बुनियादी ढांचे में बेहतरी और सियाहत और इक्तसादी सरगर्मियों के फरोग की वजह से यकसर तब्दीली आ जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: इस नई शाहराह से मकामी लोगों के लिए मौके पैदा होंगे, क्योंकि इस शाहराह की वजह से होटलों, होम स्टेज, रेस्तरां, दस्तकारी की मार्केट्स और सियाहत पर मबनी कारोबार को फरोग हासिल होगा। इस प्रोजेक्ट से 9 इक्तसादी मकाम और 5 लॉजिस्टिक्स के मराकज में बाहम रबता होगा, जिससे उड़ीसा के इकतसादी नेटवर्क को इस्तेहकाम हासिल होगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। जम्मू कश्मीर में बर्फानी बारिश की वजह से रजौरी और पुंछ के सरहदी जिलों में मिट्टी के तोदे खिसकने और अचानक सैलाब के वाकये में कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए, जबकि 7 दीगर लापता हैं। हमारे नामनिगार ने बताया है कि सबसे ज्यादा हलाकत पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुई। मुसलसल बारिश और खराब सड़क के बावजूद मुतअद्दिद इदारों पर मुश्तमिल एजेंसियां राहत और बचाव कार्रवाई में मसरूफ हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हालात का जायजा लिया और अफसरान को मुतासिरा कुनबों को फौरी राहत और इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला अपने दिल्ली के दौरे को मौखर करके आज दोपहर जम्मू वापस पहुंच गए। नदियों की दुगजानी की वजह से दर्जनों गाड़ियां या तो पानी में बह गईं या गरकाब हो गईं। मकामी इंतजामिया की मदद से राहत और बचाव की टीमें मुतासिरा कुनबों को महफूज मकाम पर ले जाने और नुकसान का तखमीना लगाने में मसरूफ हैं। महकमा मौसमियात ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू और कश्मीर में दरमियानी से शदीद बारिश की पेशगोई की है। नागालैंड में आज से बहुत से जिलों में मूसलाधार बारिश के सबब अचानक सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और जाने भी जाये हुई है। मौन जिले में अचानक सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने के हादसात में 9 अफराद हलाक हो गए और बहुत से घर बह गए। नागालैंड की कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त करने

दिल्ली रियासती अथॉरिटी के जॉइंट सीईओ जॉनी रंगमे ने आकाशवाणी के हमारे नामेनिगार को बताया कि 3 खवातीन और 1 शख्स समेत 4 मुतासरीन की लाशें बरामद कर ली गई हैं और बकिया 5 की तलाश की जा रही है। नगीनी बोरा में 4 अफराद को जो मलबे में दबकर शदीद जख्मी हो गए थे बचा लिया गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा है कि गैर मुतअद्दी अमराज मुल्क में सेहत आम्मा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे निमटने के लिए अवामी सतह पर एक तहरीक शुरू करने की जरूरत है। वो आज नई दिल्ली में साइंस और टेक्नोलॉजी शोबे के साबिक सीनियर मुशीर डॉक्टर अखिलेश गुप्ता की तसनीफ अनब्रोकन माई बैटल विद कैंसर एंड द विल टू लीड के इजरा के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। मोल्दोवा और रोमानिया के सफीर डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने कहा है कि

मोल्दोवा और रोमानिया के सफीर डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने कहा है कि सदर द्रौपदी मुर्मू का इन दो मुल्कों का दौरा तारीखी नौइयत का होगा। डॉक्टर महापात्रा ने प्रसार भारती से बात करते हुए कहा कि भारत और मोल्दोवा के दरमियान गर्मजोशी पर मबनी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं और ये दौरा एक अहम और तारीखी संग मील साबित होगा जिससे दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात एक वसी तर शराकतदारी में बदल जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोमानिया यूरोपीय यूनियन में एक काबिल कदर शराकतदार है और भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती समझौते के बाद दोतरफा इकतसादी शराकतदारी से आइंदा बरसों में ये ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज तीन मुल्कों मोल्दोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में वो मोल्दोवा पहुंचेंगी। ये किसी भी भारतीय सदर का मोल्दोवा का पहला सरकारी दौरा होगा। इस दौरान सदर जमहूरिया मोल्दोवा की सदर माई सैंडी से मुलाकात करेंगी और वर्द की सतह की बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू मोल्दोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा वो मोल्दोवा भारत बालेमानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से मुलाकात, एक कारोबारी फोरम से खिताब और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगी। दौरे के दूसरे मरहले में मोहतरमा मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक शिमाली मकदूनिया में रहेंगी, जबकि अपने दौरे के आखिरी मरहले में वो 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया का दौरा करेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उन्हें जंतर मंतर से अस्पताल मुंतकिल करने के हुकूमत के फैसले को मनमाना करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मिनी पुष्करना का ने कहा कि वांगचुक को फौरी तौर पर एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करने के किसी फौरी हुक्म की जरूरत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्टर्स उनकी हालत पर करीबी नजर रख रहे हैं और उनका इलाज मुआवजा उनकी मर्जी के मुताबिक किया जा रहा है। अदालत वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमू की एक दरखास्त की समाहत कर रही थी जिसमें उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा की गई थी। अमरीकी फौज ने आज ईरान पर फजाई हमले किए जिनमें ईरान के नीम फौजी दस्ते सिपाहे पासदारा ने इनकलाब IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा कि यह कार्रवाई उर्दन में अमरीकी फौजियों की हलाकत के जवाब में की गई है। अमरीकी सेंट्रल कमान के मुताबिक हमलों में ईरान की साहिली निगरानी, फजाई दिफाई तंसीबात, बहरी सलाहियतों और मिसाइल और ड्रोन मराकज को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि पहली मर्तबा उसकी कार्रवाई का खसूसी निशाना IRGC थी जो ईरान के मजहबी निजाम में एक ताकतवर इदारा है और मुल्क के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कंट्रोल रखती है। ईरान ने अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसान की तफसीलात जारी नहीं की हैं। अमरीकी फौज मुहिम अब 8वें रोज में दाखिल हो चुकी है। दोनों ममालिक आबनाए हुरमुस पर कंट्रोल के लिए एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने भारत की सरकर्दा खातून बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय के तौर पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर मुर्मू ने कहा कि भारतीय बैडमिंटन की तारीख में यह कामयाबी एक अहम संग मील है। नायब सदर जमहूरिया राधाकृष्णन ने सिंधु की इस हुसूलियाबी को तारीखी करार दिया है और कहा है कि इस कामयाबी से कौम को फख्र हासिल हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जापान ओपन 2026 के खवातीन के सिंगल्स का खिताब जीतने पर PV सिंधु को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस कामयाबी को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक तारीख साज कारनामा करार दिया। वजीर आजम ने कहा कि सिंधु ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान गैर मामूली महारत, अजम और बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि सिंधु इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं और उनकी ये कामयाबी निहायत अहम है। फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबले फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल आज रात अमेरिका के न्यू जर्सी में खेला जाएगा जिसमें दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में अर्जेंटीना का शुमार कामयाब तरीन टीमों में होता है जो 3 मरतबा आलमी खिताब जीत चुका है। लियोनेल मेसी की क्यादत में अर्जेंटीना की टीम ब्राजील के बाद पहली ऐसी टीम बनने की कोशिश करेगी जिसने मुसलसल 2री मरतबा वर्ल्ड कप का खिताब हासिल किया है। ब्राजील ने 1958 और 1962 में लगातार 2 मरतबा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। दूसरी जानिब स्पेन 2010 के बाद 2री मरतबा आलमी खिताब जीतने के अजम के साथ मैदान में उतरेगी। मर्दों की क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में खेले जाने वाले 3 एक रोजा बैन अलावा मैचों की सीरीज के तीसरे फैसलाकुन मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 388 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक भारत ने 20 ओवर में बगैर किसी

0: के 109 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने मुकर्रा 50 ओवर्स में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा। एक बार फिर हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल, जो कल से शुरू हो रहा है, कुल पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया। उसने सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो इजलास की कारकर्दगी के खुशउसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाएं। मरकज उड़ीसा के साहिल पर सियाहत और रूहानी मकामात के सफर को फरोग देने के लिए 160 किलोमीटर से तवील रामेश्वर पारादीप शाहरा तामीर करेगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से जमीनी तोदे खिसकने के हादसात में 11 अफराद हलाक हो गए। उधर नागालैंड में भी मूसलाधार बारिश के सबब अचानक सैलाब से 9 अफराद की जानें चली गईं। अमरीकी फौज ने उर्दुन में अमरीकी फौजियों की हलाकत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में ईरान की पासदारान इनकलाब फौज पर फजाई हमले किए हैं। और खेलों में आज रात अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप के फाइनल मैच का दुनिया भर में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे, जिसका प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा।
2: वादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पनवार परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
3: नमस्कार। मौसम की फुहारों के बीच दिल्ली के लुटियन जोन में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ एक सत्र नहीं, ये लोकतंत्र की धड़कनों का मौसम है, जहाँ हर आवाज मायने रखती है, हर सवाल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देता है और हर जवाब देश की दिशा तय करता है। संसद का मानसून सत्र, जहां एक ओर सरकार अपने एजेंडे के साथ तैयार है कानून सुधार और नए फैसलों की रफ्तार लेकर, तो वहीं विपक्ष सवालों की धार, मुद्दों की आग और जनता की आवाज बनकर खड़ा है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में हम खोलेंगे इस सत्र की हर परत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं सांसद सुखदेव भगत, CPIM के तेवरों के साथ हमसे जुड़े हैं सांसद अमरा राम और आम आदमी पार्टी की धारदार आवाज बनकर शामिल हो रहे हैं प्रवक्ता अनमोल पवार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर मौजूद हैं, समझना चाहेंगे कि संसद का जो मॉनसून सत्र है, सरकार इसमें किस रणनीति के साथ जा रही है और कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं आपकी तरफ से इस सत्र के लिए?
4: देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एनडीए गवर्नमेंट का सवाल है, हमारा कोशिश ये रहती है कि जो लोगों से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हों जिसको एक लेजिस्लेटिव कानून बनाना चाहिए और उससे देश का फायदा और जनता का फायदा हो, ऐसे मुद्दे लेकर हम पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं। इसलिए हर बार कोई ना कोई चीज होती है जिससे सीधा नाता जो है जनता का होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और खासकर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, वो बहुत डिसरप्टिव अप्रोच रखती हैं बार बार और चाहती हैं कि किसी तरह भी कोई बिल पास ना हो पाए। लेकिन हमारा जाहिर है अपील होगा अपोजिशन पार्टी से कि देखिए, सरकार चाहती है कि जो लोगों का एस्पिरेशन है, जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं का एस्पिरेशन, उसका समर्थन प्राप्त हो सभी लोगों से। उसी तरह से अगर डिलिमिटेशन की बात हो तो उसमें भी समर्थन प्राप्त हो, जिस तरह से पिछली बार कई लोगों ने उस वक्त नहीं किया था, लेकिन अब उन लोगों ने अफसोस जाहिर किया। अब समझ में उनको आया कि एक देश नीति होती है, देश के हित में काम होता है, समाज के हित में काम होता है और एक परिवार के हित में काम होता है। तो ऐसे लोगों ने, बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ भी दी हैं, अपनी पार्टियां बना ली हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऐसे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कोई बिल जो है, उसमें कहीं ना कहीं हम पूरे तौर से सेटिस्फाइड हैं कि लोगों का समर्थन, अपोजिशन बेंच का समर्थन, सबका समर्थन मिलेगा और इस बार हम उस तरह के लेजिस्लेशन को, एक कानून पास करके, बिल को पास करके कानून बना सकेंगे। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा है, जैसा आपने सही कहा कि कोई घोर अपराध करता हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था जेपीसी को, वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी को रेफर किया गया था। ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे। लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है, वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो, या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो, या फिर डेटा प्रोटेक्शन से

0: जुड़ा हुआ हो।
1: ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जन विश्वास का बिल हो सकता है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है और माइंस एंड वगैरह से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है जो पेश होगा सरकार की तरफ से, और उसमें मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए अपोजिशन को, उसको डिटेल चर्चा करें और चर्चा करने के बाद बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कॉन्डक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है, और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन के पार्टियों को, देश को प्राथमिकता दीजिए, देश हित में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, देश नीति को प्राथमिकता दीजिए, एक आम नागरिक के हितों में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, ना कि अपने लीडर्स को जो एक ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है। ऐसे ऐसे बिल को ठुकरा के आप जनता का भी फायदा नहीं करेंगे और जब जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता आपको नकार देगी। ऐसा देखिए केजरीवाल साहब की पार्टी को क्या हुआ, उन्होंने जनता के साथ वायदे किए लेकिन जब झूठ बोला तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया, बाद में उनके अपने लोगों ने ही उनको दरबदर कर दिया। उसी तरह से टीएमसी का देखिए क्या हाल हुआ, आज टीएमसी नहीं बच पाई, ममता बनर्जी नहीं बच पाई, इसलिए ममता बनर्जी की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, जो देश के खिलाफ उनका अप्रोच था, वो सारी चीजें ने उनके अपने पार्टी के लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं इस बात को जग जाहिर करते हुए कि उनकी पॉलिसी और नीतियों से हम लोग रजामंदी नहीं है और इसलिए हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए देश हित में वो फैसला नहीं लेती, इससे उनसे भी अलग हो गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे, और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहाँ 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि
0: जी
1: इस बार पूरे तौर से उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और लोग अपने देश हित का, देश नीति का ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करेंगे।
0: जी जफर साहब, अब चलते हैं सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी की कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
2: मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी कांग्रेस के नहीं, पूरे देश की आवाज ये, अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके संसद में अपनी बातों को रखती है या बाहर इन बातों को रखती है तो जन मुद्दे होते हैं। और जफर भाई जिन बातों को इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है परिवारवाद, तो मुझे लगता है कि एथनॉल की कंपनी E20 के लगातार भी बातें काफी चर्चा में रही है, वो किनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के हमेशा जो मुद्दों से भटकाव वाली बात है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो अगर भारत की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है, और हमारी जो हमारी विश्वास, हमारी आस्था का जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यहाँ के भावनाओं से जुड़ी हुई है। नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, उन्होंने नीट हमारे लिए इश्यू है, बेरोजगारी हमारे लिए इश्यू है, और ये लगातार जिन बातों को करे, अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश संप्रभु है क्या, जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार हमने देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये स्थिति हो। आपने देखा होगा विकास की जो बात करें, कितना भ्रष्टाचार क्या है लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो मुद्दे हैं। और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हम यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार, और जिसके बात ये कह रहे हैं ना ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, एमपी एमएलए को चोरी करते, फिर सरकार भी चुरा लेती है। और एसआईआर का जो मुद्दा है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है, वो ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना इंडिपेंडेंट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बनाकर रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों पर रख रहा है। आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें, एमएसपी के बारे में इन्होंने क्या किया है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और हम ये समझते हैं, और रही बात गंभीरता की, मैं समझता हूं कि मैंने कहा ये सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में वो मुद्दे

0: ऑन हो जाते हैं। तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।
1: CPIM से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे मजबूती से इस मॉनसून सत्र में उठाने वाली है।
2: एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता, और एक जो पेपर लीक नीट का किया है जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त की है, और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है, इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और 33% आरक्षण जो भी आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटें बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की वो तमाम वापिस लें। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार झेल रहे थे उसमें और गांव पे नमक छिड़कने का काम किया, तो ये तमाम मुद्दे, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लाखों पद खाली हैं वो नहीं भर रहे हैं, और एक जो जनतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोख्त पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे होंगे।
1: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी, आपकी जो पार्टी है शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है, मॉनसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
3: देखिए, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे लोग वोट मांग के आए थे, जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहां पे डकैती डाल रहे हैं। हजारों करोड़ों का वहां से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहां से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। 18 दिन तक इन्होंने FIR रजिस्टर नहीं की, 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने FIR रजिस्टर की। एक फर्जी FIR, एक फर्जी SIT का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए, जो E10 भरवाना चाहे E20 भरवाना चाहे उसे ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा ये हंगामा करेंगे, ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे, यही होता है और यही करते रहेंगे।
1: जफर साहब, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ कि संसद के मॉनसून सत्र में आपने भी कहा कि आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके पक्ष में है, और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं? जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था, इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी?
2: देखिए, अभी तो एक चर्चा का विषय है, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया नहीं किया गया। लेकिन जो आपने जो पहले कहा कि आंकड़ों की जगह पर एक अपील जो हमारी थी उस वक्त बिल के गिरने के बाद कि देशहित के बारे में एक चुने हुए नुमाइंदों को सोचना चाहिए, वो अपील जो है जाहिर है लोगों ने समझा, परखा, सुना और जनता से चर्चा जरूर की, और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि ये अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त, अभी अपने आप ही गैप खत्म हो गया है, और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी, सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये बिल को
4: समर्थन नहीं, 100% बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन

0: इंटरेक्शन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी हैं उनके जैसे अभी आपके स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, पर उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे और जो लोग थे उनके, वो जाहिर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। झूठे वायदे करते हैं, जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे, तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नाकार दिया। तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरी तरह से नकारे जाएंगे, जो बचे खुचे लोग वो भी नकारे जाएंगे, लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं, उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है कि देश हित में है, देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है जो भी इसमें चेंजेस के बाद है वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
1: सुखदेव जी, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है, क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
2: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते तो इनके लिए राजनीति हो जाती है। क्या अगर हम नीट की बात करें तो वो राजनीति है? क्या हम अंडमान निकोबार, जो ग्रेट निकोबार जिसमें आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट भी काट दे, वो राजनीति है? क्या अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वो राजनीति है? क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है, अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर रहे वो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहे जो 33% था वो राजनीति है? क्या हम अगर ईरान के साथ, अगर आप जाते हो इसराइल जाते हो ईरान, वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज मगर इस तरह की बातें, वो राजनीति है क्या? राजनीति जो राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मसले है, उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए, डायलॉग से नहीं किया जाए, तो फिर कैसे होगा? आज मैं बता रहा हूं जो गंभीरता की जो बातें होती है, आज भी मैं कह रहा हूं सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है, सत्ता पक्ष आज भी अपनी जिम्मेदारी से भागती है। और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी रही है, वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है, और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने के वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि FIR नहीं हुआ और SIT आपने गठन कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और राहुल जी इस देश के जिम्मेवारी को समझते हैं और पूरे कंट्री जो है, पूरा देश जो है, उन पे आशा भरी निगाहों से एक ऐसा व्यक्ति दृढ़ चाहिए है जो दूर दर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो, एक है चोरी से पास करो। ये सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है, चोरी की सरकार भी है, जो लोगों को चोरी करती है, मतलब MP चोरी करती है, MLA चोरी करती है, सत्ता चोरी करती है ये, और ये हमें नसीहत देती है। रही बात जिस संविधान की, 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो ये एक नैतिकता, हम अगर सार्वजनिक जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है, नैतिकता एक शब्द होते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उसमें इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे और आप प्रतिशोध ना लें, ये कौन क्या गारंटी लेंगे? ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से, ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है।
1: अमरा राम जी, जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा पहुंचाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मानसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
3: बिल्कुल, असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रचनात्मक क्यों नहीं दे? हम तो बिल्कुल, जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के, जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है, जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था, निर्यात होता था, उसमें 3% की जगह 18% लगेगा और हमारे यहाँ 18 से 23 लगता था, वो 0 अमेरिका का सामान आने पे होगा, तो देश की बर्बाद होगा, तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष? ये जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागर करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है, और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से वो सब मिलकर के उठाएंगे। सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, सर्वसम्मत कर दिया, तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब इसको बुनाने

0: अब महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहते, जिस दिन सर्वसम्मत पास हो गया ये शर्तें जोड़ने की कहाँ जरूरत है, वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए महिलाओं के आरक्षण को सामने रखने की जो कोशिश कर रहे हैं ये देश की जनता भी जानती है और संपूर्ण प्रतिपक्ष भी जानता है।
1: जी अनमोल जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। जफर साहब ने आरोप लगाया कि आपके खुद के लोग ही संसद में नहीं बचे तो आप क्या मुद्दों की राजनीति करेंगे? आप युवा हैं, क्या महिला बिल पर इस बार आपकी पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही है? एक और सवाल कि क्या विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
2: देखिए, सवाल आपका जो है वो सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि महिला विधेयक जो है वो पारित हो। 2023 में विपक्ष तो पूरा एकजुट था, हमने तो कहा था भाई आप जो है महिला रिजर्वेशन जो है तुरंत लागू करो, 33% रिजर्वेशन दो आप 543 सीट में। उस समय इन्होंने कहा कि नहीं जी अभी तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, उससे पहले सेंसस कराने की जरूरत है, 2011 के सेंसस पे देंगे तो महिलाओं के अधिकार मारे जाएंगे। उस समय बिल पास नहीं होने दिया, फिर 30 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई? सेंसस तो उस समय भी नहीं हुआ था जब दोबारा ये महिला बिल लेके आए, हम तो तब भी समर्थन में थे कि आप रिजर्वेशन दीजिए, 33 क्यों, आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को, महिलाओं को आधा अधिकार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते, ये महिला विरोधी पार्टी है, इनकी कभी मंशा नहीं रही कि ये रिजर्वेशन दे। पंचायती राज का जब बिल आया था तो इन्हीं के सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती राज में। दूसरी बात भाई, हमारी जो है मेजोरिटी नहीं रही, हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में, ये कह रहे हैं ईडी पार्टी के प्रवक्ता। भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी कर रही है। चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी सरकार कर रही है। ईडी और सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये लोकतंत्र के हत्यारे, ये संविधान के हत्यारे, जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी, तो इनका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता, ये तो किसी के सगे नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजोरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ये साफ दर्शाता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका। ये इस बात को भली भांति जानते हैं। 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी। उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया। कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की, उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार। और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए, किसान इनसे परेशान है, जवान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, छात्र इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग?
1: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, क्योंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मानसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है?
0: देखिए, अब ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। जब से ईरान, इजराइल और यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है उससे पूरी दुनिया को तबाही की तरफ धकेल दिया है। ऐसे में भारत की स्थिति जो सबसे मजबूत स्थिति है, इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, महंगाई के दर भी हमारे जो वेल विद इन द लिमिट है। पहले जो यूपीए की सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था, अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन, उसमें मेंटेन है। एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज रहे। और पूरे टाइम हमने 12-13 साल में देखिए हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से, कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसकी वजह से कोई स्कार्सिटी होती है जैसे, या डिसरप्शन होता है और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है, उसका कभी न कभी इम्पैक्ट होता है। जैसे सीजनल फैक्टर में सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं कभी, उसी तरह से कभी तेल के दाम बढ़ने से, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पर असर आ जाता है, महंगाई पे असर आता है। बट ये सब टेम्पररी है, परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा महंगाई दर क्या था और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था। तो आपको साफ दिख जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की नीतियां मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि जिसमें महंगाई पर भी फोकस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर भी फोकस है और जो देश की अर्थव्यवस्था जो

0: मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खरी उतरे उसकी कोशिश। आज देखे जो रिजर्व है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की स्थिति बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज सीन इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती है हमने आम लोगों के लिए क्या, और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं और इसलिए हम वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं, उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, पेंशनर हो, सबके लिए हम स्कीम लेके आए, सबके लिए चिंता करते हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं और उन लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर में जो परसेंटेज है पर कैपिटा का वो बढ़ता जा रहा है, उस बात को दर्शाता है कि लोग अपने सेहत पर भी अब ज्यादा ध्यान देते हैं और उस पर खर्चा भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है देश को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार जो है उसने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि देश की जनता और देश को दोनों बहुत कठिन समय में भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।
1: सुखदेव जी, जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव है, वैसे देश की स्थिति काफी सुदृढ़ है, प्रगतिशील है और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनता कांग्रेस पार्टी से ये भी समझना चाहती है कि अपार अनुभव और सत्ता में कई दशकों तक राज करने के बाद ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष रचनात्मक तरीके से समाधान भी सरकार को बताएगा या सिर्फ विरोध करेगा?
2: देखिए, निश्चित रूप से दो चीजें है, डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन, देते 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात करें, जो एमएसएमई का जो हालात है, जिस प्रकार जब मैं समझता हूँ जो हमारे पीएसयू थे उनको जिस प्रकार से लाउट अप कर रहे हो, तो आप कहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग, आप हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहाँ पे हो, हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहाँ पे हो। मैं आज भी, मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष ही बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और देश कैसे समृद्ध हो, देश में जनता की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच था उसमें एक सार्थक बहस हो, सार्थक बातें हो और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष किसी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है, उन बातों को आपको देखना चाहिए। एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आप उन बातों को लेके चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेके चला। आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक पारदर्शी और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को, अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
1: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
3: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो आपने जैसा कहा कि हम युवा हैं तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं, तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में, हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो, उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए। और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही, क्यों बचाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा। भाई, प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं, यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, नीट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए, आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है। और लोगों के मुद्दे हैं उस पे जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
1: कार्यक्रम में समय कम है, जफर साहब अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है उसके लिए आप क्या संदेश होगा?
0: देखिए, मैं जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, एंड आप एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित में नहीं देश हित में काम करते हैं और उनके लोग जो है उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित में काम करो और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा, देश का फायदा है, तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक, बट उन लोग आपस में

0: इतना एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के लिए है, ऑप्टिकली दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत में कोई एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है। और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब इनकी जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप जब आपस में मिले तो आप अपने पॉजिटिव जो सपोर्ट होना चाहिए उसको कीजिए उन मुद्दों पे जिन पे आपको भी लगता है कि देश हित में है और ये देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
1: आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रोताओं का स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। श्रीमती बालामणि ईश्वर कर्नाटक संगीतज्ञ मुसरी सुब्रमण्य अय्यर के परिवार से जुड़ी हुई हैं। आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता श्रीमती सुशीला रामस्वामी से प्राप्त की। आगे आपने त्रिशूर के श्री राम वर्मा संगीत विद्यालय से उच्च प्रशिक्षण ग्रहण किया। आप 1992 से आकाशवाणी मदुरई में संगीत कलाकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। संगीत यात्रा के अनेक पड़ावों को पार करते हुए आज आप ए ग्रेड की कलाकार हैं। श्रीमती बालामणि ईश्वर ने संगीतज्ञ त्रिची श्री एस गणेशन से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा अपनी कला की तकनीक एवं कौशल का गहन ज्ञान प्राप्त किया। आपने तमिलनाडु और केरल में अनेक संगीत सभाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं तथा संगीत प्रेमियों की अपार प्रशंसा प्राप्त की है। श्रीमती बालामणि ईश्वर त्रिची एस गणेशन की कर्नाटक संगीत शैली में राग आलापना के लिए सुप्रसिद्ध हैं। पिछले 3 दशकों से सक्रिय रूप से गायन प्रस्तुत करती आ रही श्रीमती बालामणि ईश्वर अनेक पुरस्कारों एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। नमस्कार, दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। इन टुनाइट्स प्रोग्राम यू कैन लिसन टू अ वोकल रिसाइटल बाय Srimati Balamani Ishwar. Srimati Balamani Ishwar hails from the lineage of renowned vocalist Musiri Subramanya Iyer. Initially, she learnt music from her mother, Srimati Sushila Ramaswamy. Further tutelage was from renowned musician Tiruchi Sri S. Ganesan. After completing music senior certificate course from Thrissur Sri Rama Varma Music School, Srimati Balamani joined Akashwani Madurai in the year 1992. Acclaimed for her Raga Alapana style rendition, she has travelled extensively for performances. Srimati Balamani Ishwar is an A-grade artist of Akashwani and is the recipient of several awards and accolades. Aaj ke karyakram mein Srimati Balamani Ishwar ke saath sangat kar rahe hain violin par Srimati Parur M.K. Anant Lakshmi, mridangam par श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का शुभारंभ संत त्यागराज की रचना ब्रोव बारमा से कर रही हैं। राग बहुदारी पर आधारित ये रचना आदिताल में निबद्ध है। इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट श्रीमती बालामणि ईश्वर इज अकम्पनीड बाय श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, Shri B. Ganapati Raman on the Mridangam and Udupi Shri S. Srikant on the Kanjira. The concert begins with Brova Barama composed by Saint Tyagaraja in Rag Bahudari set to Adi Tal.

0: अब आप सुनेंगे मुथुस्वामी दीक्षितर की रचना शेषाचल नायकम, वराली राग और रूपक ताल में।
1: लिसन नाउ टू शेषाचल नायकम कंपोज्ड बाय मुथुस्वामी दीक्षितर इन राग वराली सेट टू ताल रूपकम।

रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती परूर एमके अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। लीजिए अब प्रस्तुत है करहर प्रिया राग और मिश्र चापताल में संत त्यागराज की रचना पक्कल निलपड़ी। इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। शी इज अकॉम्पनीड बाय परूर श्रीमती एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। लिसन नाउ टू पक्कल निलपटी कंपोज्ड बाय सेंट त्यागराजा इन रा करहर प्रिया सेट टू मिश्र चापुताल।

0: रचना के अंत में आपने सुना तनि आवर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का समापन करते हुए प्रस्तुत कर रही है रचना मनदिर कुहंदद। सिंधु भैरवी राग और आदि ताल में। रचना है तंजावूर शंकर अय्यर की।
1: That was a tani avartanam performed by Shri B. Ganapati Raman on the Mrudangam and Udupi Shri S. Srikant on the Kanjira. Srimati Balamani Ishwar concludes the concert with Manadir Kugandad, composed by Tanjavur Shankara Iyer in Rag Sindhu Bhairavi set to Tal Adi.

रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आज आप सुन रहे थे श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजिरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मदुरई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। इन द रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा यू जस्ट हर्ड वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
0: सुने। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़

0: ये आकाश
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। संपन्न होती हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:53 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।